मीडियम वेव 106.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। आज शनिवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की दूसरी तिथि तदनुसार 23 मई सन 2026 सुबह के 5:56 58 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडुलाइडिस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। उन्होंने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: दोनों नेताओं ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौता को शीघ्र अंतिम रूप देने और अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने आतंकवाद के प्रति अपनी शून्य सहिष्णुता के दृष्टिकोण को भी दोहराया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर आज कोलकाता पहुंचेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा है। श्री रूबियो नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से बातचीत भी करेंगे। उनका अमरीकी दूतावास में होने वाले अमरीकी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलू की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में इन्वेस्टमेंट कंपनी इंस्टीट्यूट ऑफ द अमेरिका के एशिया और ग्लोबल एनालिटिक्स के प्रबंध निदेशक मैथ्यू मोहलिंग कैंप से मुलाकात की और भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में निवेश के अवसरों पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि चर्चा का मुख्य केंद्र प्रौद्योगिकी, अवसंरचना, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल व्यवस्था सहित उच्च विकास वाले क्षेत्रों में अमरीकी संस्थागत निवेश को मजबूत करना, साथ ही विनिर्माण, नवाचार और रोजगार को बढ़ावा देना था। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी न करने और केवल आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी है। मंत्रालय ने कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर अस्थायी दबाव को तेल विपणन कंपनियों द्वारा निरंतर आपूर्ति निगरानी और समन्वित वितरण प्रयासों के माध्यम से दूर किया जा रहा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में पुणे से एक और महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मनीषा हवलदार के रूप में हुई है, जिन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। अब इस मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। ये सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है, जो देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र प्रांतिरक्षा मिशन में कार्यरत भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार के लिए चुना गया है। मेजर बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल की कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में कार्यरत हैं। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। 6:05 हुए हैं, आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का।

जब जब मन अशांत होता है तब जीवन में कठिनाइयां बढ़ती हैं, तब प्रभु श्री राम का नाम हमें शक्ति, धैर्य और सच्चाई के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। आइए आज कुछ पल दुनिया की चिंताओं को छोड़कर प्रभु श्री राम के चरणों में अपना मन समर्पित करें, उनकी वंदना करें।

जब मन में प्रभु के प्रति सच्चा प्रेम जगता है, तब आत्मा स्वयं ही भक्ति में झूम उठती है। भगवान के गुणों का स्मरण करते करते कब आंखें नम हो जाएं और कब मन नृत्य करने लगे पता ही नहीं चलता। भक्ति वही है जहां दिखावा नहीं, केवल प्रेम हो, समर्पण हो और हरि नाम में पूरी तरह खो जाने का भाव हो। तो आइए आज भी हम अपने सारे दुख चिंता और अहंकार को छोड़कर हरि भक्ति में डूब जाएं और उनकी वंदना करें।

0: श्रोताओं, अभी आप भक्ति रचनाएं सुन रहे थे जिन्हें स्वर दिए थे हरिओम शरण, जगजीत सिंह, हेमंती शुक्ला और साथियों ने। इसी के साथ हमारा कार्यक्रम वंदना अभी ही समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। आइए अब सुनते हैं अपना बिजली घर विषय पर चिंतन।
1: एक बार अंधकार ने संसार बनाने वाले ब्रह्मा से ये शिकायत की कि आपने जितना देश और काल मुझे रहने के लिए दिया वो सब प्रकाश मुझसे बराबर छीन देता है। ब्रह्मा ने प्रकाश से जवाब तलब किया, ऐसा क्यों करते हो भाई, सबको अपने अपने स्थान पर रहने दो। प्रकाश ने बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, मेरी तो उससे कोई शत्रुता नहीं, सच पूछिए तो आज तक मेरी उसकी कभी भेंट ही नहीं हुई, पता नहीं कहाँ वो रहता है। ब्रह्मा जी हंस पड़े। अंधकार को सहज फैलने और प्रकाश को परिश्रम से उदय होने का फैसला देकर मामले की छुट्टी कर दी। अंधकार की तो बन आई, जहां चाहे जब चाहे फैल जाए। प्रकाश के आने में तो देर लगती ही है। किए जाओ प्रार्थना तमसोमा ज्योतिर्गमे, लेकिन इतना कह देने से ही प्रकाश में बिजली कहां से आ जाएगी। उस महाकाय अंधकार को मिटाने के लिए भागीरथी का आह्वान करना होगा। बड़े बड़े बांध बनेंगे, फिर वो धारा उसके भीतर से अपनी पूरी गतिमयता के साथ निकलेगी, तब चक्का घूमेगा, तब बिजली बनेगी और तब प्रकाश बनेगा। अक्सर आए दिन आप देखते हैं कि बिजली गायब हो जाती है, घुप अंधेरा छा जाता है। जल्दी जल्दी मोमबत्ती ढूंढते हैं, लालटेनें जलाते हैं, जलाते हैं, कुछ तो अंधेरा हटे। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास अपने जनरेटर सेट हैं। बिजली गई तो उन्होंने अपने जनरेटर चला दिए। उन्हें अपना काम सुचारू रूप से करने में कोई परेशानी नहीं होती। शायद इस बात को हम मन ही मन में समझ रहे हैं कि अगर अंधेरे को भगाना है, यदि हमको उस शक्ति की ज़रूरत है जो अंधेरे को ख़त्म कर दे, तो हमें वो बिजली अपने आप पैदा करनी होगी। ये बिजली कैसे पैदा हो? ये बिजली पैदा होती है अपने आचरण से। हम जो कहते हैं उसे हमारे आचरण ऊर्जा से मंडित कर देते हैं, तब उन शब्दों में हमारे आचरण की ऊर्जा भर जाती है। वे शब्द जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ प्रकाश अपने आप पीछे पीछे चलता है। एक बार वो बिजली हमने अपने भीतर ही जगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी, तो आपको अपने भीतर ही वो भागीरथ दिखाई देंगे जो कठिन तप से गंगा को अपने लिए सुलभ कर रहे होते हैं। आप ही अपने भीतर मर्यादाओं के वे बांध बना रहे होते हैं जिनसे गुजरकर वो भागीरथी अनंत ऊर्जा का निर्माण कर रही होती है। वो आपकी अपनी बिजली है, आपकी अपनी विद्युत शक्ति है। आप उसके एकमात्र स्वामी हैं। आप उसके जरिए बल्ब जलाकर रोशनी कर सकते हैं, आप प्रेस चला सकते हैं, आप लिफ्ट से ऊपर कई मंजिलें चढ़ सकते हैं, आप आसमान तक उड़ सकते हैं, आप किसी के मोहताज नहीं हैं। आप समर्थ हैं तो आपको बराबर ये ध्यान बना रहेगा कि इस शक्ति का कहीं भी दुरुपयोग ना हो। आपने जो कुछ अर्जित किया है वो केवल लोक मंगल के लिए है, यही है उस विद्युत शक्ति की सार्थकता। भारतीय संतों की लंबी परंपरा ने भगवान का नाम बारंबार लेने और पर दुख कातरता से इस प्रकार की शक्ति के शीघ्र ही उत्पन्न होने का प्रमाण दिया है। वे जो दूसरे के दुख में दुखी होते हैं उन्हें इस बिजली का साक्षात्कार जल्दी ही होता है।

श्रोताओं, चिंतन कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अपना बिजली घर विषय पर चिंतन। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

अब से कुछ ही देर में कार्यक्रम खेती की बातें में आप सुनेंगे जायद फसलों में खरपतवार नियंत्रण विषय पर वार्ता। वार्ताकार रहेंगे ब्रजराज सिंह, जिसे आप सुनेंगे 6:45 पर। प्रातः 7:10 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में सुनेगा डॉक्टर सत्य मित्र की वार्ता। वार्ता का विषय रहेगा कान का दर्द, कारण और उपचार। आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना परक कार्यक्रम आसपास सुना जा सकेगा प्रातः 7:31 पर। लोक संगीत के कार्यक्रम में 9:45 में सुनेगा संगीत स्वर में कुछ लोकगीत। 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे पंडित यशपाल का राग नट भैरव में ख्याल गायन। 11:00 कार्यक्रम आज के कलाकार में आज के कलाकार रहेंगे फिल्म निर्देशक के राघवेंद्र राव। समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में 11:30 पर आज का विषय रहेगा प्रसूति महिला को पर्याप्त आराम, देखभाल और उचित चिकित्सा जरूरी। प्रसूति फिस्टुला को समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य में। दोपहर 12:00 आप सुन सकेंगे कार्यक्रम लोक पंजरी में भक्त सुदामा पर आधारित नौटंकी।

दोपहर 1:15 पर कार्यक्रम पनघट में हमारी मैंने सुनेंगी चर्चा गर्मियों में पक्षियों की देखभाल विषय पर। उसी के साथ सुनी जा सकेगी डॉक्टर प्रियंका गौतम की वार्ता, जिसका विषय रहेगा महिला जागरूकता और बदलता भारत। दोपहर 1:45 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुनेगा जोनाकी भट्टाचार्य के गाए कुछ गीत और भजन। श्रोता, हमारी सांध्यकालीन सभा प्रारंभ होगी शाम 5 बजे, जिसमें 5:30 पर हमारे युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी, जिसमें चर्चा का विषय रहेगा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। इसी के साथ सुनेगा प्रांजल टमटा से वार्ता, जिसका विषय रहेगा सोशल मीडिया अभिव्यक्ति का मंच या दिखावे का दबाव। आइए जाने सेगमेंट में आप सुनेंगे इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के विषय में।

ग्रामीणों कार्यक्रम में शाम 6 बजे आप सुनेंगे नारी उत्थान एक सामाजिक जिम्मेदारी और प्रसूति फिस्टुला को समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस विषय पर चर्चा। इसी के साथ सुनेगा डॉक्टर नीलेश शर्मा से वार्ता भारतीय खेती बाड़ी में मानसून का महत्व विषय पर। मजदूर मंडा कार्यक्रम में शाम 6:30 पर आप सुन सकेंगे श्रमिक और शिक्षा विषय पर चर्चा और इसी के साथ सुनी जा सकेगी बनवारी लाल कुशवाहा से वार्ता बाल श्रम एक सामाजिक अपराध विषय पर। विविधा कार्यक्रम में शाम 7:10 पर सुनेगा रहमन पानी राखिए विषय पर वार्ता, वार्ताकार रहेंगे डॉक्टर अशोक तिवारी। शाम 7:31 पर हमारे दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश में प्रसूति फिस्टुला को समाप्त करने के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के मौके पर विशेष भेंटवार्ता। सुप्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निधि बंसल से अनिंद्र सिंह की बातचीत।

श्रोता, यह था कार्यक्रम विवरण। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। आइए अब सुनते हैं श्री रामचरितमानस का आज का संगीतबद्ध प्रसंग। गायक कलाकार हैं महेंद्र कपूर और शोभना राव। संगीतकार हैं सतीश भाटिया।

ब्रह्मा ने सब प्रकार से योग्य पाकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया था। इतना बड़ा अधिकार पाकर दक्ष को सत्ता का मद हो गया और उन्होंने शिव का अपमान करने की धृष्टता कर दी। जब यक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया तो उसमें भगवान शंकर को निमंत्रित ना करके उस अपमान को जैसे दोहरा कर दिया। यही कारण था कि जब सती ने पिता के यज्ञ में उपस्थित होने के लिए जाना चाहा, तो शिव ने बिना निमंत्रण जाना सती के शील स्नेह अथवा मान मर्यादा के अनुरूप नहीं पाया। जब सती ने पिता के यज्ञ में जाने की जिद ही कर दी तो भगवान शंकर ने अपने प्रमुख गणों के साथ उन्हें विदा कर दिया। उधर पिता ने सती का कुशल क्षेम तक नहीं पूछा। यज्ञ में सभी देवताओं के भाग की सामग्री थी, किंतु कहीं भी शिवजी का भाग दिखाई नहीं दिया। पति की ये उपेक्षा देख अपमान से सती के अंग प्रत्यंग जल उठे, उनके क्रोध की सीमा न रही। इस मदांधता तथा नादानी के लिए उन्होंने पिता की भर्त्सना ही नहीं की, बल्कि ग्लानी तथा क्रोध के वशीभूत होकर अपने को उसी यज्ञ की अग्नि में भस्म कर डाला।

0: श्रोताओं, अभी आप श्री रामचरित मानस गान सुन रहे थे। गायक कलाकार थे महेंद्र कपूर और शोभना राव और संगीतकार थे सतीश भाटिया। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। 6:45 हुए हैं। कार्यक्रम खेती की बातें में आइए सुनते हैं जायद फसलों में खरपतवार नियंत्रण विषय पर ब्रजराज सिंह की वार्ता।
1: प्रिय किसान भाइयों, खेती में खरपतवारों द्वारा हानि की आरंभ से ही एक समस्या रही है। आरंभ में खेती में कम लागत लगने के कारण इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया, परंतु आज यह समस्या इस स्तर तक पहुंच गई है कि बिना खरपतवारों के उचित नियंत्रण से फसल खेती संभव नहीं है। निश्चय ही खरपतवार कृषि क्रियाओं में बाधा उत्पन्न करने के साथ साथ फसल की उपज में एवं उसकी गुणवत्ता को अधिक

0: ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। 6:45 हुए हैं। कार्यक्रम खेती की बातें में आइए सुनते हैं जायद फसलों में खरपतवार नियंत्रण विषय पर ब्रजराज सिंह की वार्ता।
1: प्रिय किसान भाइयों, खेती में खरपतवारों द्वारा हानि की आरंभ से ही एक समस्या रही है। आरंभ में खेती में कम लागत लगने के कारण इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया, परंतु आज यह समस्या इस स्तर तक पहुंच गई है कि बिना खरपतवारों के उचित नियंत्रण से फसल खेती संभव नहीं है। निश्चय ही खरपतवार कृषि क्रियाओं में बाधा उत्पन्न करने के साथ साथ फसल की उपज में एवं उसकी गुणवत्ता को अधिक प्रभावित करते हैं। और यह सच है कि खरपतवार फसलों से चुंगी यानी टैक्स वसूलते हैं, जबकि सरकार ने चुंगी खत्म कर दी है, लेकिन खरपतवार अपनी चुंगी बनाए हुए हैं। खरपतवारों द्वारा फसलों से खाद एवं उर्वरक तत्व, सिंचाई जल, बढ़ने वृद्धि में प्रतियोगिता एवं श्रम में नुकसान होता है। किसान भाई इस बात से सहमत है कि खरपतवारों से फसलों को नुकसान पहुंचता है, परंतु यह जानने के बाद कि खरपतवारों के कारण किस सीमा तक फसल को क्षति पहुंचती है, उससे हर किसान इसके उचित इलाज के लिए व्याकुल हो उठेगा। विभिन्न फसलों में उपज में खरपतवारों द्वारा कमी प्रायः इस प्रकार होती है, जैसे दलाना में 20%, गन्ने में 30%, मक्का में 50%, तिलाना में 30%, गेहूं में 25%, ज्वार में 40%, आलू में 7%, धान में 35% एवं बाजरा में 50%। यहाँ उल्लेखनीय है कि विश्व खाद्य संगठन यानी WHO की वर्ष 1999 की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में जो खाद्यान्न पैदा किया गया उसका 25% भाग खरपतवारों, बीमारियों एवं अन्य भंडारण में नष्ट हुआ, 50% खाने में उपयोग, 20% पशुओं के राशन में एवं 5% बीज में काम आता है। अतः इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि जायद में बोई जाने वाली फसलों में खरपतवारों का उचित प्रबंध नितांत जरूरी है, जिसमें मुख्य रूप से मोथा, दूब घास, जंगली चौलाई एवं विषक परा खरपतवार आदि है। आगरा परिक्षेत्र में जायद में मुख्य रूप से दलानों में मूंग, उर्द, लोबिया, तिलानों में सूरजमुखी, धान में मक्का, सब्जियों में भिंडी एवं कद्दू वर्गीय फसलों में सीताफल, लौकी, तोरई, करेला, ककड़ी, खीरा, टिंडा, खरबूज, तरबूज आदि फसलें बोई जाती हैं। यहाँ पर के गर्मियों में सिंचाई की सुविधा है, वहाँ में जायद फसलें संभव होंगी। इन जायद फसलों में खरपतवारों का नियंत्रण इस प्रकार करें। सबसे पहले मूंग, उर्द एवं लोबिया में। आगरा मंडल में ये फसलें आलू की खुदाई, सरसों, मटर एवं गेहूं की कटाई के बाद प्रायः ली जाती हैं, जिनकी बुवाई फरवरी मध्य से अप्रैल के अंत तक कर दी जाती है। अधिकांशतः कृषक गेहूं की कटाई के बाद सिंचित दशा में मूंग की खेती बाजरा, गेहूं, मूंग फसल पद्धति में लेते हैं। प्रायः इन फसलों में तंग पत्ती वाले खरपतवारों में दूब घास, मोथा एवं चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों में विषकपरा एवं जंगली चौलाई ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, अतः समय से इनकी रोकथाम आवश्यक है। उल्लेखनीय है कि मूंग, उर्द एवं लोबिया में फसल एवं खरपतवारों के मध्य क्रांतिक अवस्था यानी क्रिटिकल अवस्था बुवाई के 15 से 30 दिन तक होती है। इस अवधि में सर्वाधिक नुकसान से खरपतवार फसल को पहुंचाते हैं। इनकी रोकथाम हेतु खुरपी द्वारा पहली निकाई बुवाई के 20 से 25 दिन के भीतर कर दें, अर्थात तीसरे चौथे सप्ताह में खरपतवार निकाल दिए जाने चाहिए, अथवा रसायनों के प्रयोग से भी इन खरपतवारों को नष्ट कर सकते हैं, जिसके लिए फ्लूक्लोरेलिन यानी 45 EC की 1.65 लीटर मात्रा आवश्यक पानी में अर्थात 800 से 1000 लीटर पानी में घोलकर बुवाई से पूर्व यानी प्री प्लांटिंग में प्रति हेक्टेयर की दर से भूमि पर एक सार छिड़काव करके मिट्टी में भली भांति जुताई द्वारा मिला दें, अथवा पेंडामिथिलीन 30 EC 3 लीटर प्रति हेक्टेयर प्रति 1000 लीटर पानी में घोलकर बुवाई के 2-3 दिन में अंकुरण से पूर्व प्री इमर्जेंस में छिड़काएं। ध्यान रहे, मोथा एक ऐसा खरपतवार है जिसकी आज निकाई करें तो दूसरे दिन जमीन से ऊपर दिखेगा। इसकी जड़ों की गांठों में आसानी से नहीं मरती हैं। कृषि में इन अनुसंधानों से पता चला है कि जिस खेत में मोथा ज्यादा निकलता हो वहां फसल चक्र में लोबिया जोड़ दें, अर्थात लोबिया को जायद में अथवा बरसाती मौसम में अथवा दोनों में लें। ऐसा करने से 2-3 वर्षों में मोथा जड़ से समाप्त हो जाएगा, ठीक ऐसे ही जैसे बुढ़ापे में सिर से बालों का उड़ जाना और फिर ना उगना।

0: यह बगैर पैसे का सौदा है। जैसे कहावत भी है कि हर्र लगेला फिटगिरी रन चोख ही आवे, अतः कृषक भाई बगैर खर्च के इस तकनीकी को अवश्य अपनाएं। सूरजमुखी में खरपतवार नियंत्रण हेतु पहली निकाई खुरपी द्वारा बुवाई के 20 से 25 दिन बाद तथा दूसरी निकाई बुवाई के 35 से 40 दिन बाद की जानी चाहिए। इस फसल में खरपतवार की क्रांतिक अवस्था अवधि क्रिटिकल पीरियड बुवाई के 30 से 45 दिन होती है, जिसमें फसल को सर्वाधिक क्षति होती है और उपज में 30 से 50% कमी आ जाती है। खरपतवारों के रासायनिक नियंत्रण के लिए फ्लूक्लोरेलिन 45 EC, जिसे बासालिन भी कहते हैं, कि 1 लीटर मात्रा 700 से 800 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर बुवाई से पूर्व, अथवा पेंडामिथिलीन जिसे स्टाम्प भी कहते हैं 30 EC, 3 लीटर प्रति 1000 लीटर पानी में घोलकर बुवाई के 2 से 3 दिन तक छिड़कें। कद्दू वर्गीय फसलों में प्राय खुरपी द्वारा निकाई करके उसे खरपतवारों का नियंत्रण किया जाता है। पहली निकाई बुवाई के 20 से 30 दिन तक एवं दूसरी निकाई बुवाई के 40 से 50 दिन तक खुरपी द्वारा की जानी चाहिए। इन कद्दू वर्गीय फसलों में लौकी, तोरई, कद्दू, करेला, खीरा, ककड़ी, खरबूज, तरबूज में मोथा, दूब घास, विषकपरा मुख्य रूप से खरपतवार उगते हैं। प्रायः रसायनों द्वारा कद्दू वर्गीय फसलों में खरपतवार नियंत्रण के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। भिंडी की फसल में पहली सिंचाई खुरपी द्वारा बुवाई के 20 से 25 दिन पर दूसरी निकाई बुवाई के 35 से 40 दिन के भीतर कर देनी चाहिए। यदि जरूरी और समझा जाए तो तीसरी निकाई भी 50 से 55 दिन पर भी की जा सकती है। चूंकि भिंडी में अधिक सिंचाई से अधिक खरपतवार निकलते हैं, इसलिए भिंडी की फसल में प्रायः दूब घास, विषकपरा, मोथा, जंगली चौलाई खरपतवार देखे जाते हैं। यहाँ कृषकों को हिदायत दी जाती है कि आगरा परिच्छेद में आलू के बाद खाली पड़े खेत में बेशुमार उगे हुए खरपतवार विषकपरा को पशुओं द्वारा चराई अथवा चारे के रूप में काट कर पशुओं को खिलाते हैं। ऐसा करना उचित नहीं है, क्योंकि इस खरपतवार में छोटी अवस्था से ही हर गांठ पर प्याज जैसा काला बीज होता है, जो पशुओं को आहार के माध्यम से मल यानी गोबर में घूरे पर फिर खेत में आ जाता है, जो एक चक्र बन जाता है और इस खरपतवार की समस्या ज्यों की त्यों बनी रहती है। यही हालात है गेहूं में। गेहूं के मामा खरपतवार है, इसे भी आगरा परिक्षेत्र में चारे के रूप में खिलाया जा रहा है। यदि इस गेहूं के मामा को बीज बनने से पूर्व खिलाएं तो कोई समस्या नहीं है, परंतु बीज पकने तक भी कृषक इसे चारे के रूप में खिलाते हैं तो गलत है। इस कारण से इन दोनों खरपतवारों विषकपरा एवं गेहूं के मामा की एक बड़ी समस्या सामने आ चुकी है, और जब तक इस समस्या को पशुओं के खिलाकर बंद नहीं होगा तब तक इस समस्या का कोई समाधान यथार्थ में नहीं है। हाँ, दोनों के लिए खरपतवार नाशी उपलब्ध हैं, नहीं बल्कि कारगर भी सिद्ध हुए हैं। आलू की बुवाई के बाद बसंतकालीन मक्का यानी भुट्टे के लिए भी बोई जाती है, जिसकी बुवाई मार्च अप्रैल में की जाती है, जिसे फिरोजाबाद, इटावा, अलीगढ़, फर्रुखाबाद आदि में जनपदों में उगाते हैं। एक निकाई खुरपी द्वारा बुवाई के 20 से 25 दिन में और दूसरी निकाई बुवाई के 40 से 45 दिन के बाद कर देनी चाहिए। रसायन विधि में सिमेजिन 50% अथवा एट्राजिन 50% घुलनशील पाउडर में से किसी एक की 1.5 लीटर से 2 लीटर मात्रा 800 लीटर पानी में घोलकर अंकुरण से पूर्व अर्थात बुवाई के 2-3 दिन में प्रति हेक्टेयर प्रयोग किया जाए।
1: खेती की बातें कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे जायद फसलों में खरपतवार नियंत्रण विषय पर डॉक्टर ब्रजराज सिंह की वार्ता। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।

0: संयुक्त राष्ट्र संघस्य संरचनांतर्गतम अंतरराष्ट्रीय आतंकवादस्य विषये समग्र सम्मेलनम शीघ्रमेव अंतमीकृत्य स्वीकर्तुम आहूतवन्तौ। ह्यः नवदिल्ल्यां उभयोः नेत्रोः मध्ये वार्तायाः अनन्तरं प्रदत्ते संयुक्त वक्तव्ये उभौ पक्षौ संयुक्त राष्ट्रसंघे तथा यूरोपीय संघे च निर्दिष्टानां आतंकवादिनां आतंकिसंघटनानां च विरुद्धं अपि च संयुक्त राष्ट्रसंघस्य सुरक्षा परिषद प्रतिबंध समित्याः अन्तर्गतं सूचीबद्धानां 67,200+ यावत् आतंकिसंघटनानां विरुद्धं प्रबलं समन्वितं च कार्याचरणाय आग्रहं कृतवन्तौ।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: उभौ पक्षौ साइबर सुरक्षायाम अपि च उदयोन्मुख प्रौद्योगिक्यां विशेषावधानेन सह रक्षा उद्योगयोः मध्ये सहयोगेन सह रक्षा सुरक्षा सहकारं सुदृढीकरणेऽपि सहमतौ अभवताम्। अस्मिन् सन्दर्भे साइप्रस डिफेंस एंड स्पेस इंडस्ट्रीज क्लस्टर तथा सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स इत्येतयोः मध्ये संधिपत्रे हस्ताक्षरं जातम्। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी अद्य 21वें रोजगार मेलायां विविध प्रशासकीय विभागेषु संस्थासु च नवनियुक्तानां यूनां कृते 150,000+ नियुक्तिपत्राणां वितरणं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इति आभासीय माध्यमेन करिष्यति। अमेरिका देशस्य विदेश सचिवः मार्को रूबियो इत्येषः अद्य भारतस्य चतुर्दिवसीय यात्रायां कोलकाता नगरं आगमिष्यति। इदं तस्य प्रथमं भारत पर्यटनं भविष्यति। कोलकाता नगरे प्रवासावधौ श्री रूबियो वर्येण मदर टेरेसा वर्यायाः समाधिस्थले श्रद्धांजलिः अर्पणस्य अपेक्षा अस्ति। सः विक्टोरिया स्मारकमपि द्रष्टुं शक्नोति। पश्चात् अमेरिका देशस्य विदेश सचिवः नवदिल्ल्यां प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह मेलनं विधास्यति। श्वः श्री रूबियो राष्ट्रीय राजधान्यां विदेश मन्त्रिणा एस जयशंकरेण सह वार्तालापं करिष्यति। सः अमेरिका देशस्य दूतावासस्य स्वातंत्र्य दिवसोपलक्षे आयोजिते कार्यक्रमे विभागं ग्रहीष्यति। सोमवासरे श्री रूबियो वर्यः आगरा जयपुर नगरयोः भ्रमणं करिष्यति। तत्पश्चात् मंगलवासरे भारते आयोजिते क्वाड विदेश मन्त्रिणां सभायां भागं ग्रहीतुं नवदिल्ल्यां प्रत्यागमिष्यति। भारत ऋतु विभागेन अद्य पूर्वीय मध्य प्रदेशे, पूर्वीय उत्तर प्रदेशे, विदर्भे च तीव्रतर उष्ण तरंगस्य स्थित्यै रक्तवर्णीया संचेतना प्रसारितास्ति। अद्य दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा इत्येतेषु प्रदेशेषु उष्ण तरंगस्य स्थित्याम् आईएमडी विभागेन नारंगवर्णीया संचेतना प्रदत्ता अस्ति। तटीये आंध्र प्रदेशे, तेलंगानायां, पश्चिम मध्य प्रदेशे, पश्चिम उत्तर प्रदेशे च अद्य दिने तथैव स्थितिः भविष्यति। अद्य दिल्ल्यां अधिकतमं तापमानं 45°C यावत्, न्यूनतम तापमानं 27°C यावत् भवितुं शक्नोति। अन्त्यक्रीडावार्तायाम् आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां सनराइजर्स हैदराबाद दलेन हैदराबादे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलं 55 धावनांकैः पराजितम्। अद्य सायं 7:30 लखनऊ नगरे पंजाब किंग्स लखनऊ सुपर जायंट्स दलयोः मध्ये क्रीडा भविष्यति। इति वार्ताः।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इनमें विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त युवा शामिल हैं। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित

0: भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र ढांचे में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को शीघ्र अंतिम रूप देने तथा अपनाने का आह्वान किया है। दोनों नेताओं ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दोहराते हुए दोहरे मापदंड, राज्य प्रायोजित आतंकवाद और किसी भी परिस्थिति में आतंकवादी कृत्यों के औचित्य को अस्वीकार कर दिया। नई दिल्ली में कल दोनों नेताओं के बीच हुई वार्ता के बाद दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ द्वारा नामित सभी आतंकियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ मजबूत और समन्वित कार्रवाई का आग्रह किया। दोनों नेताओं ने उग्रवाद, कट्टरता, आतंकवाद का वित्त पोषण और धन शोधन का मुकाबला करने के लिए अधिक सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने आतंकी गतिविधियों के लिए नई और उभरती प्रौद्योगिकियों का दुरुपयोग रोकने तथा आतंकियों की भर्ती से निपटने का भी आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ भारत के रक्षा सहयोग में वृद्धि हुई है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर आज कोलकाता पहुंचेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा है। श्री रूबियो नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत भी करेंगे। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गैबार्ड ने इस्तीफा दे दिया है। सुश्री गैबार्ड ने कहा कि वे 30 जून से अपने पद से हट जाएंगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने सुश्री गैबार्ड की प्रशंसा करते हुए कहा कि प्रशासन को उनकी कमी महसूस होगी। सुश्री गैबार्ड के बाद राष्ट्रीय खुफिया प्रधान उपनिदेशक आरुण लुकास कार्यवाहक निदेशक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है। मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी न करने और केवल आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी। मंत्रालय ने कहा कि जिम्मेदारी के साथ उपयोग और जनता का सहयोग ईंधन की सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करने में सहायक होगा। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन में कार्यरत भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को वर्ष 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार के लिए चुना गया है। मेजर बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को रिकॉर्ड 2,86,000 करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। यह रिजर्व बैंक के अब तक के सबसे अधिक लाभांश में से एक है। यह निर्णय कल मुंबई में राज्यपाल संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की बैठक में लिया गया। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु 20 ओवर में 4 विकेट पर 200 रन ही बना सके। ईशान किशन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Sunil Verma. Prime Minister Narendra Modi will distribute more than 51,000 appointment letters to newly recruited youth in various government departments and organizations at the 19th Rozgar Mela through video conferencing today. Mr. Modi will also address the gathering on the occasion. Our correspondent reports that the Rozgar Mela is a key initiative reflecting

भयंकर तक हो सकता है, ऐसा दर्द के कारण पर निर्भर करता है। कान के दर्द को हम कान के अलग अलग हिस्से के अनुसार बांट सकते हैं। कान के बाहरी हिस्से जिसे पिन्ना कहते हैं, उसमें चोट लगने के कारण या इन्फेक्शन हो जाने के कारण दर्द हो सकता है। कान की बाहरी नली या एक्सटर्नल कैनाल, उसके अंदर मैल या वैक्स भर जाए और उसके फूलने से दर्द हो सकता है। कान को बार बार कुरेदा जाए हेयर पिन से, तीली से, जो अक्सर हमारे बच्चों की और महिलाओं की आदत होती है, उससे हमें बचना चाहिए क्योंकि इससे भी बहुत कष्ट हो सकता है। बच्चों के कान में कोई दाना आदि पड़ जाने से और साथ ही साथ उसे निकालने के प्रयास में उसको न निकल पाए और कभी कभी उस तरह भी दर्द होता है। बच्चों में आदत होती है कान में, नाक में दाने डालने की, इन्हें देखना चाहिए और उससे बचना चाहिए। कान में छोटे कीड़े घुस जाते हैं और उनके कारण भी भयंकर दर्द हो सकता है। कान में चोट लगने से, जैसे तमाचा लगने से, कुरेदने से, कुरेदते समय किसी का हाथ ऊपर से लग जाए, अक्सर हम देखते हैं कि कोई बड़ा अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को चाटा मार देता है और कान पर लग जाता है, उससे बाद में कान का पर्दा फट भी सकता है, दर्द तो होगा ही। कान में इन्फेक्शन बैक्टीरिया द्वारा, वायरस द्वारा या फंगस द्वारा हो तो उससे भी दर्द होगा। इसके बाद हम लेते हैं पर्दे के रोग। पर्दा यदि फट जाए चोट की वजह से या इन्फेक्शन की वजह से, अंदर से पस का दबाव उस पर पड़े, उससे दर्द हो सकता है। कान को कुरेदने से दर्द हो सकता है। पर्दे के इन्फेक्शन जिसे मारिंजाइटिस कहते हैं, वह हो तो उससे भी दर्द होगा। इसके बाद आता मध्यकर्ण, जो अंतःकर्ण और बाहरीकर्ण के बीच में होता है, इसमें इन्फेक्शन होता है, उसे हम लोग अपनी भाषा में ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। यह इन्फेक्शन नाक व गले से के आपस में इन्फेक्शन के मिलने से प्राय होता है। अगर गले में, नाक में इन्फेक्शन है तो वह कर्णकंठ नली द्वारा कान की तरफ आ जाता है। मध्यकर्ण में द्रव इकट्ठा होने से उससे भी दर्द हो सकता है। उसके अंदर छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, उनके इन्फेक्शन से दर्द हो सकता है। और बार बार इन्फेक्शन होने से, बार बार दर्द होने से कभी कभी पर्दा फट जाता है और उससे भी दर्द हो सकता है। एक और घटना हमारे सामने आती है, कान में कीड़े पड़ जाते हैं तो उन्हें मैगट्स हम बोलते हैं, और उनके कुरेदने से, उनकी हड्डी काटने से रक्त भी आता है और दर्द भी होता है। इसके बाद साइनोसाइटिस हो, राइनाइटिस हो, नाक के कष्ट हैं, गला खराब है, फेरेंजाइटिस है, टॉन्सिलाइटिस है, इनकी वजह से भी कान में दर्द हो सकता है। अंतःकरण होता है सबसे अंदरी हिस्सा, जो दिमाग से जुड़ा हुआ होता है। उसमें कोई सूजन हो, जिसे हम लेबरिंथाइटिस कहते हैं, बहुत सामान्य नहीं है, इसकी वजह से भी कान में दर्द होगा। एक कान के पीछे हड्डी होती है जिसे मैस्टॉइड हड्डी कहते हैं, उसका इन्फेक्शन हो, सूजन हो, उसके कारण भी भीषण दर्द होता है। एक होता है कान के पास ही टीएम ज्वाइंट, जो हमारी जो दांतों वाली पंक्ति है और ऊपर सिर के अंदर जो इस मैस्टॉइड हड्डी, दोनों के बीच जोड़ होता है जिससे हमारा जबड़ा चलता है, उस जोड़ में अगर दर्द हो तो भी कान में दर्द महसूस होता है। अगर टॉन्सिलाइटिस है, फरेंजाइटिस है, उनके कारण भी कान में दर्द हो सकता है। कभी कभी टॉन्सिल में या जीभ के पिछले हिस्से में कैंसर हो जाता है और दर्द कान में हुआ करता है। उससे दांतों की वजह से भी दर्द होते हैं, वो भी हम कान में महसूस कर सकते हैं। कभी कभी नसों के दर्द होते हैं, जिसे सर्वाइकल पेन हम लोग बोलते हैं, उसकी वजह से भी कान में दर्द हो सकता है। लक्षण जैसे जैसे दर्द होते हैं, जैसे में हमने अभी अलग अलग हिस्सों के हिसाब से यहाँ पर वर्गीकृत किया है, उसी हिसाब से उसके लक्षण होते हैं। उपचार हेतु सबसे पहले तो हम दर्द की दवा देंगे, उसके बाद कारण जैसा होगा, इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक देंगे और एंटी इन्फ्लेमेटरी देंगे, और कोई चीज़ फंस गई है, कोई कीड़ा पड़ गया है, कोई बाहरी चीज़ आके पड़ गई है, उसे निकालने की व्यवस्था करेंगे।

स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर सत्य मित्र की वार्ता। विषय था कान का दर्द, कारण और उपचार। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब प्रस्तुत

0: होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर।
1: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम।
0: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
1: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं। सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
0: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
1: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वैष्णवी त्रिपाठी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 से अधिक युवाओं को वितरित करेंगे नियुक्ति पत्र। राजधानी लखनऊ सहित देश भर के 47 स्थानों पर होगा रोजगार मेले का आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया में 655 करोड़ रुपए लागत की 19 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास।

0: कहा अच्छी सड़कें, फ्लाईओवर और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर ही रोजगार और निवेश की नींव। जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत प्रदेश भर में मकानों की गणना शुरू। पहले दिन 1,35,00,000 से अधिक मकानों की हुई गिनती। और प्रदेश भर में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी। मौसम विभाग ने प्रदेश के पूर्वी व पश्चिमी क्षेत्रों में अगले 3 दिनों तक और लू चलने की जारी की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 19वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। वे आयोजन को संबोधित भी करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: 19वें रोजगार मेले का आयोजन प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित देश भर के 47 स्थानों पर किया जाएगा। लखनऊ में केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कार्यक्रम में शामिल होंगे। देश के सभी हिस्सों से चयनित नवनियुक्त उम्मीदवार रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग सहित केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यभार ग्रहण करेंगे। रोजगार मेला आरंभ किए जाने के बाद देश में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से लगभग 12,00,000 नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। समाचार कक्ष से सुशील चंद्र तिवारी।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल देवरिया में 655 करोड़ रुपए की लागत से 19 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और उत्तर प्रदेश ने विकास की नई गति पकड़ी है और अब विकास की यह यात्रा रुकने वाली नहीं है। श्री योगी ने कहा कि अच्छी सड़कें, फ्लाईओवर, पुल और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर ही रोजगार व निवेश की नींव होते हैं। आज पूरे देश में उत्तर प्रदेश का नाम सम्मान व गर्व के साथ लिया जाता है। यूपी विरासत और विकास दोनों का संगम बन चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वर्ष 2014 के बाद नए भारत का निर्माण हुआ है।
2: 2014 के बाद आज जिस नए भारत का हम सब दर्शन कर रहे हैं, इसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व और उनका वह विजन है जो विकास को प्राथमिकता देता है। और प्रधानमंत्री जी के उसी विजन को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस बात को हमेशा प्राथमिकता दी है कि गति जितनी तेज होगी, विकास का लाभ उतनी तेजी के साथ आम जन को प्राप्त होगा।
0: इस अवसर पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, राज्य मंत्री ग्राम्य विकास विजय लक्ष्मी गौतम सहित कई गणमान्य उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अंतर्गत 17 निवेशकों को औद्योगिक आवंटन पत्र प्रदान किया। इस पहल से प्रदेश में नए निवेश, रोजगार और औद्योगिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने निवेशकों के साथ संवाद कर उन्हें प्रदेश में उपलब्ध औद्योगिक संभावनाओं और सरकार की योजनाओं से भी अवगत कराया। इस अवसर पर श्री योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश टूरिज्म, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के वर्ल्ड क्लास डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि जेवर और यमुना एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट अथॉरिटी के आसपास जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है वह नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश की नई तस्वीर है। इस कार्यक्रम में औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता भी उपस्थित रहे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग की ओर से जारी स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 की रिपोर्ट में वाराणसी को सेंट्रल जोन का सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश राज्यों की श्रेणी में पहले स्थान पर रहा। वाराणसी के मुख्य विकास अधिकारी प्रखर कुमार सिंह ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत यह सर्वेक्षण देश के गांवों में स्वच्छता की वास्तविक स्थिति जानने के लिए कराया गया था।
3: यह जो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण होता है, ये मुख्यतः इसके 4 पिलर्स हैं। पहला पिलर जिसमें थर्ड पार्टी एजेंसी द्वारा गांव का सर्वे किया जाता है। इसके अलावा जो सेवा स्तरीय प्रगति होती है उसकी भी निगरानी इस सर्वेक्षण में होती है। तीसरा जो हमारे नागरिक हैं उनका जो फीडबैक है, सिटीजन फीडबैक के भी इसमें 100 अंक होते हैं। और इसके अलावा जो विभिन्न तरह के संयंत्र हमारे जनपद में लगे हुए हैं, जैसे कि 3 प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट है, बायोगैस प्लांट है, FSTP है, फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट, इन सबके जो कार्यक्षमता है उसका भी आकलन इस सर्वे में किया जाता है।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत कल से प्रदेश में मकानों की गणना और सूचीकरण

0: का कार्य शुरू हो गया है। इसी क्रम में राज्य के 3,89,312 मकान सूचीकरण ब्लॉक में प्रगणकों और पर्यवेक्षकों द्वारा सर्वेक्षण कार्य शुरू किया गया। इस दौरान लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास, गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर और आगरा में ताजमहल परिसर की भी गणना की गई। इस बार सिर्फ घरों की गिनती ही नहीं बल्कि प्रदेश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान भी जनगणना का हिस्सा बन रही है। अभियान के पहले ही दिन 1,35,00,000 से अधिक घरों पर जनगणना मकान संख्या अंकित की गई। इससे पूर्व 7 से 21 मई तक स्वगणना का कार्य किया गया। मऊ के जिलाधिकारी आनंद वर्धन ने जनगणना कार्य को समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्ता के साथ संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं। अमरोहा में जनगणना में संपूर्ण जिले को कुल 3,682 गणना ब्लॉक में विभाजित किया गया है। गोरखपुर में कुल 9,322 गणना ब्लॉक बनाए गए हैं जिनमें 11,000 से अधिक प्रगणक और पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं। अमरोहा के जिलाधिकारी डॉक्टर नितिन गौड़ ने बताया कि प्रगणक घर घर जाकर जनगणना संबंधी आंकड़ों को इकट्ठा कर रहे हैं।
1: हमारे 3,680 HLBs हैं और हर किसी को अराउंड 150 एवरेज यानी कि अराउंड 600 to 800 की पॉपुलेशन हर किसी एन्यूमरेटर को करना है और ये काम जैसे वो अपने स्कूल की ड्यूटी करते हैं उसके बाद के एक घंटे में करना है। और जो ये कैलकुलेशन हुई है इसकी साइंटिफिक टूल्स के हिसाब से, उसके हिसाब से एक परिवार के कराने में लगभग 10 मिनट लग रहे हैं। तो अगर एन्यूमरेटर डेली 1 से 1.5 घंटा भी देंगे तो अपने वो दैनिक लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।
0: सर्वोच्च न्यायालय 1 जुलाई से कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने के CBSE के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति जॉय माल्य बागची और विपुल एम पंचोली की पीठ के समक्ष ये मामला उठाया। उन्होंने कहा कि ये जनहित याचिका छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों द्वारा दायर की गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन बढ़ाकर 24 मई कर दी है। CBSE ने यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया है जिससे वेबसाइट बाधित हो रही थी। बोर्ड ने बताया कि विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। प्रदेश भर में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग के अनुसार कल बांदा लगातार 6ठे दिन प्रदेश में सबसे गर्म जिला रहा जहां अधिकतम तापमान 46.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी तरह प्रयागराज में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस, झांसी और उरई में 45.4 डिग्री सेल्सियस और आगरा में तापमान 45.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में दिन में लू चलने की चेतावनी जारी की है। लखनऊ मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि इस दौरान कई इलाकों में तेज धूल भरी हवाएं चलने की भी आशंका है।
2: प्रदेश में आगामी 1 सप्ताह के दौरान कुछ स्थानों पर उष्ण लहर से भीषण उष्ण लहर के साथ कहीं कहीं उष्ण लहर से होने की संभावना के दृष्टिगत 24 मई तक प्रदेश के दक्षिणी भागों के लिए रेड अलर्ट जबकि उसके बाद 26 मई तक के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है भीषण लू और उष्ण रात्रि के लिए, और लोगों से दी गई सलाह के अनुसार सावधानी बरतने की अपेक्षा की जाती है।
0: देश में कल वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया गया। इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायता प्रणालियों को मजबूत करना है। जीवन ऐप सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी, आपातकालीन सहायता और वरिष्ठ नागरिक आवास की जानकारी उपलब्ध कराएगा। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 से अधिक युवाओं को वितरित करेंगे नियुक्ति पत्र। राजधानी लखनऊ सहित देश भर के 47 स्थानों पर होगा रोजगार मेले का आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया में 655 करोड़ रुपए लागत की 19 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, अच्छी सड़कें, फ्लाईओवर और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर ही रोजगार और निवेश की नींव। जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत प्रदेश भर में मकानों की गणना शुरू। पहले दिन 1,35,00,000 से अधिक मकानों की हुई गिनती। और प्रदेश भर में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी। मौसम विभाग ने प्रदेश के पूर्वी व पश्चिमी क्षेत्रों में अगले 3 दिनों तक और लू चलने की जारी की चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो।

0: जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
2: ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब प्रस्तुत है आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना पर कार्यक्रम आसपास। कार्यक्रम आसपास सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपके रेडियो साथी प्राची जैन का प्यार भरा नमस्कार।

25 से 10 जून तक पात्रों को मिलेगा राशन। अंत्योदय और पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को 25 मई से 20 जून तक राशन मिलेगा। डीएसओ ने बताया कि अंत्योदय कार्ड धारकों को 35 किलो, पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को प्रति यूनिट 5 किलो राशन मिलेगा। उन्होंने कहा कि अंत्योदय लाभार्थियों को प्रति कार्ड 21 किलो गेहूं, 9 किलो चावल, 4 किलो बाजरा, 1 किलो मक्का इसमें शामिल है। पात्र गृहस्थी योजना के राशन कार्ड धारकों और लाभार्थियों को 2 किलो गेहूं, 1 किलो चावल, 1-1 किलो बाजरा और मक्का दिया जाएगा। यात्रियों को पानी का वितरण। एक पहल संस्था की ओर से शुक्रवार को राजा की मंडी रेलवे स्टेशन में विशेष शिविर लगाया गया। यात्रियों को निशुल्क पानी का वितरण किया गया। ये कार्य सुबह से लेकर शाम तक चला। राजा की मंडी रेलवे स्टेशन से हर दिन 200 से अधिक ट्रेनें गुजरती हैं।

ट्रेनों का किया गया विस्तार। रेलवे ने कई ट्रेनों का विस्तार किया है। इसमें अहमदाबाद पटना एक्सप्रेस, उधना मधुबनी एक्सप्रेस, उधना झंझारपुर एक्सप्रेस, चर्रापल्ली दानापुर एक्सप्रेस प्रमुख रूप से इसमें शामिल हैं। रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि इन सभी ट्रेनों का संचालन अलग अलग तिथियों में किया जाएगा।

सड़क चौड़ी करने के बाद बंद होगा हरि पर्वत मदिया कटरा मार्ग। हरि पर्वत से मदिया कटरा स्थित रवि हॉस्पिटल तक वाहनों का आवागमन बंद करना फिलहाल टल गया है। नगर निगम द्वारा सीएम ग्रिड योजना के तहत शुक्रवार से कार्य शुरू होना था। पाइपलाइन डालने के लिए सड़क की खुदाई करनी थी। एसपी यातायात के साथ शुक्रवार को हुई बैठक में पुलिस ने सड़क की एक लेन बंद करने से पहले दूसरी लेन को चौड़ा करने के लिए कहा है, जिससे एक लेन पर वाहनों के आवागमन में समस्या नहीं आएगी।

कर्मचारी चयन आयोग एसएससी की कांस्टेबल जीडी परीक्षा 2026 की तिथि में बदलाव किया गया है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ

0: कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद अब आकाशवाणी आगरा से भी शुरू हो चुका है। हेलो मेरी पसंद कार्यक्रम में अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए रिकॉर्डिंग प्रत्येक शुक्रवार को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक दोपहर में की जाती है। आप भी अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए हमारे कार्यक्रम में फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 0562-350-1852 और दूसरा नंबर है 0562-297-0337 और कार्यक्रम को सुन सकते हैं प्रत्येक सोमवार रात 10 बजे। श्रोताओं, आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण अगले दिन यानी मंगलवार को दोपहर 3 बजे से किया जाता है। श्रोताओं, हमारी आवाज आप तक पहुंचती है मीडियम वेव के 1530 किलोहर्ट्ज़ और 196.1 मीटर पर। आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल के माध्यम से भी न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर सुन सकते हैं, क्योंकि कार्यक्रम अब सिर्फ रेडियो सेट पर ही नहीं आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है।
1: श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं खोए हुए व्यक्तियों के बारे में सूचना। एक सूचना के अनुसार सूरज पुत्र गौरी शंकर, उम्र 19 वर्ष, निवासी ग्राम दगरा, तहसील राजाखेड़ा, जिला धौलपुर, राजस्थान, लापता हैं। इनका रंग गेहुआ, कद 5 फुट, उम्र 19 वर्ष, चेहरा पतला है, बीच माथे में चोट का निशान है। इस खोए हुए युवक के विषय में कोई भी सूचना मिलने पर प्रभारी निरीक्षक थाना आगरा कैंट को सूचित करें। एक अन्य सूचना के अनुसार आशीष पुत्र दयाशंकर, उम्र 20 वर्ष, निवासी ग्रामपुरा नीमडाडा, थाना बासौनी आगरा, दिनांक 3 मार्च 2026 से लापता है। इनका कद 5 फुट 2 इंच, रंग सांवला, चेहरा लंबा है, बाल काले हैं। इन्होंने ब्लैक रंग की टी शर्ट और नीले रंग की जीन्स पहन रखी है। इस खोए हुए युवक के विषय में कोई भी सूचना मिलने पर प्रभारी निरीक्षक थाना आगरा कैंट को सूचित करें। एक अन्य सूचना के अनुसार सपना पत्नी धर्मेश, उम्र 33 वर्ष, निवासी स्वरूप नगर, नैनाना जाट, सदर बाजार, आगरा, दिनांक 7 अप्रैल 2026 से लापता है। इनकी उम्र 33 वर्ष, कद 5 फुट 1 इंच, रंग सांवला है। इन्होंने काले रंग का सलवार सूट पहन रखा है। इस खोई हुई महिला के विषय में कोई भी सूचना मिलने पर थाना सदर बाजार आगरा को सूचित करें। खोई हुई व्यक्ति के संबंध में सूचना समाप्त हुई।

मिलेगा हाई स्पीड भत्ता। रेलवे ने पटरियों पर बढ़ती तेज गति को लक्ष्य तक पहुंचाने वाले रनिंग स्टाफ को बड़ा प्रोत्साहन दिया है। रेलवे बोर्ड ने वंदे भारत समेत देश की 155 प्रमुख ट्रेनों को आधिकारिक तौर पर हाई स्पीड श्रेणी में शामिल कर लिया है। इस निर्णय से इन ट्रेनों का संचालन करने वाले हजारों लोको पायलट, सहायक लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर गार्ड के भत्तों में 5 से 10 हजार रूपये तक की वृद्धि का रास्ता साफ हो गया है। अभी तक वंदे भारत और कई अन्य अत्याधुनिक ट्रेनें पटरियों पर दौड़ तो रही थीं, लेकिन तकनीकी रूप से हाई स्पीड सूची में शामिल न होने से उनके स्टाफ को विशेष भत्ता नहीं मिल पा रहा था। रेलवे बोर्ड ने 21 मई को 155 हाई स्पीड ट्रेनों की सूची जारी की है। इसमें वंदे भारत राजधानी शताब्दी, दुरंतो तेजस के साथ प्रयागराज एक्सप्रेस, महाबोधि शिव गंगा जैसी ट्रेनों को जगह दी गई है।

सुबह 8 बजे से ही चल रही लो अस्पतालों में बहुत से केस दर्ज और मरीजों की बड़ी संख्या। तेज धूप और सुबह से ही लू चलने से शुक्रवार को आगरा प्रदेश का चौथा सबसे गर्म शहर रहा। लू चलने से सुबह 8 बजे के बाद घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। दोपहर में तेज धूप निकली, इससे अधिकतम तापमान 45.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लू और अधिक तेज धूप से बेहोशी, छाने, चक्कर आने के साथ ही थोड़ी देर धूप में रहने से लोगों का गला सूख रहा है। सरकारी और निजी अस्पतालों में उल्टी, दस्त, कमजोरी, थकान के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। सुबह से ही तेज धूप निकलने के साथ ही लू चलने लगी। अगर आपको भी कोई परेशानी हो तो कंट्रोल रूम के नंबर नोट कर लीजिए, 0562260412। दूसरा नंबर है 9458569043। हीट स्ट्रोक में आप ये कर सकते हैं, बेहोशी, छाने और शरीर का तापमान बढ़ने पर मरीज के शरीर पर गीला कपड़ा लपेट कर पंखे में उसे लिटा दें। शरीर पर पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन ठंडा पानी ना डालें, इससे शरीर का तापमान कम होने लगता है और डॉक्टर को दिखाना ना भूलें। अपने बचाव के लिए आप ये कर सकते हैं कि सुबह शाम 10 बजे से शाम 4 बजे तक घर से बाहर निकलने से बचें। कुछ बहुत ज्यादा ही जरूरी काम हो तभी बाहर निकलें। लू से बचने के लिए घर से खाली पेट ना निकलें। मधुमेह और हृदय रोगियों को ज्यादा खतरा रहता है। ताजा खाना खाएं, धूप से बचें, छाता लेकर निकलें, नींबू की शिकंजी, नारियल पानी, छाछ और लस्सी का सेवन करें। चिकनाई युक्त भोजन का सेवन कम से कम करें। धूप से आने के बाद ठंडे पेय पदार्थ और आइसक्रीम का सेवन तुरंत ना करें। एनटीए करेगा पूरी फीस वापस, बैंक डिटेल अपडेट करना आवश्यक। संयुक्त पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट को लेकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने बड़ा निर्णय लिया है। परीक्षा रद्द होने के बाद अब सभी अभ्यर्थियों को उनकी आवेदन फीस वापस की जाएगी। इसके लिए फीस रिफंड की प्रक्रिया एनटीए ने शुरू कर दी है। एनटीए ने नोटिफिकेशन जारी कर स्पष्ट किया है कि जिन अभ्यर्थियों ने नीट यूजी 2026 के लिए आवेदन शुल्क जमा किया था उन्हें पूरी धनराशि रिफंड कर दी जाएगी। इसके लिए अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की अतिरिक्त फीस नहीं ली जाएगी। एजेंसी ने यह भी बताया कि 21 जून को प्रस्तावित री एग्जाम का पूरा खर्च एनटीए स्वयं वहन करेगी।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आज पास समाप्त करने की अपने रेडियो साथी प्राची जैन को इजाजत दीजिए। नमस्कार, ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के

0: लिए केंद्र सरकार को 2,86,000 करोड़ रुपए के अधिशेष हस्तांतरण को मंजूरी दी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत की 4 दिन की यात्रा पर कोलकाता पहुंचे, आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इनमें विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवचयनित युवा शामिल हैं। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता दर्शाता है।
1: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12 लाख नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के सभी हिस्सों से चयनित नव नियुक्त उम्मीदवार केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और भागों में नियुक्त होंगे, जिसमें रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग सहित अन्य विभाग शामिल हैं। यह रोजगार मेला देश के विकास में युवाओं की भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र ढांचे में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को शीघ्र अंतिम रूप देने का आह्वान किया है। दोनों नेताओं ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दोहराते हुए दोहरे मापदंड, राज्य प्रायोजित आतंकवाद और किसी भी परिस्थिति में आतंकवादी कृत्यों के औचित्य को अस्वीकार कर दिया। नई दिल्ली में कल दोनों नेताओं के बीच हुई वार्ता के बाद दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ द्वारा नामित सभी आतंकियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ मजबूत और समन्वित कार्रवाई का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ भारत के रक्षा सहयोग में वृद्धि हुई है।
2: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत और साइप्रस के बीच सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और साइप्रस की मित्रता साझा मूल्यों और एकजुटता पर आधारित है।
3: 1962 में हमारे राजनयिक संबंधों की स्थापित के बाद से ही भारत और साइप्रस एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। हमारी जानचीपुर की मित्रता अब से सम्मान, साझा मूल्य, विश्वास और एकजुटता पर आधारित है। आने वाले वर्षों में भारत साइप्रस के साथ अपने व्यापक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व के साथ हमारी मित्रता निरंतर सुदृढ़ होती जाएगी।
0: राष्ट्रपति मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को रिकॉर्ड 2,86,000 करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। ये रिजर्व बैंक के अब तक के सबसे अधिक लाभांश में से एक है। यह निर्णय कल मुंबई में रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 623वीं बैठक में लिया गया। बैंक ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान उसकी सकल आय पिछले वर्ष की तुलना में 26.42% बढ़ी। बैंक का व्यय 27.6% बढ़ा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि

0: देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी न करने और केवल आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज 91 पैसे प्रति लीटर तक की वृद्धि हुई। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में यह तीसरी वृद्धि है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रूपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल के मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रूपये प्रति लीटर हो गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YARNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर कोलकाता पहुंच गए हैं। श्री रूबियो की पहली भारत यात्रा है। ये यात्रा अमेरिका और भारत के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार, रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और हिंद प्रशांत रणनीति में सहयोग का विस्तार करना है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने हवाई अड्डे पर श्री रूबियो का स्वागत किया। श्री रूबियो आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी बातचीत करेंगे। उनका अमरीकी दूतावास में होने वाले अमरीकी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सो मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को वर्ष 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मेजर अभिलाषा बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन में कार्यरत हैं।
3: मेजर अभिलाषा बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल की कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में कार्यरत हैं। मेजर बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं। मेजर बराक ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली तीसरी भारतीय शांति रक्षक बन गई हैं। इससे पहले मेजर सुमन गवानी को 2019 में और मेजर राधिका सेन को 2023 में ये पुरस्कार मिला था। वर्ष 2016 में स्थापित ये पुरस्कार प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में तैनात बलों के कमांडरों और मिशन प्रमुखों के नामांकनों में से चुना जाता है। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सैनिकों और पुलिस कर्मियों का सबसे बड़ा योगदान देने वाले देशों में शामिल है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महिला दल ने एवरेस्ट शिखर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। यह उनका पहला अभियान था। 14 सदस्यीय दल में 11 महिला पर्वतारोही और 3 तकनीकी तथा सहायक कर्मचारी शामिल थे। एक रिपोर्ट।
4: इस दल ने 21 मई को नेपाल की ओर से दक्षिण कोल मार्ग से विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। अभियान को 19 अप्रैल को बल के मुख्यालय से रवाना किया गया था। स्वच्छ हिमालय ग्लेशियर बचाओ अभियान के अंतर्गत दल ने पर्यावरण जागरूकता गतिविधियां भी चलाई और एवरेस्ट क्षेत्र से गैर बायोडिग्रेडेबल कचरा एकत्र किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस सफलता पर दल को बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि दुर्गम भूभाग और कठोर परिस्थितियों में यह उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करके टीम ने बल के आदर्श वाक्य राष्ट्र सर्वोपरि को कायम रखा है। उपलब्धि के साथ बल ने अब तक 232 पर्वतारोहण अभियान पूरे कर लिए हैं। इनमें एवरेस्ट पर 5 सफल चढ़ाई शामिल हैं। बल ने एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, लोहत्से, धौलागिरी और मनालसू सहित दुनिया की 8,000 मीटर से अधिक ऊंची 6 चोटियों पर भी चढ़ाई की है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: मध्य प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता यूसीसी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कल सचिवालय में वेबसाइट ucc.mp.gov.in का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक, राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन प्रस्तावित यूसीसी पर अपने विचार और सुझाव साझा कर सकते हैं। प्रतिक्रिया

0: की अंतिम तिथि इस वर्ष 15 जून है। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। हैदराबाद में कल टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु की टीम निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर केवल 200 रन ही बना सकी। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 5 दिन में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में भी लू की चेतावनी जारी की है। आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म की अगली कड़ी में हम प्रसिद्ध वायलिन वादिका एन राजम से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इसे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद कनकलता। आरक्षण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का बयान अनेक अखबारों की पहली सुर्खी है। अमर उजाला ने न्यायालय के हवाले से लिखा है, माता पिता में से कोई भी आईएएस अफसर तो बच्चों को आरक्षण क्यों। राजस्थान पत्रिका की ऐसी ही सुर्खी है, जनसत्ता लिखता है, मलाईदार तबके के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सवाल। नीट पेपर लीक केस में एक और शिक्षिका की गिरफ्तारी हिंदुस्तान के पहले पृष्ठ पर है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, तीसरी मनीषा फिजिक्स की एक्सपर्ट हुई गिरफ्तार। दैनिक भास्कर लिखता है, अब तक 11 गिरफ्तार, इनमें से 7 आरोपी महाराष्ट्र के। दैनिक जागरण ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान दिया है, नीट यूजी की दोबारा होने वाली परीक्षा को कराएंगे शत प्रतिशत त्रुटि रहित। नवभारत टाइम्स ने त्विषा शर्मा मामले में लिखा है, पोस्टमार्टम फिर होगा, त्विषा का 10 दिन से फरार पति हिरासत में। दैनिक ट्रिब्यून ने कुश्ती महासंघ द्वारा पहलवान विनेश फोगाट को घरेलू प्रतियोगिताओं में भाग लेने के अयोग्य घोषित करने पर हाईकोर्ट की कड़ी फटकार की खबर देते हुए लिखा है, प्रतिशोध की भावना से काम ना करें WFI। लोकसत्ता की हेडलाइन है, आसमानी आग में झुलसा देश, पारा 47 डिग्री के पार। जनसत्ता संपादकीय में लिखता है, इस बात पर भी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए कि आखिर मैदानों के साथ अब पहाड़ भी क्यों तपने लगे हैं। मौसम विज्ञानियों का मानना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में वनों की अंधाधुंध कटाई, अवैज्ञानिक तरीके से खनन और पर्यटक वाहनों के बढ़ते दबाव से स्थानीय मौसम चक्र में बदलाव हो रहा है। ऐसे में अगर अब भी हम नहीं संभले तो निकट भविष्य में इसका परिणाम भयावह हो सकता है। एनसीईआरटी की 8वीं की किताब में न्यायपालिका पर विवादित चैप्टर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 3 शिक्षाविदों को ब्लैकलिस्ट से हटाया, दैनिक भास्कर में है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को 2,86,000 करोड़ रुपए के अधिशेष हस्तांतरण को मंजूरी दी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत की 4 दिन की यात्रा पर कोलकाता पहुंचे, आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi to distribute over 51,000 appointment letters to new recruits in various government departments today. RBI approves record surplus transfer of 2.86 lakh crore rupees to central government for financial year 2025-26. US Secretary of State Marco Rubio arrives in Kolkata on his maiden four-day visit to India to call on Prime Minister Modi in New Delhi this afternoon. IMD issues red alert for severe heat wave over East Madhya Pradesh, East Uttar Pradesh and Vidarbh today. Indian Army officer Major Abhilasha Barak honored with prestigious UN military

0: की अफसर मेजर अभिलाषा बराक को साल 2025 का अक्वामे मुत्तहिदा की फौजी सिन्फी वकील के अवार्ड से नवाजा गया है। और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 19वें रोजगार मेले के तहत आज मुख्तलिफ सरकारी महकमों और इदारों में 9 तकर्रुरशुदा 51,000 से ज्यादा नौजवानों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तकर्रुरनामे तकसीम करेंगे। जनाब मोदी इस मौके पर तकरीब से खिताब भी करेंगे। हमारे नामा निगार ने खबर दी है कि रोजगार मेला वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से रोजगार पैदा करने को दी जा रही तरजीह की अक्कासी करता है और इस विजन को हकीकत में बदल रहा है। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: रोजगार मेला वज़ीर-ए-आज़म मोदी की जानिब से रोजगार पैदा करने को तरजीह देने की जानिब एक अहम कदम है जो नौजवानों को बामाना मौके फराहम करने और मुल्क की तामीर में अहम रोल अदा कर रहा है। अपने आगाज के बाद से मुल्क भर में मुनक़िद हुए 18 रोजगार मेलों में अब तक 12 लाख तकर्रुरनामे जारी किए जा चुके हैं। 19वां रोजगार मेला मुल्क भर के 47 मकामात पर होगा। मुल्क भर से तकर्रुरी पाने वाले उम्मीदवार मुख्तलिफ वजारतों और महकमों में मुलाजमत हासिल करेंगे जिनमें रेलवेज, दाखिला, सेहत व खानदानी बहबूद और आला तालीम समेत दीगर महकमे और वजारतें शामिल हैं। नई दिल्ली से दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
0: भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने रिकॉर्ड 2.86 लाख करोड़ रुपए की रकम इजाफी असासे के तौर पर मरकजी हुकूमत को मुंतकिल करने की इजाजत दी है। ये रकम माली साल 2025-26 के लिए थी जो आरबीआई की जानिब से मुनाफे की तकसीम डिविडेंड की अब तक की सबसे बड़ी रकम है। यह फैसला आरबीआई के डायरेक्टर्स के मरकजी बोर्ड की 623वीं मीटिंग में लिया गया जिसकी सदारत कल मुंबई में गवर्नर संजय मल्होत्रा ने की। आरबीआई ने अपने बयान में कहा है कि उसने मजमुई आमदनी में पिछले साल के मुकाबले इस साल यानी 2025-26 के दौरान 26.42% इजाफा हुआ है जबकि अखराजात में जिनमें इम्कानी खतरात शामिल नहीं है 27.60 का इजाफा हुआ है। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो अपने 4 रोजा भारत दौरे पर आज कोलकाता पहुंच गए हैं। ये भारत का उनका पहला दौरा होगा जो वाशिंगटन और नई दिल्ली के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मुस्तहकम करने की जानिब अहम कदम साबित होगा। जनाब रूबियो के दौरे के दौरान तिजारत, दिफा, तवानाई की यकीनी फराहमी, टेक्नोलॉजी और भारत बहरुल काहिल हिकमत अमली जैसे शोबों में तआवुन को वसत देने पर तवज्जो मरकूज किए जाने का इम्कान है। भारत में अमरीकी सफीर सर्गियो गोर ने हवाई अड्डे पर जनाब रूबियो का इस्तकबाल किया। अमरीकी वजारत खारजा ने कहा है कि कोलकाता में अपने क्याम के दौरान जनाब रूबियो मदर हाउस, सेंट टेरेसा मिशनरीज ऑफ चैरिटी और शहर के चिल्ड्रन होम का दौरा करेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब गोर ने बताया कि जनाब रूबियो दिन में नई दिल्ली का सफर करेंगे और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। अमरीकी सफीर के मुताबिक ये दौरा बुनियादी तौर पर दिफाई शराकत दारियों, जदीद टेक्नोलॉजीज, तिजारती ताल्लुकात और क्वाड फ्रेमवर्क के तहत इश्तराक जैसे अहम स्ट्रेटेजिक शोबों में तआवुन को मुस्तहकम करने पर तवज्जो मरकूज करेगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और कुब्रुस के दरमियान सेमीकंडक्टर्स, खला और मसनूई जहानत जैसे नए और उभरते हुए शोबों में तआवुन की बेपनाह सलाहियत मौजूद है। राष्ट्रपति भवन में कल कुब्रुस के अपने हमनसब निकोलस क्रिस्टोडोलाइड्स और उनके वफद को दिए गए इशाइये के बाद सदर जमहूरिया इजहार ख्याल कर रही थीं। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी और जिद्दत तराजी दो तरफा ताल्लुकात के मुस्तकबिल के मैदानों के तौर पर उभरे हैं।
2: 1962 में हमारे राजनयिक संबंधों की स्थापित के बाद से ही भारत और साइप्रस एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। हमारे जानचीपुर की मित्रता आपसे सम्मान, साझा मूल्य, विश्वास और एकजुटता पर आधारित है। आने वाले वर्षों में भारत साइप्रस के साथ अपने व्यापक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व के साथ हमारी मित्रता निरंतर सुदृढ़ होती जाएगी।
0: सदर जमहूरिया ने सरहद पार दहशतगर्दी और कसीर जहती इदारों में इस्लाहात जैसे अहम मामलों पर कुब्रुस की हिमायत की सताइश की। सदर जमहूरिया ने कुब्रुस की सालमियत, इत्तेहाद और इलाकाई यकजहती के तहत भारत की गैर मुतजलजल हिमायत का इयादा भी किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि दो तरफा ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक साझेदारी में बदल दिया गया है जो भारत और कुब्रुस के दरमियान बढ़ती सूझबूझ, गहराई और बाहमी एतमाद की अक्कासी करते हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारतीय फौज की अफसर मेजर अभिलाषा बराक को जो लेबनान में अक्वामे मुत्तहिदा के कयाम अमन मिशन में खिदमत अंजाम दे रही हैं अक्वामे मुत्तहिदा

0: के 2025 के बावकार अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया है। उन्हें यह अवार्ड इस साल की फौजी सिन्फी वकील के तौर पर दिया जा रहा है। मेजर बराग, जो फिलहाल एक भारतीय बटालियन में लेबनान में अक्वामे मुत्तहिदा की उबूरी फोर्स में खवातीन की सरगर्मी वाली टीम की कमांडर UNIFIL के तौर पर खिदमत अंजाम दे रही हैं, भारतीय फौज के जंगजू हेलीकॉप्टर की पहली खातून पायलट भी हैं। ये अवार्ड हासिल करने वाली मेजर बराग तीसरी भारतीय कयाम अमन फौजी हैं जिन्हें ये एजाज हासिल हुआ है। इससे पहले मेजर सुमन गवानी को साल 2019 में जनूबी सूडान में अक्वामे मुत्तहिदा मिशन के तहत खिदमत अंजाम देने पर इस अवार्ड से नवाजा गया था और मेजर राधिका सेन को साल 2023 में इस अवार्ड से नवाजा गया था। उन्हें यह अवार्ड जमहूरिया कोंगो में अक्वामे मुत्तहिदा के इस्तेकाम मिशन के तहत उनकी खिदमत पर दिया गया था। भारत तिब्बत सरहद पुलिस ITBP ने माउंट एवरेस्ट पहुंचने वाली अभी तक की पहली ऐसी बैन अलाक्वामी कोहे पैमा मुहिम मुकम्मल कर ली है जो सिर्फ खवातीन पर मुश्तमिल है। ये कामयाबी इस फौज की कोहे पैमाई के मैदान में तारीखी संगे मील है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: ITBP की एक 14 रकनी कोह पैमा टीम ने, जो 11 खवातीन, 3 तकनीकी माहरीन और मददगार अमले पर मुश्तमिल है, इस माह की 21 तारीख को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी सर कर ली। इस मुहिम को 19 अप्रैल को ITBP के सदर दफ्तर से रवाना किया गया था। अपनी हिमालय साफ करो और ग्लेशियर को महफूज करो मुहिम के तहत टीम ने माहौलियाती बेदारी की सरगर्मियां अंजाम दी और एवरेस्ट खित्ते से नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरे को इकट्ठा किया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने टीम को माउंट एवरेस्ट पर कौमी झंडा फहराने पर मुबारकबाद दी। जनाब शाह ने कहा कि इस बुलंदतरीन इलाके और सख्त आबोहवा के हालात में ये काबिल तहसीन कारनामा अंजाम देकर टीम ने ITBP के खुद से पहले मुल्क के मोटों की शान बरकरार रखी है। जिज्ञासा पांडे की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम पे।
0: आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 91 पैसे फी लीटर इजाफा हुआ है। 10 दिन से भी कम मुद्दत में ये तीसरा इजाफा है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत में 87 पैसे का इजाफा हुआ है और ये 99 रुपये 51 पैसे फी लीटर हो गया है, जबकि डीजल की कीमत में 91 पैसे का इजाफा होकर ये 92 रुपये 49 पैसे लीटर हो गया है। ये इजाफा ईरान तनाजे और आमनाए हुरमुज में रुकावट के सबब खाम तेल की आलमी कीमतों में अचानक इजाफे के दौरान हुआ है। इस दौरान पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत ने बताया कि भारत में पेट्रोल और डीजल भरपूर मकदार में दस्तियाब है और पूरे मुल्क में सप्लाई भी मुस्तहकम है। सोशल मीडिया पोस्ट में वजारत ने शहरियों को मशवरा दिया है कि वो घबराहट में खरीदारी ना करें और ईंधन की खरीदारी अपनी असल जरूरत के मुताबिक करें। वजारत ने मजीद कहा कि जिम्मेदारी के साथ की जाने वाली खपत और आवाम के तआवुन से इस यकीन दहानी में मदद मिलेगी कि ज्यादा मांग वाले इन दिनों के दौरान ईंधन सभी के लिए दस्तियाब है। मध्य प्रदेश सरकार ने यकसां सिविल कोड UCC की जानिब एक अहम कदम उठाया है। वजीर आला मोहन यादव ने कल सेक्रेटेरिएट में UCC.MP.GOV.IN वेबसाइट का आगाज किया। पोर्टल के जरिए सियासी पार्टियां और समाजी तंजीमें मुजवजा UCC मामले पर अपने ख्यालात और मशवरे पेश कर सकती हैं। रद्दअमल दाखिल करने की आखिरी तारीख इस साल 15 जून मुकर्रर की गई है। सानवी तालीम के मरकजी बोर्ड CBSE ने 12वीं जमात के बोर्ड इम्तिहानात के जवाबी पर्चों की स्कैंड फोटोकॉपी हासिल करने की आखिरी तारीख में एक दिन की तौसी करते हुए इसे 24 मई तक बढ़ा दिया है। इससे पहले इसकी आखिरी तारीख आज तक थी। CBI ने कहा कि ये पिछले कुछ दिनों से इसकी वेबसाइट पर CBSE ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से इसकी वेबसाइट पर गैर मुतवक्के ट्रैफिक और गैर मजाज इंटरफेस की मुतादित कोशिशों से खलल अंदाजी के खदशे के बाद ये फैसला लिया गया। बोर्ड ने इत्तला दी है कि जवाबी पर्चों की स्कैन कॉपी हासिल करने के बाद पर्चों की दोबारा जांच के लिए तलबा को 2 दिन मिलेंगे। भारतीय महकमा मौसमियात ने मशरकी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आज शदीद गर्मी से मुतालिक रेड अलर्ट जारी किया है। महकमा मौसमियात ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा में अगले 5 दिन के दौरान सख्त गर्मी से मुतालिक ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। इसी तरह के मौसमी हालात अगले 5 दिन तक साहिली आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मगरबी मध्य प्रदेश और मगरबी उत्तर प्रदेश में भी रहेंगे। गंगाई मगरबी बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में आज मौसम के गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। इस दौरान भारतीय महकमा मौसमियात ने अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, जैली हिमालयी मगरबी बंगाल और सिक्किम में कल तक शदीद बारिश की पेशगोई की है। मध्य प्रदेश में शदीद गर्मी के हालात जारी हैं। ریاست کے 42 ضلعوں میں بھارتی محکمہ موسمیات نے شدید گرمی سے متعلق وارننگ جاری کی ہے۔

0: कई खित्तों में दर्जे हरारत के औसत से ज्यादा रहने पर रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किए गए हैं। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: मध्य प्रदेश शदीद गर्मी की गिरफ्त में है। रियासत में टीकमगढ़, छतरपुर और पन्ना सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। इन तीनों मकामात पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। ग्वालियर और 20 दिगर जिलों में शदीद गर्मी से मुतालिक रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि ग्वालियर और दिगर 20 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और भोपाल, इंदौर समेत दिगर 16 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश के 10 जिलों में दर्ज हरारत कल 44 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहा। गर्मी की यह शदीद लहर 31 मई तक जारी रहेगी। इसका मतलब यह है कि मध्य प्रदेश के लोगों को अगले 10 दिन तक गर्मी से कोई राहत नहीं मिलेगी। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ सवरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
0: ट्रंप इंतजामिया ने अमेरिका के ग्रीन कार्ड तरीकेकार में एक बड़ी तब्दीली की है। उन्होंने कहा है कि उन गैर मुल्की शहरियों को जो मुस्तकिल सकूनत चाहते हैं, इसकी दरख्वास्त देने के लिए अपने वतन वापस जाना होगा। इस कदम से पहले अमेरिकी शहरियत और इमिग्रेशन खिदमात USCIS ने एक पॉलिसी तैयार की थी, जिसमें अमेरिका में रहने वाले सिर्फ उन लोगों को मंजूरी दी जाएगी जो गैर मामूली हालात से दो चार हैं। अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड ने अपने ओहदे से इस्तीफे का ऐलान किया है। मोहतरमा गबार्ड ने कहा है कि वो अपने शौहर अब्राहम विलियम्स में हड्डियों के कैंसर की तशखीस के बाद अपने ओहदे से इस्तीफा दे रही हैं, जो 30 जून से नाफिज हो जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को लिखे इस्तीफे में मोहतरमा गबार्ड ने कहा कि वो गुज़िश्ता 1.5 साल से नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर के ओहदे पर फ़राइज़ अंजाम देने का मौका फराहम करने पर बेहद मशकूर हैं। आईपीएल क्रिकेट में कल रात हैदराबाद में खेले गए मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से शिकस्त दी। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने मुकर्रर 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर शानदार 255 रन बनाए। आज लखनऊ में शाम 7:30 बजे लखनऊ जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर।
1: शुक्रिया जमीर। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के अखबारात ने अलग अलग खबरों को शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और कुब्रुस के सदर क्रिस्टोविड लराइस के दरमियान हुई बातचीत पर तवज्जो मरकूज की है। बातचीत के बाद एक मुश्तरका बयान में जनाब मोदी ने कहा कि भारत और कुब्रुस ने ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की सतह तक ले जाने का फैसला किया है और सरमायाकारी को दोगुना करने का हदफ मुकर्रर किया है। रोजनामा प्रताप और इंकलाब ने वजारत खारजा के हवाले से खबर दी है कि क्वाड ममालिक के वजारत खारजा की मीटिंग 26 तारीख को मुनक़िद होगी, जिसमें शिरकत के लिए अमरीका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के वजारत खारजा भारत आएंगे। इस मौके पर भारत बहरुल काहिल खत्ते और बाहमी मफादात के बैन अलावी मसायल पर गौर वखौज किया जाएगा। राज्यसभा की 26 सीटों पर इंतखाबात 18 जून को होंगे। इस खबर को रोजनामा इंकलाब ने खसूसी तौर पर शाये किया है। इस बात का ऐलान इंतखाबी कमीशन ने कल किया।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज मुख्तलिफ सरकारी महकमों में नए भर्ती किए गए अफराद को 51,000 से ज्यादा तकरुनामे तकसीम करेंगे। RBI ने माली साल 2025-26 के लिए 2.86 लाख करोड़ रुपए की रिकॉर्ड इजाफी रकम मरकजी हुकूमत को सौंपने की इजाज़त दी है। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो भारत के अपने पहले 4 रोजों दौरे पर कोलकाता पहुँच गए हैं। वो आज दोपहर नई दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। भारतीय महकमे मौसमियात ने मशरकी मध्य प्रदेश, मशरकी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आज शदीद गर्मी के पेश नज़र रेड अलर्ट जारी किया है। भारतीय फौज के अफसर मेजर अभिलाषा बराक को साल 2025 का अक़वामे मुत्तहिदा की फौजी सिन्फी वकील के अवार्ड से नवाजा गया है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरनामा खत्म हुआ।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। 8:45 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि। कार्यक्रम का पहला गीत हमने उदित नारायण, अलका याग्निक और निहार के स्वर में फिल्म गदर से लिया है। इसे लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत से सजाया है उत्तम सिंह ने।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लगान फिल्म का ये गीत, जिसे गाया था उदित नारायण ने, अलका याग्निक, सुखविंदर सिंह और श्रीदेव ने। जावेद अख्तर की शब्द रचना को सर्वबद्ध किया था ए आर रहमान ने। आइए अब सुनते हैं पलक मुच्छल को फिल्म एम एस धोनी ने, और इस गीत को लिखा है मनोज मुंतशिर ने और संगीत से सजाया है अरमान मलिक ने।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम को फिल्म लकी में। समीर के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया था अदनान सामी ने। आइए अब सुनते हैं राहत फतेह अली खान के स्वर में फिल्म लव आजकल का ये गीत। इरशाद कामिल की शब्द रचना को संगीत में पिरोया है प्रीतम ने।

0: जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए इटावा और हमीरपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं इटावा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अमित कुमार तिवारी का।
1: इटावा के बुद्धा पार्क में पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के द्वारा 14 करोड़ लागत से होने वाले 11 परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया गया। इनको जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे पर्यटन एवं संस्कृति विभाग कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि महिला आरक्षण बिल सरकार के द्वारा महिलाओं को हक दिलाने के लिए लाया जा रहा है। इससे महिलाएं समाज में अपना हक प्राप्त करेंगी। उत्तर प्रदेश सरकार में होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा मंत्री व जनपद इटावा के प्रभारी मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने संसद में नारी शक्ति से जुड़े विधेयकों के विरोध को लेकर कांग्रेस सपा पर तीखा हमला बोला। धर्मवीर प्रजापति ने कहा कि 16 व 17 अप्रैल को संसद में पेश महत्वपूर्ण विधेयकों का विरोध कर विपक्ष ने महिलाओं की आकांक्षाओं को ठेस पहुँचाई है। कड़ी मेहनत और लगन से हर सपना पूरा हो सकता है, इसे साबित किया है जसवंत नगर की प्रख्या भदौरिया ने। यूपी बोर्ड हाईस्कूल परीक्षा 2026 में प्रदेश में 5वां स्थान हासिल कर प्रख्या ने जिले का नाम रोशन किया है। प्रख्या भदौरिया ने 600 में से 582 अंक प्राप्त कर 97% के साथ यूपी टॉप 5 में जगह बनाई। प्रख्या ने बताया कि वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करके IPS बनना चाहती है और देश की सेवा करना चाहती है। इटावा पुलिस लाइन ग्राउंड में दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि DIG हरीश चंद्र ने 483 महिला आरक्षी रिक्रू की पासिंग आउट परेड की सलामी ली।

0: क्रम में ऑनलाइन माध्यम से डीजीपी और मुख्यमंत्री का उद्बोधन सुना गया। एसएसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने महिला आरक्षियों की लगन और ट्रेनिंग की तारीफ करते हुए बधाई दी। डीआईजी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली महिला आरक्षियों को प्रमाण पत्र और शील्ड देकर सम्मानित किया और ईमानदारी कार्यकुशलता के साथ ड्यूटी करने का मंत्र दिया। इटावा में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से 1,05,000 से ज्यादा महिलाएं जुड़ चुकी हैं। उपायुक्त विनय सिंह ने बताया कि जिले में 9,849 स्वयं सहायता समूह एक्टिव हैं। महिलाओं के स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए पंचनद ब्रांड की स्थापना की गई है। इसके तहत 18 सरस शॉप और 4 कैंटीन खोली गई है जिन्हें समूह की महिलाएं ही चला रही है। पंचनद ब्रांड के अचार, साबुन, फिनाइल, मसाले का उत्पादन हो रहा है। इटावा के विकास भवन में शिक्षा मित्र सम्मान समारोह और बड़े हुए मानदेय वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। सदर विधायक सरिता भदौरिया की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ के संबोधन का लाइव प्रसारण देखा गया। विधायक ने बताया कि शिक्षा मित्रों का मानदेय 1 अप्रैल 2026 से 10,000 से बढ़ाकर 18,000 कर दिया गया है। जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ल ने बताया कि 1,286 शिक्षा मित्रों के खाते में बढ़ा हुआ मानदेय भेज दिया गया है। कार्यक्रम में 10 शिक्षा मित्रों को प्रतीकात्मक चेक भी दिए गए। इटावा में यमुना की सफाई पर डीएफओ विकास नायक ने सख्त रुख खाया है। जिला गंगा समिति की बैठक में उन्होंने एसटीपी चालू न होने पर नाराजगी जताई और कहा कि 8-9 महीने से सिर्फ आश्वासन मिल रहे हैं, गंदा पानी सीधे यमुना में बह रहा है। उन्होंने आउटलेट का सैंपल जांचने और यमुना के किनारे सफाई के निर्देश दिए। वृक्षारोपण में इमली के ज्यादा पौधे लगाने और ट्री गार्ड से सुरक्षा करने को कहा। भरतना में सभी MRF सेंटर चालू कराने के आदेश भी दिए हैं। इटावा डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री के ऊर्जा बचत अपील को समर्थन दिया। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने सभी वकीलों से कहा कि कार की जगह बाइक, ई रिक्शा या साइकिल से कचहरी आए। दूर से आने वाले वकील कारपूल बनाकर चले। डीबी अध्यक्ष एडवोकेट राजेश कुमार त्रिपाठी ने कहा कि सभी वकील अब ऊर्जा बचत से देश की प्रगति में योगदान देंगे।
1: प्रधानमंत्री मोदी जी की अपील का समर्थन करते हुए समस्त वकील जितना अधिक से अधिक डीजल पेट्रोल बचाकर राष्ट्र हित में अपना योगदान दें। हम सब वकील अधिक से अधिक डीजल और पेट्रोल की बचत करेंगे। जो लोग कार से आते हैं वो लोग कारपूल बनाकर चले अथवा इलेक्ट्रिक वाहन का इस्तेमाल करें। जितना हो सके ऊर्जा को बचाने का प्रयास करें।
0: इटावा में राज्य मंत्री कैलाश सिंह राजपूत ने प्रेरणा सभागार में 102 अंशकालिक अनुदेशकों को सम्मानित किया और 10 को बढ़े हुए मानदेय के चेक दिए। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने अनुदेशकों का मानदेय 9,000 से बढ़ाकर 17,000 रुपए कर दिया है। इससे पहले शिक्षा मित्रों का मानदेय भी बढ़ाया गया था। राज्य मंत्री ने सीएम योगी को बधाई दी। लखनऊ के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी देखा गया। इटावा में नशे के खिलाफ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। ऑपरेशन दहन के तहत पुलिस ने 206 केसों में बरामद 5,774 किलो से ज्यादा मादक पदार्थ नष्ट कर दिए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि जिला स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी ने कानपुर देहात के इंसिनेटर प्लांट में वीडियोग्राफी के साथ पूरे मादक पदार्थ जलाए।
2: उत्तर प्रदेश शासन एवं पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार चलाए जा रहे ऑपरेशन दहन के अंतर्गत जनपद इटावा पुलिस द्वारा बड़ी एवं उल्लेखनीय कार्रवाई की गई है। जिला स्तरीय ड्रग डिस्पोजल कमेटी की देखरेख में जनपद इटावा के विभिन्न थानों पर NDPS एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत कुल 206 अभियोगों में बरामद लगभग 5,775 किलोग्राम मादक पदार्थों का नियमानुसार विनष्टीकरण कराया गया। विनष्ट किए गए मादक पदार्थों में अवैध गांजा, डोडा, स्मैक, चरस एवं अफीम तथा अन्य नशीले पदार्थ शामिल हैं।
0: इंसानों के साथ अब जानवर भी भीषण गर्मी से बेहाल हैं। इटावा सफारी पार्क में वन्य जीवों को राहत देने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। बब्बर शेरों के नाइट सेल में खस की चटाई और डेजर्ट कूलर लगे हैं। ब्रीडिंग सेंटर में शेरनी और सांपों के लिए एयर कंडीशनर चल रहे हैं। उप निदेशक विनय सिंह ने बताया कि क्रॉल और सफारी क्षेत्र में फॉगर सावर से तापमान कम किया जा रहा है।
3: सफारी पार्क में जो भी वन्य जीव हैं उनको गर्मी और लू से बचाने के लिए एक विशेष इंतजाम किए जाते हैं, जिनके अंतर्गत जो हमारे हाउस हैं उनमें खस की चटाई लगाना, इसके साथ कूलर को लगाते हैं। बाहर जो क्राल एरिया है इसमें फॉगर लगे हुए हैं, तो इनके चलाने से जो हवा में नमी है वो बनी रहती है और टेम्परेचर मेंटेन रहता है।
0: गर्मी को देखते हुए सफारी का समय भी बदला गया है। सुबह 6:30 बजे से पर्यटकों के लिए सफारी खुल रही है ताकि दोपहर की धूप से बचा जा सके।
4: इटावा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं हमीरपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है शिव कुमार सेठी का।
5: जनपद हमीरपुर में पिछले 3-4 दिनों में गर्मी ने 6 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 19 मई को 46.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। लू के थपेड़ों से जनजीवन प्रभावित हो रहा है, साथ ही उल्टी, दस्त, डायरिया के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तेज गर्मी के कारण सड़कों में सन्नाटा देखने को मिल रहा है। चिकित्सकों ने लोगों से अपील की है कि दोपहर के वक्त बाहर न निकलें, बाहर का खाना न खाएं, घर का बना ताजा भोजन ही करें। सत्तू, बेल का शरबत, आम का पना, नारियल पानी और फलों का जूस आदि का सेवन अधिक करें। मौसम विभाग के अनुसार आगे आने वाले दिनों में और अधिक गर्मी बढ़ने की संभावना है। जनपद हमीरपुर के सर्राफा एसोसिएशन के व्यापारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का समर्थन करते हुए कहा कि गोल्डन मोडर्नाइजेशन स्कीम को आकर्षक बनाया जाए, घरों में रखी पुरानी ज्वेलरी को रिसाइकिल कर नई

0: मनवाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाए। व्यापारियों ने सुझाव दिया है कि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए बुलियन व बार की खरीद को कुछ समय के लिए टाला जाए। व्यापारियों ने अपने इस सुझावों से संबंधित ज्ञापन भी जिलाधिकारी को सौंपा। स्मार्ट प्रीपेड मीटरों को फिर से पोस्टपेड करने के आदेश का जनपद हमीरपुर के लोगों ने स्वागत किया है। इस फैसले से उपभोक्ता खुश हैं क्योंकि अब आए दिन बिजली कटने की समस्या से उपभोक्ताओं को जूझना नहीं पड़ेगा। अधीक्षण अभियंता ज्ञानचंद यादव कहते हैं कि सभी प्रीपेड स्मार्ट मीटरों को पोस्टपेड करने का सरकार ने निर्णय लिया है। करीब एक सप्ताह में ही सभी मीटरों को पोस्टपेड में बदल दिया जाएगा। उपभोक्ताओं को उनके मोबाइल पर हर माह का बिल भेज दिया जाएगा। उन्होंने सभी उपभोक्ताओं से अपील की है कि जिनका भी मोबाइल नंबर पंजीकृत नहीं है वह मीटर अकाउंट में अपना नंबर जरूर पंजीकृत करा लें। जनपद हमीरपुर के संचालित 1500 आंगनबाड़ी केंद्रों में अब नौनिहालों गर्भवती व धात्री महिलाओं को पका हुआ ताजा व पौष्टिक आहार परोसने का सरकार ने निर्णय किया है, जिससे अब केंद्रों में सूखा पुष्टाहार वितरित नहीं किया जाएगा बल्कि नौनिहालों व प्रसूताओं को आटे बेसन का हलवा बर्फी तथा स्वादिष्ट खिचड़ी खिलाई जाएगी। इससे 6 माह से 3 माह के सामान्य बच्चों को शिशु अमृत व शिशु आहार के तहत आटा बेसन का मीठा हलवा और 3 माह से 6 वर्ष के बच्चों को बाल पुष्टकर के रूप में आटा बेसन की मीठी बर्फी और नमकीन दलिया व मूंग की दाल की खिचड़ी दी जाएगी। सरकार का यह निर्णय बच्चों और गर्भवती महिलाओं को सेहत में सुधार की ओर एक अच्छा कदम माना जा रहा है। इससे राशन की कालाबाजारी आदि में भी रोक लगेगी। जिला कार्यक्रम अधिकारी इंद्रपाल सिंह ने बताया कि सरकार द्वारा किए गए निर्णय के अनुसार सभी केंद्रों में बच्चों, गर्भवती धात्री महिलाओं तथा कुपोषित बच्चों को ताजा व पौष्टिक पोषाहार खिलाया जाएगा। अब सूखा दाल, दलिया, पंजीरी, रिफाइंड आदि का वितरण नहीं होगा। इस माह सभी ब्लॉकों में नेफेड द्वारा राशन सामग्री की आपूर्ति की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विगत दिनों बेसिक शिक्षा विभाग के लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि सप्ताह में एक दिन शिक्षक और बच्चे स्वच्छता अभियान चलाएं। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में बच्चे श्रमदान करते हुए दिखाई दें तो इसे नकारात्मक रूप से प्रस्तुत न किया जाए। इस संबंध में बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि गर्मियों के अवकाश के बाद स्कूल खुलने पर सप्ताह में एक दिन निर्धारित किया जाएगा। उस दिन सभी शिक्षक और बच्चे स्वच्छता अभियान चलाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे बच्चों में अनुशासन और स्वच्छता की भावना विकसित होगी। अभियान के तहत जो स्कूल स्वच्छ और सुंदर होंगे उन स्कूलों के शिक्षकों और बच्चों को सम्मानित किया जाएगा।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। 9:25 हुए हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजूषा। कार्यक्रम का पहला गीत मोहम्मद रफी के स्वर में हमने फिल्म दोस्ती से लिया है। इस गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

श्रोताओं, अभी आपने सुना मोहम्मद रफी के स्वर में फिल्म कन्यादान का ये गीत। हसरत जयपुरी की शब्द रचना को स्वरबद्ध किया था शंकर जयकिशन ने।

0: चुपचाप तुम्हारी पूजा, कोई फल दे के ना दे हमको हमारी पूजा।
1: श्रोताओं, अभी आपने सुना किशोर कुमार को फिल्म अजनबी में अनंत बख्शी की शब्द रचना को स्वरबद्ध किया था आरडी बर्मन ने। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत। मोहम्मद रफी के ही स्वर में हमने लिया है फिल्म अमर अकबर एंथनी से। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं।

खफा हो के चेहरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी मेरा प्यार है सर्द पानी मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ हाँ।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही हमारा ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। आइए अब सुनते हैं लोक संगीत के कार्यक्रम में संवेद स्वर में कुछ लोकगीत।
1: बोलो

श्रोता, लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे संवेद स्वर में कुछ लोकगीत। इन्हीं लोकगीतों के साथ हमारा ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। 10 बजे ही ये सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर सरिता। कार्यक्रम का पहला गीत श्रेया घोषाल और सोनू निगम के आवाज में हमने फिल्म 3 इडियट्स से लिया है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म धुरंधर द रिवेंज का ये गीत, जिसे आवाजें दी थी जैस्मिन सेंटलर्स और सतेंद्र सरताज ने। इस गीत को संगीत से सजाया था शाश्वत सचदेव ने।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म सांवरिया का एक गीत, जिसे गाया था श्रेया घोषाल और कुणाल गांजावाला ने। समीर के लिखे इस गीत को संगीत में ढाला था मोंटी ने।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम और मधुश्री को फिल्म जोधा अकबर में। जावेद अख्तर की शब्द रचना को स्वरबद्ध किया था एआर रहमान ने। आइए अब सुनते हैं फिल्म अनवर का ये गीत, जिसे गाया है रूप कुमार राठौर, मुर्तजा और कबीर ने। सईद कादरी की शब्द रचना को स्वरबद्ध किया है मिथुन ने।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म फना का ये गीत, जिसे गाया था शान और कैलाश खेर ने। प्रसून जोशी की शब्द रचना को स्वरबद्ध किया था जतिन ललित ने। और इस गीत के साथ ही हमारा ये कार्यक्रम सुर सरिता अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है।

अभी आप सुन रहे थे पंडित यशपाल का राग नट भैरव में ख्याल गायन। इसके साथ ही कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। इस समय सुबह के 11 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आज के कलाकार। ये कार्यक्रम केंद्रित है निर्देशक के राघवेंद्र राव पर। श्रोताओं नमस्कार, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज के कलाकार। ये कार्यक्रम केंद्रित है निर्देशक के राघवेंद्र राव पर। के राघवेंद्र राव का पूरा नाम कोवेलामुड़ी राघवेंद्र राव है। ये एक भारतीय फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक, कोरियोग्राफर और निर्माता हैं, जो मुख्य रूप से तेलुगु सिनेमा में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा इन्होंने कुछ हिंदी और कन्नड़ फिल्मों में भी काम किया है।

राघवेंद्र राव का जन्म 23 मई 1942 को दिग्गज निर्देशक के एस प्रकाश राव और कोटेश्वरम्मा के घर हुआ था। ये अभिनेता से फिल्म निर्माता बने प्रकाश कोविलामुड़ी के पिता भी हैं।

राघवेंद्र राव 4 दशकों से अधिक के अपने कैरियर में रोमांटिक ड्रामा, रोमांटिक कॉमेडी, फैंटेसी, मेलोड्रामा, एक्शन थ्रिलर और जीवनी पर आधारित ड्रामा सहित कई शैलियों में 100 से अधिक फिल्मों का निर्देशन किया है। राघवेंद्र राव को बोबिली ब्रह्मन्ना और पेली संददी जैसी फिल्मों के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का राज्य नंदी पुरस्कार मिला। उन्हें प्रेमा लेखलू जैसी ड्रामा फिल्म, जगदेका विरुदु अथिलोक सुंदरी जैसी फैंटेसी फिल्म और अल्लारी प्रयोदु जैसी रोमांटिक फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक तेलुगु का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला है।

निर्देशक के राघवेंद्र राव को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 10 राज्य नंदी पुरस्कार और 10 फिल्म फेयर अवार्ड साउथ सहित कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। राघवेंद्र राव 2015 से 2019 तक तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड में कार्यकारी सदस्य रहे। उन्हें रोमांटिक फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक तेलुगु का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला है। राघवेंद्र राव अपनी जीवनी परक फिल्मों जैसे अन्नमय्या के लिए जाने जाते हैं, जिसने 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते और 29वें IFI में मुख्य धारा श्रेणी में प्रदर्शित हुई। राघवेंद्र राव को इस फिल्म में अपने काम के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का नंदी पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला है। उनके अन्य भौगोलिक कार्यों जैसे श्री मुंजनाथ, श्री रामदासु, शिरडी साईं और ओम नमो वेंकटेशया को कई राजकीय सम्मान प्राप्त हुए हैं।

इसके साथ ही कार्यक्रम आज के कलाकार यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलो हर्ट्ज पर। इस समय 11:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। यह कार्यक्रम केंद्रित है प्रसूति फिस्टुला को समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस विषय पर। आज विषय है प्रसूति महिला को पर्याप्त आराम देखभाल एवं उचित चिकित्सा जरूरी। कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी सुधी श्रोताओं को सप्रेम नमस्कार। श्रोताओं, आज हम लेकर हाजिर हैं अपना कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। श्रोताओं, स्वस्थ गर्भावस्था और प्रसवोत्तर स्वास्थ्य लाभ के लिए संपूर्ण मातृ देखभाल आवश्यक है। प्रसव पूर्ण परीक्षण, शिशु की निगरानी और प्रसवोत्तर देखभाल महिलाओं को निडरता और संवेदनशीलता के साथ मातृत्व का सामना करने में सक्षम बनाती है। उचित स्वास्थ्य देखभाल सहायता से महिलाएं रजोनिवृत्ति की प्रक्रिया को बेहतर ढंग से पार कर सकती हैं। प्रसव के समय और उसके बाद मां और नवजात दोनों की विशेष देखभाल करने की बहुत जरूरत होती है। ये समय शारीरिक और भावनात्मक रूप से नाजुक होता है। प्रसव के 6 सप्ताह बाद तक का समय रिकवरी के लिए अहम माना जाता है। श्रोताओं, प्रसव के बाद प्रसूति महिला को शरीर को रिकवर होने के लिए समय की जरूरत होती है, आराम की जरूरत होती है और इस दौरान भारी काम भी ना करें। पौष्टिक भोजन करें और कब्ज से बचने के लिए फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ और खूब सारा पानी पिएं, जूस पिएं। प्रसव के बाद अवसाद से बचने के लिए परिवार और प्रियजनों का भावनात्मक सहयोग बहुत जरूरी होता है।

श्रोताओं, प्रसूति फिस्टूला को समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 23 मई को मनाया जाता है। ये एक वैश्विक जागरूकता दिवस है जो महिलाओं को प्रभावित करने वाली एक गंभीर प्रसवकालीन चोट को समाप्त करने के लिए समर्पित है। 23 मई को मनाया जाने वाला ये वैश्विक अभियान प्रसूति फिस्टूला के बारे में जागरूकता को बढ़ाता है, जो प्रसव के दौरान होने वाली एक विनाशकारी चोट है और वंचित क्षेत्रों की महिलाओं को प्रभावित करती है। इसका उद्देश्य रोकथाम, उपचार और सहायता को बढ़ावा देकर प्रसूति फिस्टूला को खत्म करना है, जिसमें स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच के महत्व पर जोर दिया गया है। ये दिन हाशिए पर रहने वाली महिलाओं पर पड़ने वाले असमान प्रभाव को उजागर करता है, जो इस रोकी जा सकने वाली स्थिति से शारीरिक और सामाजिक रूप से पीड़ित होती है। इसमें वैश्विक एकजुटता का आह्वान किया गया है और प्रभावित लोगों के स्वास्थ्य, गरिमा और आशा को बहाल करने के लिए कार्यवाही, धन और चिकित्सा देखभाल का आग्रह किया गया है। प्रसूति फिस्टूला का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रभावित महिलाओं के लिए आशा की किरण के रूप में कार्य करता है, जो जागरूकता और समर्थन के माध्यम से उनके जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही हैं। प्रसव से संबंधित फिस्टूला की समस्या से निपटने के लिए

इसे 2013 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा आधिकारिक रूप से मान्यता दी गई थी, जो इसके महत्व को रेखांकित करता है। फिस्टूला और उससे होने वाली पीड़ा को समाप्त करने के वैश्विक अभियान के प्रति यह एक प्रतिक्रिया है। विश्व भर में प्रसूति फिस्टूला के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। इसका उद्देश्य प्रभावित महिलाओं को सहायता, चिकित्सा देखभाल और आशा प्रदान करना है। श्रोताओं, प्रसूति के बाद महिला को पर्याप्त आराम, देखभाल और उचित चिकित्सा की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि इस दौरान महिला का शरीर शारीरिक और भावनात्मक रूप से बहुत कमजोर हो जाता है। उसे प्रसव के बाद के तनाव से उबरने और एक नए जीवन की जिम्मेदारी संभालने के लिए विशेष सहारे की जरूरत होती है। प्रसूति के बाद शरीर के अंगों और हार्मोनल संतुलन को सामान्य होने में समय लग जाता है। महिला को दिन में भी आराम करना चाहिए और रात में 7-8 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए। शुरुआती 4 से 6 हफ्तों तक भारी वजन उठाना या ज्यादा दौड़ भाग वाले काम करने से बचना बहुत जरूरी है ताकि टांके यदि लगे हों तो जल्दी ठीक हो सकें और गर्भाशय को अपने सामान्य आकार में आ जाए। मां के दूध की गुणवत्ता और ऊर्जा के लिए हरी सब्जियां, फल, दाल, दूध, मेवे और प्रोटीन से भरपूर आहार लेना बहुत जरूरी है। शरीर में पानी की कमी न होने दें और पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थों का सेवन करें। डॉक्टर की सलाह से प्रसवोत्तर सप्लीमेंट्स जैसे आयरन, कैल्शियम और विटामिन लेना न भूलें ताकि खून की कमी दूर हो सके। यदि सीजेरियन या सामान्य प्रसव के दौरान टांके लगे हों तो उन्हें सूखा और साफ रखें। संक्रमण से बचने के लिए डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाइयों और निर्देशों का पालन करें। स्तनपान कराने से पहले हाथों को साफ पानी से धोएं और निप्पल की उचित सफाई का ध्यान रखें। श्रोताओं, बच्चे और मां के नियमित टीकाकरण और स्वास्थ्य जांच में कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। कई महिलाओं को प्रसव के बाद डिप्रेशन का सामना करना पड़ सकता है। यदि अत्यधिक उदासी, घबराहट या बच्चे में रुचि न होने जैसे लक्षण दिखें तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें। महिला को किसी भी प्रकार के शारीरिक या मानसिक तनाव से दूर रखना बहुत जरूरी है। परिवार को बच्चे की देखभाल जैसे नहलाना, कपड़े बदलना में मां की मदद जरूर करनी चाहिए।

ये जब सुनते हैं ना मन गर्व से भर जाता है। मैं जब दुनिया के लोगों को बताता हूं कि हमारे यहां स्टार्टअप में महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका बढ़ रही है, बहुत बड़ी मात्रा में महिलाएं आगे आ रही है, मुद्रा योजना के तहत करोड़ों महिलाओं को फाइनेंशियल सपोर्ट मिला है, पीएम स्वनिधि जैसी योजनाओं ने भी लाखों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर दिया है। आज गांवों में, छोटे शहरों में पहले से ज्यादा महिलाएं अपने दम पर नए काम शुरू कर रही हैं। साथियों, नीतियां और निर्णयों के इस अभियान के बीच आपको एक और बात याद रखनी है, किसी भी व्यवस्था की असली ताकत उसके लोग होते हैं, जनता जनार्दन की शक्ति होती है, जनशक्ति होती है, और जनशक्ति ही तो राष्ट्र शक्ति बनती है। आप सभी जिस व्यवस्था का हिस्सा बनने जा रहे हैं उसका सीधा संबंध करोड़ों करोड़ों देशवासियों के जीवन से है, करोड़ों करोड़ों देशवासियों की आशा आकांक्षाओं से है।

0: सरकारी नौकरी लोगों के जीवन को आसान बनाने का माध्यम ही होती है। आप जिस भी विभाग में काम करेंगे वहां आपके व्यवहार, संवेदनशीलता और काम करने के तरीके का बहुत महत्व होगा। देश ने आप पर भरोसा किया है, अब ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप अपने काम से, अपने आचरण से, अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से उस भरोसे को और मजबूती देंगे। देशवासियों के हृदय में एक नया विश्वास भर जाएगा, आपको मिलते ही वो नई आशा के साथ आगे बढ़ेगा। इसलिए हर युवा कर्मयोगी अपने काम को जिम्मेदारी की तरह देखें, और मेरे लिए तो आप बहुत कुछ हैं। पहले जमाने में हम सुनते थे ना, सहस्त्र बाहु वाले फलाने, सहस्त्र बाहु वाले ढींकने, आज सरकार के बाहु आप ही हैं, सरकार का सामर्थ्य आप ही है। जो पहले से सरकार में है वो भी है, जो नए आ रहे हैं वो भी है। आज भारत के लोगों की आकांक्षाएं बहुत बढ़ रही हैं और मैं इसे विकास की पॉजिटिव साइन मानता हूं। हमें अपने देश के लोगों के एस्पिरेशंस को समझना भी है और उसके हिसाब से उतनी ही तेज गति से काम भी करना है। ऐसे में पब्लिक सर्विस में आने वाले युवाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। आपको लगातार सीखते रहना होगा, खुद को नई टेक्नोलॉजी, नई सिस्टम और नई जरूरतों के हिसाब से तैयार करना होगा। इसमें आपको आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म से बहुत मदद मिलेगी। कर्मयोगी प्रारंभ जैसे मॉड्यूल से आपको अपनी जिम्मेदारियां समझने में बहुत सहूलियत होगी। मेरा आपसे आग्रह है कि इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। साथियों, आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं, जन सेवा का माध्यम मानते हैं। और हमारे यहां तो कहा, जन सेवा ही प्रभु सेवा। मुझे पूरा विश्वास है आज नियुक्ति पत्र पाने वाले हमारे युवा साथी भारत के विकास यात्रा को नई गति देंगे। आपके काम, आपके फैसलों से विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि होगी। और आपको वो मंत्र कभी भूलना नहीं है, हमारा मंत्र है नागरिक देवो भव। नागरिक देवो भव, नागरिक का कल्याण ही हमारा कर्तव्य है। मैं एक बार फिर आज नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी युवाओं को आगे के जीवन के लिए, देश सेवा के इस अवसर को निभाने के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अभी आप माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश भर के 47 स्थानों पर आयोजित 19 रोजगार मेले के अंतर्गत 51,000 से अधिक युवाओं को रोजगार पत्र वितरित करने के अवसर पर आयोजित समारोह और माननीय प्रधानमंत्री का संबोधन सुन रहे थे।

मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दिन के 12 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक मंजरी। इसमें हम आपको सुनवा रहे हैं नौटंकी भक्त सुदामा।

0: सब कहे ये भूखो मरे सुदामा जो।
1: अरे बाबरी सुन, औरन को धन चाहिए, बाबरी बामन को तो एक भिक्षा चाहिए।

मजबूर है, गम भी उठाने को अब हो रहा है विकल, मन ने त्यागा भरम, हो रहा है विकल, मन ये त्यागा।

0: मुट्ठी चावर पड़ोसी से मैं मांग के लाई हूँ, उनकी भेंट करी हूँ और अपनी व्यथा सुनाई हूँ, वे हमारी जरूर सहायता करेंगे।
1: अच्छा अच्छा, जा रहे हूँ भगवान, मैं जा रहे हूँ।

0: महाराज आप कहाँ जाएंगे? द्वारकापुरी तो यही है।
1: यही है?
0: हाँ महाराज।
2: तो भैया श्याम सुंदर सो हमारी मुलाकात करवा
0: जरूर कराऊंगा महाराज, जरूर कराऊंगा।

0: जो आ गया महाराज। सुदामा जी, आपको श्याम सुंदर जी ने बुलाया है।
1: अच्छा भैया चलो।
2: कहा भाई कैसी कही द्विजवर ने।

0: जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्याम जय
1: श्याम। अभी आप सुन रहे थे नौटंकी भक्त सुदामा। इसके साथ ही कार्यक्रम लोकमंजरी यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय 12:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम नए तराने। सबसे पहले आइए सुनते हैं भूतनाथ फिल्म का गीत हरिहरन और सुखविंदर सिंह की आवाज में। जावेद अख्तर के बोल को संगीत दिया है विशाल शेखर ने।

0: दे जरा।
1: कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद अब आकाशवाणी आगरा से भी शुरू हो चुका है। हेलो मेरी पसंद कार्यक्रम में अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए रिकॉर्डिंग प्रत्येक शुक्रवार को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक दोपहर में की जाती है। आप भी अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए हमारे कार्यक्रम में फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 0562-350-1852 और दूसरा नंबर है 0562-297-0337 और कार्यक्रम को सुन सकते हैं प्रत्येक सोमवार रात 10 बजे। श्रोताओं, आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण अगले दिन यानी मंगलवार को दोपहर 3 बजे से किया जाता है। श्रोताओं, हमारी आवाज आप तक पहुंचती है मीडियम वेव के 1530 किलोहर्ट्ज और 196.1 मीटर पर। आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल के माध्यम से भी न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर सुन सकते हैं, क्योंकि कार्यक्रम अब सिर्फ रेडियो सेट पर ही नहीं आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है।
2: इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नए तराने। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं बिल्लू बार्बर फिल्म का गीत, सुखविंदर सिंह और सुनिधि चौहान की आवाज में। गीत के बोल लिखे हैं गुलजार ने, धुन बनाई है प्रीतम ने।

अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, बॉम्बे फिल्म से। इसे गाया है चित्रा ने, गीत लिखा है महबूब ने, धुन बनाई है ए आर रहमान ने।

अभी आपने सुना चांस पे डांस फिल्म का गीत सोहम और श्रेया घोषाल के स्वर में। इरफान सिद्दीकी के गीत को संगीत दिया था अदनान सामी ने। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं कॉलेज कैंपस फिल्म का गीत शान और मंजीरा की आवाज में। अनवर की शब्द रचना को संगीत दिया है अतुल ने।

इस गीत के साथ ही कार्यक्रम नए तराने यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। इस समय दिन का 1 बजने को है। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 19वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत दुनिया के विभिन्न देशों के साथ भी साझेदारी कर रहा है, जिसका उद्देश्य युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव देना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का भरोसेमंद आपूर्ति श्रृंखला साझेदार बन रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत के विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। श्री मोदी ने कहा कि हर भारतीय 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है।
1: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
0: केरलम में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने आज तिरुवनंतपुरम में रोजगार मेले का उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया रोजगार मेला केवल एक भर्ती अभियान से कहीं अधिक है और इसका उद्देश्य युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति में बदलना है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य में अगले 5 वर्ष में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग के उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अब शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना हर साल जुलाई महीने में जारी की जाएगी। बिहार सरकार ने 21 जून को नीट यूजी पुनः परीक्षा में शामिल होने वाले राज्य के सभी छात्रों के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले में आज राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी में भारतीय राजस्व सेवा के 76वें बेंच के अधिकारियों की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं को लगभग 4 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। वे मंगलवार को नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री रूबियो आज सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री कल विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति स्थिर है और ईंधन की कोई कमी नहीं है। इंडियन ऑयल ने एक बयान में कहा कि कुछ खुदरा दुकानों में मांग आपूर्ति असंतुलन और चुनिंदा क्षेत्रों में मांग बढ़ने के कारण अस्थिरता की खबर है। ऐसे मामले देशभर में 42,000 से अधिक खुदरा दुकानों के इंडियन ऑयल के नेटवर्क में से कुछ खुदरा दुकानों तक ही सीमित हैं। इंडियन ऑयल ने बताया कि 1 मई से 22 मई की अवधि के दौरान कंपनी ने ईंधन की बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। इस दौरान पेट्रोल की बिक्री में 14% जबकि डीजल की बिक्री में करीब 18% की वृद्धि हुई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई। पिछले 10 दिन

में तेल के मूल्यों में तीसरी बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 51 पैसे बढ़कर 92.49 रुपए प्रति लीटर हो गया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी की कीमत में 1 रुपए की वृद्धि की है। इस वृद्धि के बाद राजधानी में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 81.09 रुपए हो गई है। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से पराजित किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: अब आप शाइस्तवानों से इलाकाई खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज 19वीं रोजगार मेले में 51,000 से ज्यादा नए भर्ती होने वाले नौजवानों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तकर्रीनामे तकसीम किए। इस मौके पर प्रोग्राम से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि मुल्क भर के हजारों नौजवानों के लिए आज का दिन बहुत अहम है।
1: आज देश भर के हजारों युवाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। आज 51,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र मिला है। आज आप सभी देश की विकास यात्रा में अहम भागीदार बन रहे हैं, जिम्मेवार भागीदार बन रहे हैं। रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, हेल्थ, एजुकेशन और दूसरे कई क्षेत्रों में आप सभी नई जिम्मेदारियां संभालने जा रहे हैं। आने वाले वर्षों में विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने में आप सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं।
0: समाजी इंसाफ के मरकजी वजीर मुमलकत बीएल वर्मन लखनऊ में तकरीबन 330 अहलकारों को तकर्रीनामे तकसीम किए। ये रोजगार मेला लखनऊ समेत मुल्क भर में 47 मुकामात पर मुनक्किद किया गया। मरकजी हुकूमत अब तक 12 लाख से ज्यादा नौजवानों को शफाफ तरीके से नौकरियां दे चुकी हैं। वहीं वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पोस्ट में इन तमाम नौतैनात नौजवानों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दी। उन्होंने अवामी फलाही इकदाम के लिए वज़ीर-ए-आज़म का भी तहदिल से शुक्रिया अदा किया। मर्दमशुमारी 2027 के पहले मरहले में कल रियासत में घरों की गिनती और फहरिस्त साजी शुरू हुई। इस सिलसिले में शुमार कुंदगान और निगरानों ने रियासत के 3,89,312 घरों की फहरिस्तबंदी के ब्लॉक्स में सर्वे का काम शुरू किया। इस दौरान लखनऊ में वजीर आला की रिहायशगाह गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर और आगरा में ताजमहल को भी शुमार किया गया। इस मरतबा न सिर्फ घरों की गिनती बल्कि रियासत की तारीखी और सकाफती शिनाख्त भी मर्दमशुमारी का हिस्सा बन रही है। मुहिम के पहले ही दिन 1,35,00,000 से ज्यादा घरों पर मर्दमशुमारी के घरों के नंबर लगाए गए हैं। बुजुर्ग शहरियों के लिए जीवन मोबाइल एप्लीकेशन कल मुल्क भर में शुरू की गई। इसका मकसद बुजुर्ग शहरियों के लिए सपोर्ट सिस्टम को मुस्तहकम करना है। जीवन ऐप सरकारी फलाही स्कीमों, हंगामी इमदाद और बुजुर्ग शहरियों की रिहाइश के बारे में मालूमात फराहम करेगी। वजारत जल शक्ति के पीने के पानी और सफाई सुथराई के महकमे की तरफ से जारी करदा स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 की रिपोर्ट में वाराणसी को सेंट्रल जोन का बेहतरीन जिला करार दिया गया। रियासतों में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर। वाराणसी के चीफ डेवलपमेंट अफसर प्रखर कुमार सिंह ने कहा कि ये सर्वे स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत मुल्क के देहातों में सफाई की असल हालत का जायजा लेने के लिए किया गया था। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई ने दर्जे 12 के बोर्ड इम्तिहान के जवाबी शीटों की स्कैनशुदा कॉपियां हासिल करने की आखिरी तारीख को एक दिन बढ़ाकर 24 मई तक कर दिया है। सीबीएसई ने यह फैसला अपनी वेबसाइट पर दरखास्तों में इजाफे और तकनीकी खराबियों के बाद किया। सुप्रीम कोर्ट यकम जुलाई से नवी जमात के तलबा के लिए 3 जबानों को लाजमी करार देने के सीबीएसई के फैसले को चैलेंज करने वाली एक अर्जी पर अगले हफ्ते समाअत करेगी। सीनियर वकील मुकुल रोहतगी ने चीफ जस्टिस सूर्यकांत की सरबराही वाली और जस्टिस जॉय मालिया बागची और विपुल एम पंचोली पर मुश्तमिल बेंच के सामने मामला उठाया। उन्होंने कहा कि मुफादयामा की अर्जी तलबा, असातजा और वालदैन ने दायर की है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज 91 पैसे फी लीटर तक का इजाफा किया गया। ईंधन की कीमतों में ये तीसरी नजरेसानी है, जिसमें 15 मई को 3 रुपये फी लीटर, 19 मई को 90 पैसे का इजाफा हुआ। ये इजाफा ईरान के तनाजे और अबनाए हरमूज में रुकावटों के बाद आलमी खाम तेल की कीमतों में इजाफे के दरमियान हुआ है। बाराबंकी के फतेहपुर थाना इलाके में वाकई झांसा गांव में देर रात सड़क हादसे में एक ही खानदान के 4 अफराद की मौत हो गई। हादसा उस वक्त पेश आया जब तेज रफ्तार डंपर ने सड़क किनारे सोए हुए खानदान को कुचल दिया। हादसे में जख्मी होने वाले एक खातून को तश्वीशनाक

0: हालत में लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रिफर किया गया। ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने डंपर को कब्जे में लेकर ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। आज आईपीएल क्रिकेट मुकाबले में लखनऊ सुपर ज्वाइंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ के इकाना स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। शदीद गर्मी और हीट वेव के हालात रियासत को अपनी लपेट में ले रहे। महकमा मौसमियात के मुताबिक बांदा कल लगातार छठे दिन रियासत का गर्म तरीन जिला रहा। महकमा मौसमियात ने अगले 3 दिनों तक रियासत के मशरकी और मगरबी इलाकों में दिन के वक्त हीट वेव की वार्निंग जारी की है। लखनऊ महकमे मौसमियात के सीनियर साइंसदान अतुल कुमार सिंह ने कहा कि इस दौरान कई इलाकों में तेज धूल के तूफान की भी तवक्को है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
1: मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय दिन के 1:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम पनघट।

राम राम बहनों, स्वागत है भाई एक बार फिर आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम पनघट में। और आज मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी रेडियो साथी उपासना पांडे। इसी आशा के साथ कि आप सभी स्वस्थ होंगी, सुरक्षित होंगी और अपना अच्छे से ध्यान भी रख रही होंगी, जो कि बहुत जरूरी है, क्योंकि भाई इस भीषण गर्मी में सही देखभाल ही बचाव है। और फिर आपको तो पूरे घर का, खेत हार का भी ध्यान रखना होता है, तो भाई अपने प्रति भी थोड़ी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, क्योंकि गर्मी तो भाई सबको लगती है, फिर वो मनुष्य हो या पशु पक्षी। अच्छा, हम इंसान अपना तो बचाव कर लेते हैं, देखभाल कर लेते हैं, पर प्रकृति में विद्यमान वो बेचारे पशु पक्षियों का क्या, जो कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ साथ हम पर निर्भर हैं। और भाई फिर हमारी तो ये संस्कृति रही है कि हमने हमेशा स्वयं से पहले निवाला अपने आसपास रहने वाले पशु पक्षियों के लिए निकाला है। और ये हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि सबका ना सही पर अपने आसपास रहने वाले पशु पक्षियों का भी ध्यान रखें, कुछ बातों का ध्यान रखें हर मौसम के हिसाब से, जो कि हम कर ही सकते हैं। जैसे कि अभी गर्मियों की बात कर लें तो हम सभी देख रहे हैं कि गर्मी अपने अब तक के चरम पर है, जिससे बचाव करते हुए हम खुद को तो बचा रहे हैं, पर जरा सोचिए आसपास जानवर पक्षी गर्मी से व्याकुल हैं। भीषण गर्मी में सबसे जरूरी तत्व है पानी, और वो भी ठंडा मिल जाए तो भाई क्या बात है, जिसकी तलाश में हमारे जानवर पक्षी इधर उधर भटकते हैं। तो क्या हम इतना भी नहीं कर सकते कि एक बड़े से बर्तन में, जो कि घर में होते ही हैं और वेस्ट पड़े होते हैं, उनमें पानी भर के अपने अपने घरों के बाहर गेट के साइड में रख दें, सुबह शाम अच्छे से उसे साफ करके खाली करके उससे फिर से पानी से भर दें, जिससे कि पानी की तलाश में घूम रहे जानवरों को ठंडा पानी मिल जाए और उनकी प्यास भी बुझ जाए। अच्छा, पक्षियों के लिए आजकल घोंसले बने हुए मिलते हैं, वो लेकर के आप अपने घर के आंगन में या गेट पर ही टांग दें और उसी में उनके लिए दाना और थोड़ा सा पानी रख दें। और ये काम हमें करने हैं, क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों पर जितना हक हमारा है उतना ही हक जानवरों का है, और उनका भरपूर उपयोग हम इंसानों ने इतना कर दिया है कि पशु पक्षियों के आवास को उजाड़ कर रख दिया है, और फिर उन्होंने हमारे आवास की तरफ रुख किया तो हमें तकलीफ हो रही है। अरे, सुबह सुबह शाम को अपनी चहचहाट से आनंदित करने वाली वो चिड़िया का छोटा सा घोंसला हमारे बड़े से घर पर भारी पड़ जाता है, क्या हम अपने घर में उस घोंसले को नहीं रख सकते हैं? तेज धूप, सूखते जल स्रोत और पेड़ों की कमी से उनकी बढ़ती मुश्किलों को

थोड़ा कम नहीं कर सकते हैं, उनकी थोड़ी सी देखभाल नहीं कर सकते हैं, जिसके लिए ज्यादा कुछ नहीं बस छोटे छोटे काम करने की जरूरत होती है। पहला तो वही कि आप किसी भी छोटे से बर्तन में, जो कि मिट्टी का हो तो और ही अच्छा है, उसमें पानी भर के रखें, क्योंकि उससे पानी ठंडा बना रहेगा मिट्टी का बर्तन होने की वजह से, और उसे भर करके आप अपने घर की खिड़की पर या आंगन में या छत पर छांव हो तो वहां भी रख सकते हैं। इसके अलावा आप पक्षियों के लिए चावल, गेहूं के दाने डाल दें, या एक थाली ले लें या एक कटोरी ले लें, उसमें आप भर करके रख दें, लेकिन ध्यान रखें कि उन्हें बासी या मसालादार खाना ना दें। इसके अलावा पेड़ भी ज्यादा से ज्यादा लगाएं, जो हमें तो जीवन देते ही हैं पर साथ ही साथ पक्षियों को भी घर देते हैं, जो कि कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ में हम लोगों ने उजाड़ दिए हैं। साथ ही आसपास नजर भी रखें कि गर्मी के कारण कोई भी पक्षी या पशु परेशान तो नहीं है, अगर है तो उसे कोशिश करें कि ठंडी जगह पर बिठा दें, और जरूरी हो तो पशु चिकित्सक या पक्षी सहायता समूह की मदद लेकर के उसका उपचार करा दें तो अच्छा होगा। बहनों, पर्यावरण में विद्यमान हर तत्व का विशेष महत्व है, जो श्रृंखला को बनाए रखने में, प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं, और इनमें से एक भी ना हो, यानी कि एक की भी कमी प्रकृति का संतुलन को बिगाड़ कर रख देती है, प्रकृति का संतुलन प्रभावित हो जाता है। इसीलिए अपने साथ साथ थोड़ा सा स्वार्थ से परे जाकर के अपने आसपास रहने वाले जीव जंतुओं की, पशु पक्षियों की भी देखभाल करें, उनका भी ख्याल रखें, कुछ नहीं जाएगा आपका, इसके बदले में आपको वो ढेर सारी अपने मन में ही दुआएं देंगे, ईश्वर आपके कर्मों को देखेंगे और वो सब आपके अच्छे कार्यों में सम्मिलित होंगे, यानी कि हर तरफ से भला आपका ही है, इसमें कोई बड़े तामझाम करने की आवश्यकता नहीं है, ना कोई बहुत ज्यादा खर्चा करने की आवश्यकता है कि अगर आप सोचे भाई हमारा तो बहुत खर्चा हो जाएगा, हम कैसे कर दें, हम तो अपने लिए नहीं कर पा रहे हैं, तो इन सब बातों का कोई महत्व नहीं है। बहनों, कुछ ना करने के हमारे पास 100 बहाने होते हैं, लेकिन अगर हमें करना है ना तो सिर्फ एक आस, एक उम्मीद बहुत होती है। आप खुद देखिए कि आपके आसपास रहने वाले जानवर कितनी उम्मीद भरी नजरों से आपकी तरफ देखते हैं और आप उन्हें दुत्कार करके वहां से हटा देते हैं, और कहीं ना कहीं हमारा जो व्यवहार है हमारे आसपास रहने वाले जीव जंतुओं के प्रति, पशु पक्षियों के प्रति, वो भी उनको हिंसक बनाने का काम करते हैं। जैसे कि कुत्ते, हम सब गर्मी से व्याकुल हैं, पशु भी व्याकुल हैं, और इन दिनों में उनका चिड़चिड़ापन जाना, उनका खिसियाना बनता है, क्योंकि भाई हम तो अपने घरों में एसी कूलरों में आराम से रह ले रहे हैं, पंखों में रह ले रहे हैं, लेकिन उनके पास तो बैठने के लिए छांव भी मौजूद नहीं है, और ये सब उनका किया धराया नहीं है, वो हमारा किया धराया है, यानी कि हमारे कर्मों की सजा बेचारे उन जानवरों को झेलनी पड़ रही है। हम आए दिन रास्ते में देखते हैं कितनी चिलचिलाती धूप में हमारी गाय माता, जिसे हम माँ के रूप में पूजते हैं, वो बिचारी उस चिलचिलाती धूप में, डावर का रोड जो कि हम सब जानते हैं कितना गर्म हो जाता है धूप की वजह से, वो वहां बिचारी बैठी हुई है, और हम लोग उसे उस जगह बैठा हुआ भी मतलब अच्छा नहीं मान रहे हैं, वो भी हमारे ऊपर बड़ा भारी पड़ता है कि अरे यहाँ ये क्यों बैठी है, या हमारे घर पर कोई जानवर आके बैठ जाता है। अक्सर करके गांव में तो चबूतरों को बनाने का एक जो माध्यम था, एक जो उद्देश्य था, वो ये भी था कि यहाँ पर बाहर से आया व्यक्ति अगर कोई निकल रहा है, उसको थोड़ा सा अगर आराम करना है तो वो कर सकता है, जानवर है वो बैठ सकते हैं। जो सोच हमारी पूर्वज हमेशा से लेते चले आ रहे थे, पूजते चले आ रहे थे पशु पक्षियों को भी अलग अलग रूपों में, वो हम कहीं ना कहीं खत्म करते जा रहे हैं, और ये हमारे लिए तो अनुचित है ही है, साथ ही साथ हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए भी अनुचित है, क्योंकि ये भारतीय संस्कृति रही है, परंपरा रही है, और हम परंपरा से विमुख जाकर के भारतीयता का नारा लगाएं वो भी कहीं से उचित नहीं है, क्योंकि आपको भारतीयता का नारा लगाने की भी जो जल्दी रहती है वो तभी होनी चाहिए जब आप भारतीयता के तत्व को समझें, उसे अपने अंदर उतारें, और हमेशा जो सबके लिए, हमेशा देखा भी गया है कि भारत ने हमेशा हमेशा हमेशा सबकी मदद के लिए अपने बाहों को फैलाया है, हमेशा सबका स्वागत किया है, लेकिन हम कहीं ना कहीं अपने इन विचारों से, अपने इन मूल्यों से विमुख हो रहे हैं, जो हमारे लिए, हमारी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए ही उचित नहीं है। भारत को भारत बनाने वाले ये तत्व हमें अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों में भी

डालने होंगे, तभी वास्तव में भारत विश्व गुरु बनकर फिर से उभरेगा, भारत भारत बनेगा। तो बहनों, बस छोटी छोटी इन बातों का ध्यान रखना है। आपसे हम जोर दे करके बार बार इन बातों को कहते हैं, क्योंकि नारी जो नारायणी भी है और ममता से परिपूर्ण है, वो हमारी बातों को बहुत बेहतर तरीके से समझती हैं और करती हैं, जो कि बहुत खुशी की बात है। इसीलिए हम हमेशा आपसे अलग अलग विषयों को लेकर के बातचीत करते हैं, आपको हमेशा अपने रेडियो के माध्यम से तमाम जानकारियां पहुंचाते हैं कि जिससे आप सुने, समझें और अपने आसपास भी लोगों को जागरूक करें कि भाई देखिए, रहने के लिए पृथ्वी सबकी है, वायु सबकी है, पानी सबका है, तो इनका इस्तेमाल सिर्फ हम अकेले मानव करने वाले कोई नहीं होते। तो बहनों, इसीलिए कोशिश करें और आज से ही कोशिश नहीं, ये काम करें कि अपने आसपास रहने वाले पशु पक्षियों का थोड़ा ध्यान रखें और इन थोड़े थोड़े कामों को करें और अपना भी जीवन अच्छे से जिएं और उनको भी जीने में थोड़ी सी मदद करें। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में और सुनते हैं ये लोकगीत, स्मरण करते हैं ईश्वर का, क्योंकि उनके बिना कुछ भी नहीं है।

0: बहनों, वक्त हो गया है हमारी आज की खास वार्ता का। विषय है महिला जागरूकता और बदलता भारत। जैसा कि हमने हमारी चर्चा में भी कहा कि महिलाओं से कोई बात कहनी है या वास्तव में अगर समाज में बदलाव लाना है तो किसी भी बात को सबसे पहले महिलाओं के दिमाग में डाल दो कि ये चीज होनी है, तो वो चीज बिल्कुल ही बिल्कुल संभव हो जाती है होने के लिए। और बढ़ रही है महिला जागरूकता, महिलाओं में बहुत जागरूकता आ भी रही है हर विषय को लेकर के, चाहे वो सामाजिक विषय हो, राजनीतिक विषय हो या आर्थिक विषय हो, जिसमें महिलाएं योगदान भी अपना दे रही हैं देश की तरक्की में। हालांकि महिलाओं ने देश को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा ही अपना योगदान दिया है, हमेशा से, क्योंकि भाई आधी आबादी का हक बनता है, आधी आबादी हैं आप, और पूरा पूरा जो देश का हर तरीके का जो विकास है उसकी बराबर की हिस्सेदारी आपकी बनती है, यानी हम महिलाओं की बनती है, तो ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात भी है। आइए इसी परिप्रेक्ष्य में आके सुनते हैं हमारी ये खास वार्ता, जिसका विषय भी है महिला जागरूकता और बदलता भारत। वार्ताकार हैं प्रियंका गौतम।
1: कहते हैं जहां नारियों का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं, फिर भी भारत में महिलाओं की स्थिति एक समान न रहकर बड़े बदलावों से गुजरी है, जिसका विश्लेषण वर्तमान भारतीय समाज को समुचित दिशा देने के लिए आवश्यक है। प्राचीन काल में महिलाओं को पूर्ण स्वतंत्रता थी, पुरुष के समान विद्यार्जन करती थी, महिलाएं युद्ध भूमि में भी जाती थी, महिलाओं को स्वेच्छा से विवाह करने का पूर्ण अधिकार था। मध्यकाल में महिलाओं की स्थिति अत्यधिक शोचनीय हो गई क्योंकि आक्रमणकारियों ने भारतीय समाज का ढांचा चरमरा दिया। शासकों ने स्त्री को भोग विलास और वासना की वस्तु बना लिया। पर्दा प्रथा, बाल विवाह का चलन आरंभ हुआ। नारियां घर में बंद कर दी गईं। उनके लिए शिक्षा के दरवाजे बंद हो गए। सती प्रथा का भी प्रचलन हुआ। अतः नारी की स्वतंत्रता खत्म हो गई। आधुनिक युग में अंग्रेजों के शासन काल में नारी स्वतंत्रता की चेतना फिर जागी। 19वीं शताब्दी में

भारत के राष्ट्रीय आंदोलनों के साथ सामाजिक आंदोलनों का भी सूत्रपात हुआ। राजा राममोहन राय, महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने समाज सुधार की दिशा में काफी कार्य किया। सती प्रथा, बाल विवाह पर रोक लगाई। आगे चलकर महात्मा गांधी जी, डॉक्टर अम्बेडकर जी ने स्त्री सुधार की दिशा में बहुत काम किया। स्वतंत्र भारत में भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने स्त्री को पुरुष के समान अधिकार प्रदान किए, बाल विवाह, पर्दा प्रथा को सदैव के लिए समाप्त कर दिया। आज भारतीय संविधान में महिलाओं को पुरुष के समान अधिकार प्राप्त हैं, जिसके कारण आज शायद ही कोई ऐसा पद रिक्त होगा जिसके लिए महिलाओं ने अपने आप को योग्य साबित न किया हो। आज महिलाएं राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। भारतीय संविधान के अस्तित्व में आने के बाद शिक्षा में समान अवसर मिलने से महिलाओं में जागरूकता आई और शिक्षा से महिलाओं में आत्मविश्वास व स्वावलंबन की भावना को बल मिला। वर्तमान में महिलाओं को भरपूर आत्मविश्वास एवं योग्यता अर्जित करनी होगी, तभी वह सशक्त व समर्थ व्यक्तित्व की स्वामिनी हो सकेंगी। अन्यथा उनकी प्राकृतिक कोमलता स्वरूप संरचना तथा अज्ञानता उनको समाज के शोषण का शिकार बनने पर विवश कर देंगी। आज अनेक प्रकार के शैक्षिक, सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों व समाज सुधारकों के सामूहिक प्रयासों तथा प्रगतिशील विचारधारा ने महिला को तमाम बंधनों से आजादी दे दी है और इसके कारण आज महिलाएं प्रत्येक क्षेत्र में अपना योगदान दे रही हैं। यह महिलाओं में जागरूकता का ही संकेत है। परंतु आजादी के बाद स्थितियों में बहुत अधिक बदलाव नहीं हुआ है। महिलाओं में जागरूकता का आंकड़ा आज भी कम है, क्योंकि कन्या भ्रूण हत्या आज भी जारी है, दहेज के लिए आज भी महिलाओं को प्रताड़ना दी जाती है, ससुराल में घरेलू हिंसा, शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न आज भी महिलाएं सहन कर रही हैं। स्वतंत्र भारत के संविधान ने महिलाओं को जो अधिकार दिए हैं, उनसे महिलाओं को जागरूक कराना अत्यंत आवश्यक है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण विधेयक, दहेज प्रतिरोध अधिनियम 1961, पैतृक संपत्ति में समानता का अधिकार, गर्भपात कानून 1971, भारतीय कानून के द्वारा महिलाओं को पुरुष के समान वेतन दिए जाने का प्रावधान, मातृत्व लाभ कानून 1961, विशेष विवाह अधिनियम जो 1954 को लागू हुआ, इन सब अधिनियमों की जानकारी महिलाओं को होना आवश्यक है कि यह अधिनियम है क्या और ये किस तरह उनका संरक्षण कर सकते हैं। आज महिलाओं में सामाजिक चेतना की दृष्टि से टेलीविजन निसंदेह उपयोगी सिद्ध हुआ है। विविध कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं में जागरूकता पैदा हुई है। कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह, दहेज प्रथा व सांप्रदायिकता के विरुद्ध जनमत तैयार किया है। इसके अतिरिक्त टेलीविजन बाल कल्याण और महिला जागरण में भी उपयोगी सिद्ध हुआ है। महिला जागरूकता से भारत की तस्वीर बदलती नजर आ रही है। 14 वर्ष की आयु में एमएससी कर चुकी लखनऊ की सुषमा देश विदेश में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुकी हैं। डॉक्टर वंदना अपने हुनर और मेहनत के बल पर प्रतिष्ठित किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय में इतिहास रच चुकी हैं। पर मैं तो यह कहूंगी कि केवल जागरूक होना व आर्थिक रूप से निर्भरता से नारी सशक्तिकरण संभव नहीं है। महिला सशक्त तभी हो सकती है जब वह सर्वांगीण रूप से आत्मनिर्भर हो। आर्थिक आत्मनिर्भरता के साथ साथ शारीरिक आत्मनिर्भरता, मानसिक आत्मनिर्भरता, शैक्षिक आत्मनिर्भरता, अतः संपूर्ण रूप से सर्वांगीण आत्मनिर्भरता की आवश्यकता है। बाल्यकाल से ही महिलाओं के मस्तिष्क में डाला जाता है कि वह कमजोर है, कोमल हैं, कठिन कार्य बालिकाओं के वश में नहीं होता। इन बातों को बार बार लड़कियों के दिमाग में डाले जाने से लड़कियां अपने आप को कमजोर समझने लगती हैं और फिर सशक्तिकरण से कोसों दूर चली जाती हैं। सशक्तिकरण शक्ति से संभव है। शक्ति आर्थिक शक्ति, मानसिक शक्ति, शारीरिक शक्ति, इच्छा शक्ति इत्यादि सारी शक्तियों पर विजय पाना से कोई भी सशक्त हो सकता है। सशक्त नारी के कुछ उदाहरण के रूप में हम किरण बेदी को ले सकते हैं, जो केवल आर्थिक आत्मनिर्भर ही नहीं है बल्कि समग्र रूप से आत्मनिर्भर हैं। दुर्गा माँ की तरह जब महिलाएं पापियों को दंड देने की शक्ति अर्जित करेंगी तो स्वतः ही महिलाएं सशक्त हो जाएंगी। आज असंख्य महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होते हुए भी विविध रूप से अशक्त हैं, परिणामतः पीड़िता हो जाती हैं। यहीं अगर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने के साथ साथ शारीरिक रूप से सशक्त हों तो निश्चित रूप से पापियों का पाप करने का अवसर ही नहीं मिलेगा। रानी लक्ष्मीबाई का अगर उदाहरण लें, उन्हें बाल्यावस्था से राजनीति, रणनीति एवं शास्त्र विद्या सिखाई गई थी। परिणामतः वह किस तरह से सशक्त नारी के रूप में उभरी, यह हम सभी से छिपा

0: नहीं है। दूसरी ओर सीता माँ का उदाहरण लें तो सीता माँ आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होते हुए भी रावण द्वारा हरण कर ली गई थीं, क्योंकि वह सर्वांगीण रूप से सशक्त नहीं थीं, वह श्री राम और लक्ष्मण जी पर निर्भर थीं। श्रीमती इंदिरा गांधी जी कितनी शक्तिशाली थीं, मात्र आर्थिक नहीं मानसिक रूप से सशक्त होने के कारण। विश्व करुणा, दया और सेवा भाव का संदेश देने वाली नोबेल पुरस्कार सम्मानित संत मदर टेरेसा एक महान विभूति हैं। कुछ अन्य सशक्त महिलाओं के उदाहरण लें तो भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान, प्रथम विदुषी गार्गी, प्रथम मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, प्रथम राज्यपाल सरोजनी नायडू, प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला, सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश फातिमा बीबी, भारत की प्रथम राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली बछेंद्री पाल, सुनीता विलियम्स आदि बहुत सारी महिलाएं विख्यात हैं, क्योंकि वे सर्वांगीण सशक्तिकारक की द्योतक हैं। ये सभी महिलाएं अपनी क्षमता के कारण देश को गौरवान्वित करती रही हैं। कोई भी क्षेत्र हो, महिलाएं सर्वत्र अपना परचम लहरा रही हैं। सर्वत्र यह प्रमाणित किया है कि वे मिसाल हैं, सशक्त हैं, कर्मठ हैं, परंतु यह ताकत उन्हें केवल आर्थिक निर्भरता की वजह से नहीं मिली है, वरन सर्वांगीण सशक्तिकरण के माध्यम से वे इस शिखर पर पहुंच पाई हैं। मुझे तो लगता है कि अगर महिलाएं केवल महिला दिवस मना लेने भर से खुश हो जाती हैं, तो यह बेमानी होगा। महिलाओं को हर तरह से सशक्त बनने की जरूरत है।
1: बहनों, उम्मीद है एक एक बात को आपने बड़े अच्छे से सुना होगा और अपनाया भी होगा। आपने सुनी हमारी ये वार्ता, विषय था महिला जागरूकता और बदलता भारत। वार्ताकार थी प्रियंका गौता। और अब वक्त है कार्यक्रम में एक और लोकगीत का, तो आइए सुनते हैं, मनोरंजन करते हैं इस प्यारे से भजन के साथ।

बहनों, इस भयंकर गर्मी में सिर दर्द की समस्या भी बहुत होती है गर्मी की वजह से। तो इसके लिए बहुत आसान सा उपाय है, दादी के बटुआ से हम लेकर आए हैं। करना सिर्फ इतना है कि जब भी गर्मी की वजह से आपके सिर में दर्द है, तो आप थोड़ा सा देसी घी ले लें, थोड़ा सा, और उससे अपनी हथेली जो होती है, अपनी हथेली के माध्यम से, या तो आप स्वयं कर लें या घर में आकर कोई मौजूद हो तो आप उनसे भी करवा सकते हैं, और अपने जो तरुआ होता है हमारा सर में, उसकी मालिश करें अच्छे से। इससे गर्मी भी बाहर निकलती है और सिर का दर्द बिना दवाइयों के अच्छे से ठीक हो जाता है। तो बहनों, आजमाएं इस नुस्खे को, और इसी के साथ मुझे दें विदा। आगे मैं फिर बोलूंगी, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पनघट। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। इस समय 1:45 हो चुके हैं। पेश है सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं जोनाकी भट्टाचार्य के गाए गीत और भजन। तो सबसे पहले आइए सुनते हैं ये भजन। कलाकार हैं जोनाकी भट्टाचार्य।

0: जोनाकी भट्टाचार्य के गाए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, दिन के 2 बजने को है। अब आप समाचार सुनेंगे।
1: दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम नरेश मागो विद द मिडडे न्यूज। The headlines. Prime Minister Narendra Modi distributes over 51,000 appointment letters to new recruits in various government departments. Says India is partnering with various countries across the world to provide opportunities, employment and global exposure to youth. Bihar government to recruit 1 lakh teachers in the state over next 5 years. CBSE extends last date for obtaining scanned photocopies of answer books for class 12 board examinations until tomorrow. U.S. Secretary of State Marco Rubio to call on Prime Minister Modi in New Delhi today. WHO raises public health risk of Bundibugyo strain of Ebola in Congo from high to very high. And in IPL cricket, Lucknow Super Giants to take on Punjab Kings in Lucknow this evening. Prime Minister Narendra Modi today distributed more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government departments and organizations at the 19th Rozgar Mela through video conferencing. The Rozgar Mela was held at 47 locations across the country. The newly recruited candidates selected from across the country will be joining various ministries and departments, including the Ministry of Railways, Home Affairs, Health and Family Welfare, and Department of Higher Education, among others. Addressing the Rozgar Mela, the Prime Minister emphasized that government jobs serve as a vital means to improve and ease the lives of the citizens. Mr. Modi noted that the nation has placed its trust in its Karma Yogis, and it's now their responsibility to honor and strengthen that trust through their dedication, conduct and everyday actions.
2: Karma Yogi Prarambh, jaise module se aapko apni zimmedariyan samajhne mein bahut sahuliyat hogi. Mera aapse aagrah hai, iska jyada se jyada labh uthaye. Aaj Bharat ka yuva duniya ke har kshetra mein apni pehchan bana raha hai. Yahi spirit, yahi urja पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं।
1: मिस्टर मोदी हाइलाइटेड दैट द वर्ल्ड इज ईगर टू बी अ पार्ट ऑफ इंडियाज ग्रोथ जर्नी। द प्राइम मिनिस्टर सेड दैट द कंट्री इज आल्सो पार्टनरिंग विद वेरियस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एम्ड एट प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट एंड ग्लोबल एक्सपोजर टू द यूथ ऑफ द नेशन।
2: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
1: मिस्टर मोदी एडेड दैट एवरी इंडियन इज वर्किंग विद अ कमिटमेंट टू मेकिंग इंडिया विकसित भारत बाय 2047 एंड टू अचीव दिस द कंट्री इज इन्वेस्टिंग इन सेवरल सेक्टर्स। द प्राइम मिनिस्टर हाइलाइटेड दैट न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आर बीइंग क्रिएटेड फॉर द यूथ ऑफ द कंट्री।
2: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
1: The Prime Minister encouraged the new appointees to make the most of the iGOT Karma Yogi platform, noting that it would help them grasp their responsibilities with ease. Mr. Modi expressed confidence that these new appointees

0: of answer books for Class 12 board examinations until tomorrow. U.S. Secretary of State Marco Rubio to call on Prime Minister Modi in New Delhi today. WHO raises public health risk of Bundibugyo strain of Ebola in Congo from high to very high. And in IPL cricket, Lucknow Super Giants to take on Punjab Kings in Lucknow this evening. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के 51,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। कहा, भारत युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के विभिन्न देशों के साथ साझेदारी कर रहा है। बिहार सरकार अगले 5 वर्ष में राज्य में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती करेगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन और बढ़ाकर कल तक की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला के बुंडीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न स्वास्थ्य खतरे को उच्चतम किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने अपने कर्मचारियों पर भरोसा जताया है और अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे मजबूत करें। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत के विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है।
2: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि हर भारतीय देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है।
2: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
1: श्री मोदी ने नवनियुक्त कर्मचारियों को आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए भी प्रोत्साहित किया।
2: कर्मयोगी प्रारंभ जैसे मॉड्यूल से आपको अपनी जिम्मेदारियां समझने में बहुत सहूलियत होगी। मेरा आपसे आग्रह है, इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं।
1: 19वें रोजगार मेले में सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 51,000 से भी ज्यादा युवाओं को आज नियुक्ति पत्र सौंपे गए। संसदीय कार्य सूचना तथा प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि सरकार 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। चेन्नई स्थित ICF में आयोजित रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, रोजगार के अवसरों और व्यापार में सुगमता के क्षेत्र में तीव्र प्रगति कर रहा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रोजगार मेले के परिणाम स्वरूप पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से नियुक्तियों में वृद्धि हुई है। नई दिल्ली में

0: 19वें रोजगार मेले में डॉक्टर सिंह ने कहा कि इस पहल ने समय सीमा का सख्ती से पालन किया है, जिससे युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है और योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया सुनिश्चित हुई है। उन्होंने मिशन कर्मयोगी प्रारंभ के विकल्प के बारे में भी बताया।
1: मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत आई गॉड प्लेटफॉर्म पर अभी तक 1,64,00,000 उम्मीदवार रजिस्टर हो चुके हैं और 4,776 से अधिक कोर्सेज उपलब्ध हैं। आज भी आपके द्वारा नियुक्ति पत्र प्राप्त करते ही प्रत्येक उम्मीदवार को साथ ही साथ मिशन कर्मयोगी प्रारंभ का विकल्प भी प्रदान कर दिया जाएगा।
0: देशव्यापी रोजगार मेला कार्यक्रम के अंतर्गत आज पश्चिम बंगाल में 3 जगहों पर नए भर्ती हुए उम्मीदवारों को 185 नियुक्ति पत्र सौंपे गए। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मुख्य अतिथि के तौर पर इसमें भाग लिया। केरला में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने आज तिरुवनंतपुरम में रोजगार मेले का उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया रोजगार मेला केवल एक भर्ती अभियान से कहीं अधिक है और इसका उद्देश्य युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति में बदलना है। पंजाब में आज रेल कोच फैक्ट्री RCF कपूरथला और पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स पटियाला सहित 2 स्थानों पर रोजगार मेला आयोजित किया गया। यहां 281 नए लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि रोजगार मेला एक सशक्त राष्ट्रीय संस्था बन गया है जो पारदर्शिता और योग्यता आधारित समयबद्ध भर्ती सुनिश्चित करता है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य में अगले 5 वर्ष में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अब शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना हर साल जुलाई महीने में जारी की जाएगी। बिहार सरकार ने 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा में शामिल होने वाले राज्य के सभी छात्रों के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक और दिन बढ़ाकर कल तक कर दी है। CBSE ने यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया है, जिससे वेबसाइट बाधित हो रही थी। बोर्ड ने बताया कि विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। CBSE ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे इस विस्तारित समय सीमा का सदुपयोग करें और प्रक्रिया को पूरा करें। आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले में आज राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी में भारतीय राजस्व सेवा के 76वें बैच के अधिकारियों की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं को लगभग 4 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को राष्ट्र के विकास में सक्रिय भागीदार बनना चाहिए। श्री चौधरी ने कहा कि भारत एक विकसित राष्ट्र के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है और एक विकसित आत्मनिर्भर तकनीकी रूप से उन्नत और विश्व स्तर पर सम्मानित राष्ट्र को बनते हुए हम सब देख रहे हैं।
0: राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर में आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया। यहां 1,100 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय रोजगार मेले में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव शामिल हुए। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार पूरे देश में युवाओं को पारदर्शी और समयबद्ध रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
3: रेलवे में आज करीब करीब 1,60,778 भर्तियों पे काम चल रहा है। पहले 8-8, 10-10 साल में एक बार भर्ती निकलती थी या 4-4, 5-5 साल में एक बार भर्ती निकलती थी। कांग्रेस का वो युग था। मोदी जी ने जब जिम्मेदारी ली तो उस समय को कंप्रेस किया।
0: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र प्रशासन को जनगणना कार्य के लिए निजी गैर सहायता प्राप्त और अल्पसंख्यक विद्यालयों के लिए शिक्षकों को तैनात करने से रोक दिया है। न्यायमूर्ति गौतम अखंड और न्यायमूर्ति संदेश पाटिल की खंडपीठ ने पाया कि जनगणना

0: अधिनियम और नियमों के अंतर्गत शिक्षकों पर जनगणना संबंधी कार्य करने का कोई दायित्व नहीं है। न्यायालय ने राज्य भर में 500 से अधिक विद्यालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्यालय संघों को अंतरिम राहत प्रदान की है। इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति स्थिर है और ईंधन की कोई कमी नहीं है। इंडियन ऑयल ने एक बयान में कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर मांग आपूर्ति असंतुलन और चुनिंदा क्षेत्रों में मांग बढ़ने के कारण अस्थिरता की खबर है। ऐसे मामले देश भर में 42,000 से अधिक खुदरा दुकानों के इंडियन ऑयल के नेटवर्क में से कुछ खुदरा दुकानों तक ही सीमित हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में यह तीसरी बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपये प्रति लीटर हो गया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी की कीमत में 1 रुपये की वृद्धि की है। इस वृद्धि के बाद राजधानी में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 81.09 रुपये हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। वे मंगलवार को नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री रूबियो आज सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री कल विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। उत्तरी चीन के शानकसी प्रांत में किनयुआन काउंटी में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट के कारण मरने वालों की संख्या 82 हो गई है। ये गैस विस्फोट कल सुबह ल्यूशेनियो कोयला खदान में हुआ। बचाव कार्य जारी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने दुर्घटना के बाद की स्थिति से निपटने के लिए उचित कदम उठाने का आह्वान भी किया है। बांग्लादेश में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ती हिंसक घटनाओं पर यूनिसेफ ने गहरी चिंता जताई है। सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत करने और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया गया है। कल जारी एक बयान में बांग्लादेश में यूनिसेफ के प्रतिनिधि राणा फ्लावर्स ने कहा कि संगठन उन स्थानों पर बच्चों के साथ दुष्कर्म और हत्या के हालिया मामलों से बेहद आहत और दुखी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला बुंजीबुगियो स्ट्रेन से उत्पन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे को राष्ट्रीय स्तर पर उच्चतम कर दिया है। एक रिपोर्ट।
1: विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस ने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर यह खतरा बहुत उच्च, क्षेत्रीय स्तर पर उच्च और वैश्विक स्तर पर निम्न है। उन्होंने बताया कि इस संक्रमण के अब तक 82 मामले सामने आए हैं और 7 लोगों की मौत हो चुकी है। संगठन ने पहले इस प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था। साथ ही ये स्पष्ट किया था कि ये महामारी के स्तर पर नहीं है। इबोला एक वायरल बीमारी है जो चमगादड़ों से फैलती है और संक्रमित व्यक्तियों या जानवरों के शरीर के तरल पदार्थ या दूषित वस्तुओं के सीधे संपर्क से फैलती है। दुर्लभ मामलों में हवा के माध्यम से भी ये बीमारी फैल सकती है। इसका ऊष्मायान काल 2 से 21 दिनों तक होता है, जिसके शुरुआती लक्षणों में बुखार, थकान, मांसपेशियों में दर्द और गले में खराश शामिल है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री नवीन के नए विचार, जोशीले नेतृत्व और संगठन के काम तथा प्रशासन दोनों की गहरी समझ ने उन्हें हर जगह बहुत सम्मान दिलाया है। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हराया था। मौसम विभाग ने कल तक पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली का आज अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के 51,000 से अधिक चयनित कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। कहा, भारत युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के विभिन्न देशों के साथ साझेदारी कर रहा है। बिहार सरकार अगले 5 वर्ष में राज्य में 1 लाख शिक्षकों की भर्ती करेगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 1 दिन और बढ़ाकर

की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबिया आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला के बुंजीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न स्वास्थ्य खतरे को उच्चतम किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। इस समय दिन के 2:30 हुए हैं। प्रस्तुत है उपशास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं क्षिप्रा बोस का राग तिलंग में गायन।

उप शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे शिप्रा बोस का राग तिलंग में गायन। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। इस समय 2:45 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं आ गले लग जा फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज में। साहिर लुधियानवी की शब्द रचना को संगीत दिया है आर डी परमन ने।

अभी आपने सुना आखिरी खत फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार थे कैफी आजमी, संगीतकार थे खयाम। कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवा रहे हैं आंधी फिल्म का गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर के स्वर में। इस गीत को लिखा है गुलजार ने, धुन बनाई है आरडी बर्मन ने।

आंधी फिल्म के इस युगल गीत के साथ ही कार्यक्रम भोले बिसरे गीत यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत गुंजन। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं आप तो ऐसे नाथे फिल्म के गीत से, जिसे गाया है मोहम्मद रफी ने, गीत लिखा है निदा फाजली ने और संगीत दिया है उषा खन्ना ने।

अभी आप सुन रहे थे आपके साथ फिल्म का गीत अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज की आवाज में। गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और भूपिंदर सिंह की आवाज में मौसम फिल्म का युगल गीत। गीत के बोल लिखे हैं गुलजार ने, धुन बनाई है मदन मोहन ने।

अभी आपने सुना महबूब की मेहंदी फिल्म का गीत मोहम्मद रफी के स्वर में। इस गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने, धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं अनजान का लिखा गीत आशा भोसले की आवाज में मुकद्दर का सिकंदर फिल्म से। संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी।

मुकद्दर का सिकंदर फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम गीत गुंजन यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। इस समय दिन के 3:30 हुए हैं। अब हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। सायंकालीन सभा में शाम 5 हम अपने कार्यक्रमों के साथ आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज तथा न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बजने को हैं। अब हिंदी में समाचार होंगे, प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमरीका वैश्विक भलाई के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित थे। श्री मार्को रूबियो 26 मई को होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। वे आज अमेरिका से कोलकाता पहुंचे, जहां उन्होंने मशीनरीज ऑफ चैरिटी का दौरा किया और मदर टेरेसा की विरासत को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। श्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 19वें रोजगार मेले में कहा कि देश ने अपने कर्मयोगियों पर भरोसा जताया है और अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे और मजबूत करें। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है।

0: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि हर भारतीय देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है। श्री मोदी ने कर्मचारियों को आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए भी प्रोत्साहित किया। 19वें रोजगार मेले में सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में नव नियुक्त 51,000 से भी ज्यादा युवाओं को आज नियुक्ति पत्र सौंपे गए। इस अवसर पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार का अथक प्रयास भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नए भर्ती हुए लोग 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। वहीं कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि रोजगार मेले के परिणाम स्वरूप पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से नियुक्तियों में वृद्धि हुई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में बुनियादी अर्थव्यवस्था मजबूत और निर्यात में वृद्धि बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के बाद मई माह में भी निर्यात वृद्धि जारी रही, जो वैश्विक प्रतिकूलताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाती है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने किसानों को बढ़ती लागत से बचाने के लिए उर्वरकों की बढ़ी कीमतों का बोझ स्वयं वहन किया है। उन्होंने कहा कि सरकार भव्य योजना के माध्यम से कारोबारी सुगमता के लिए देश भर में 100 औद्योगिक पार्क स्थापित करेगी। सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था अगले महीने की 21 तारीख तक इन मसौदा नियमों पर आपत्तियां या सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में तीसरी बार वृद्धि हुई है। हालांकि भारत दुनिया की एकमात्र ऐसी बड़ी अर्थव्यवस्था है जिसने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में रुकावट के शुरुआती 76 दिनों के दौरान खुदरा ईंधन की कीमतों को लगभग अपरिवर्तित रखा है। सूत्रों के अनुसार रूस यूक्रेन युद्ध और हॉर्मुज जलडमरू मध्य के बंद होने के बीच भारत वैश्विक तेल संकट का असर स्वयं पर लेता रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन और बढ़ाकर कल तक कर दी है। CBSE ने यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया है। लखनऊ में IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:05 हुए हैं। आइए लेते हैं जानकारी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

श्रोताओं, आपसे कुछ ही देर में यानी शाम 5:10 पर आप सुनेंगे भक्ति परक फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर संध्या, जिसमें आप सुनेंगे फिल्मों से भजन। हमारे युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युवावाणी शाम 5:30 पर, जिसमें आज चर्चा होगी राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम विषय पर। साथ ही होगी वार्ता सोशल मीडिया अभिव्यक्ति का मंच या दिखावे का दबाव। वार्ताकार होंगे प्रांजल टमटा। अन्य सेगमेंट होंगे आइए जाने, जिसमें आप जानेंगे इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के विषय में, और इस सप्ताह ताकत वतन की हमसे है। हमारे ग्रामीण अंचल के साथ ही सुनेंगे अपना कार्यक्रम ग्राम्य लोग शाम 6:00, जिसमें नारी उत्थान एक सामाजिक जिम्मेदारी विषय पर होगी चर्चा।

और चर्चा होगी प्रसूति फिस्टूला को समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस विषय पर। साथ ही होगी वार्ता भारतीय खेती बाड़ी में मानसून का महत्व विषय पर। वार्ताकार होंगे डॉक्टर नीलेश शर्मा। साथ ही जानिएगा मंडी भाव और मौसम का हाल, आनंद लीजिएगा लोक गीतों का। श्रोताओं, शाम 6:30 पर आप सुनेंगे श्रमिक साथियों का दैनिक कार्यक्रम मजदूर मंडल, जिसमें चर्चा होगी श्रमिक और शिक्षा विषय पर। होगी वार्ता जिसका विषय होगा बाल श्रम एक सामाजिक अपराध। वार्ताकार होंगे बनवारी लाल कुशवाहा। अन्य सेगमेंट होंगे आज का प्रश्न, ज्ञान सागर, लीजिएगा सेहत टिप्स, होंगी नई खोजें और आनंद लीजिएगा फिल्म संगीत का।

श्रोताओं, शाम 7:10 पर समय रहेगा कार्यक्रम विविधा का, जिसमें आज आप सुनेंगे वार्ता रहिमन पानी राखिए। वार्ताकार होंगे डॉक्टर अशोक तिवारी। शाम 7:31 पर समय रहेगा कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश का, जिसमें आज आप सुनेंगे प्रसूति फिस्टूला को समाप्त करने के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के मौके पर विशेष भेंट वार्ता। सुप्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निधि बंसल से अनिंद्र सिंह की बातचीत। समय याद रखिएगा शाम 7:31। फिल्म संगीत का आनंद हमारे श्रोता ले सकते हैं रात्रि 8 बजे, जिसमें आज आप सुनेंगे फिल्मों से भजन कार्यक्रम भजन संध्या में। इसके अलावा फिल्म संगीत आप सुनेंगे रात्रि 8:30 पर चित्रपट संगीत कार्यक्रम में। श्रोताओं, रात्रि 9:30 पर हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होगा रेडियो पत्रिका विज्ञान भारती, और रात्रि 10 बजे हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होगा संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम

मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:10 हुए हैं। आइए सुनते हैं भक्ति परक फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर संध्या। श्रोताओं, कार्यक्रम की पहली भक्ति रचना उदित नारायण नूतन और साथियों के स्वर में फिल्म लो में आ गया से। बोल लिखे हैं देव कोहली ने, धुन बनाई है आनंद राज आनंद ने।

श्रोताओं, लो में आ गया फिल्म से ये गीत आपने सुना। उदित नारायण नूतन और साथियों के स्वर में, शब्द रचना देव कोहली की थी, संगीत आनंदराज आनंद का। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में अनजान का गीत, महेंद्र कपूर, साधना सरगम और सुरेश वाडेकर की आवाजों में, दाता फिल्म से।

0: अरे राहुल, ये झूठा बैग और हाथ में मोबाइल, तुम्हारी पुरानी आदतें कहाँ गई?
1: अमित भाई, मैंने पर्यावरण को बचाने का रेलवे के साथ संकल्प लिया है, नो सिंगल यूज प्लास्टिक।
0: और ये टिकट का कागज कहाँ है?
1: कागज का जमाना गया, अब मैं अपनाता हूँ डिजिटल टिकटिंग। रेल वन ऐप से पेपरलेस यात्रा, समय की बचत और पेड़ों की सुरक्षा।
2: इस पर्यावरण दिवस उत्तर मध्य रेलवे का साथ दे, प्लास्टिक टिकटिंग के लिए रेल वन ऐप का उपयोग करें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।

श्रोताओं, जोधा अकबर फिल्म से ये भक्त रचना आपने सुनी A.R. रहमान के स्वर में। बोल लिखे थे जावेद अख्तर ने, धुन बनाई थी A.R. रहमान ने। श्रोताओं, इन गीतों के साथ ही कार्यक्रम सुर संध्या यहीं संपन्न होता है। कार्यक्रम में आज आपने जिन फिल्मों के भजन सुने वे फिल्में थी जोधा अकबर, दाता, लो में आ गया। आवाजें थी उदित नारायण, नूतन, महेंद्र कपूर, साधना सरगम, सुरेश वाडेकर, A.R. रहमान और साथियों की।

मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युवावाणी।

हेलो नमस्ते गुड इवनिंग साथियों, स्वागत है सभी प्यारे प्यारे लिसनर्स का कार्यक्रम युववाणी में। आपके आज के रेडियो सफर की हम सफर बनकर हाजिर हूँ मैं, आपकी रेडियो साथी राशि। और एक बार फिर हम बिल्कुल तैयार हैं आपका मनोरंजन करने के लिए और आपके साथ ढेर सारी बातें करने के लिए। साथियों, उम्मीद है आप सभी अपना वीकेंड भरपूर इंजॉय कर रहे होंगे। हालांकि हाल बेहाल करती भीषण गर्मी पड़ रही है, लेकिन फिर भी अपना मनपसंद कार्यक्रम सुनकर, कुछ गीत गुनगुनाकर हमें इस मौसम में थोड़ी सी राहत तो मिल ही जाती है। लेकिन हाँ, हम ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आप ऐसे मौसम में अपनी सेहत को नज़रअंदाज करें। साथियों, आगरा में पारा 44-45 डिग्री तक जा रहा है और ऐसे में आपको अपना और अपने परिवार का खास ख्याल रखना है। साथियों, वैसे देश के एक युवा नागरिक

रूप में ऐसे कितने ही दायित्व हैं जिन्हें हमें पूरा करना है। सबसे पहली बात, हम युवा समाज की रीढ़ होते हैं और हमारे कंधों पर अपने परिवार के साथ साथ अपने समाज के कमजोर वर्गों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी होती है। अब इतना सब हम अकेले कर पाएं ऐसा तो संभव नहीं है, इसलिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम जैसी योजनाओं को जानना कई कारणों से बेहद जरूरी हो जाता है। इस योजना की जानकारी होने से हम अपने आसपास के किसी भी बेसहारा बुजुर्ग, दिव्यांगजन या जरूरतमंद विधवा महिला को सरकार से मिलने वाली आर्थिक मदद से जोड़ सकते हैं और हमारा ये छोटा सा प्रयास किसी को लाचारी से बचा सकता है। साथियों, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, जिसे नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम भी कहते हैं, एक बेहद महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजना है। इसके तहत हर राज्य अपनी आर्थिक क्षमता के भीतर बुजुर्गों, बीमारों और दिव्यांगजनों को सार्वजनिक सहायता प्रदान करता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के बेहद गरीब परिवारों के बुजुर्गों, विधवाओं और गंभीर रूप से दिव्यांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता जैसे पेंशन और खाद्य सुरक्षा देकर उन्हें एक गरिमापूर्ण जीवन प्रदान करना है। इसके अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांगता पेंशन जैसी उपयोजनाएं शामिल हैं। साथियों, आज का युवा कल का नीति निर्माता और सजग नागरिक है। अगर आप देश में सोशल सिक्योरिटी के ढांचे को समझना चाहते हैं तो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम जैसे जमीनी कार्यक्रमों को जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। इसे समझकर ही आप ये जान पाएंगे कि देश के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक सरकारी मदद कैसे पहुंचती है और इसमें पारदर्शिता लाने के लिए डिजिटल और आधार आधारित भुगतान का क्या महत्व है। यानी आसान शब्दों में कहें तो ये ज्ञान आपको सिर्फ एक पढ़ा लिखा युवा नहीं बल्कि समाज के प्रति एक संवेदनशील और जिम्मेदार नागरिक भी बनाता है। साथियों, जब एक युवा जागरूक, आत्मविश्वासी और संवेदनशील बनता है तब वो सोशल मीडिया जैसे शक्तिशाली माध्यम का उपयोग भी समझदारी और जिम्मेदारी के साथ करता है। वो दिखावे और तुलना की इस अंधी दौड़ में खोने की बजाय अपनी आवाज को समाज के हित में इस्तेमाल करना सीखता है। साथियों, इस विषय पर भी आपसे करेंगे कुछ बातें, लेकिन उससे पहले समय हो चुका है कार्यक्रम में एक म्यूजिकल ब्रेक लेने का।

0: साथियों, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि कैसे आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया एक दोधारी तलवार बन चुका है। एक तरफ ये अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है जिसने आम इंसान को अपनी आवाज, कला और विचारों को दुनिया के सामने रखने की आजादी दी है। इसके जरिए भौगोलिक दूरियां मिट चुकी हैं और लोग उन मुद्दों पर खुलकर बात कर पा रहे हैं जिन्हें पहले दबा दिया जाता था। लेकिन दूसरी तरफ यही मंच धीरे धीरे दिखावे के एक मानसिक दबाव में तब्दील होता जा रहा है। यहाँ लाइक्स, कमेंट्स और फॉलोअर्स की अंधी दौड़ ने लोगों को एक नकली और परफेक्ट जिंदगी की नुमाइश करने पर मजबूर कर दिया है। दूसरों की बेहतरीन और चकाचौंध भरी पोस्ट्स को देखकर अक्सर युवाओं में अवसाद पनपने लगता है। असलियत यह है कि सोशल मीडिया अपने आप में बुरा नहीं है, बल्कि ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो आइए इस विषय पर और जानकारी लेते हैं इस वार्ता के माध्यम से, जिसके वार्ताकार हैं प्रांजल टमटा।
1: आज सोशल मीडिया हमारी जिंदगी का

ऐसा हिस्सा बन चुका है जिसे हम चाहकर भी दूर नहीं कर सकते। सुबह उठते ही मोबाइल हाथ में आ जाता है और रात को सोने से पहले आखिरी नज़र भी उसी स्क्रीन पर होती है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म ने दुनिया को हमारी उंगलियों तक पहुंचा दिया है। लेकिन सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि आखिर सोशल मीडिया है क्या। सोशल मीडिया सिर्फ एक ऐप या वेबसाइट नहीं, ये एक डिजिटल मंच है जहां लोग अपने विचार, भावनाएं, तस्वीर, वीडियो और अनुभव दूसरों के साथ साझा करते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो सोशल मीडिया लोगों को जोड़ने का माध्यम है। पहले लोग चिट्ठियों से जुड़ते थे, फिर फ़ोन आए, फिर मैसेजिंग शुरू हुई और अब सोशल मीडिया ने संवाद को पूरी दुनिया तक पहुंचा दिया है। आज कोई व्यक्ति हजारों किलोमीटर दूर बैठकर भी अपनी बात लाखों लोगों तक तुरंत पहुंचा सकता है। सोशल मीडिया का असली उद्देश्य था लोगों को जोड़ना, विचारों का आदान प्रदान करना, सीखना सिखाना और अपनी अभिव्यक्ति को मंच देना। और अगर देखा जाए तो इसने बहुत कुछ अच्छा भी किया है। आज लाखों लोग सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करके सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं और अपनी पहचान बना रहे हैं। कोई YouTube पर एजुकेशन कंटेंट बना रहा है, कोई Instagram पर अपनी आर्ट और फोटोग्राफी दिखा रहा है, कोई अपने बिजनेस को ऑनलाइन बढ़ा रहा है तो कोई फ्रीलांसिंग और डिजिटल स्किल्स सीखकर घर बैठे पैसे कमा रहा है। आज सोशल मीडिया अर्निंग का भी बहुत बड़ा सोर्स बन चुका है। लोग कंटेंट क्रिएशन, यूट्यूब वीडियोस, ब्रांड प्रमोशन, एफिलिएट मार्केटिंग, ऑनलाइन टीचिंग, ब्लॉगिंग और फ्रीलांसिंग जैसे कई जरिए से पैसे कमा रहे हैं। कई छोटे बिजनेस भी सोशल मीडिया की वजह से आगे बढ़े हैं। जो लोग पहले सिर्फ अपने शहर तक सीमित थे, आज वो पूरे देश और दुनिया तक पहुँच रहे हैं। आज गांव का कोई कलाकार अपनी कला दुनिया तक पहुंचा सकता है, कोई छात्र पढ़ाई की वीडियो बनाकर लाखों लोगों की मदद कर सकता है, कोई अपनी कविता, संगीत, पेंटिंग या विचारों से पहचान बना सकता है। पहले प्रतिभा को मंच ढूंढना पड़ता था, लेकिन आज मंच हर हाथ में मौजूद है। सोशल मीडिया ने कई सामाजिक बदलावों में भी बड़ी भूमिका निभाई है। किसी ज़रूरतमंद की मदद करनी हो, किसी सामाजिक मुद्दे पर आवाज़ उठानी हो या लोगों को जागरूक करना हो, ऐसे में सोशल मीडिया ने लोगों को जोड़ने का काम किया है। लेकिन क्या सच में आज के समय में सोशल मीडिया सिर्फ अभिव्यक्ति का माध्यम रह गया है? असलियत ये है कि सोशल मीडिया अब सिर्फ सोशल नहीं रहा, ये धीरे धीरे प्रदर्शन का मंच बनता जा रहा है। आज लोग अपनी ज़िंदगी कम जी रहे हैं और ज़्यादा दिखा रहे हैं। कौन कहाँ घूमने गया, किसने क्या खरीदा, कौन कितनी महंगी जगह पर खाना खा रहा है, किसकी ज़िंदगी कितनी परफेक्ट दिख रही है, ये सब सोशल मीडिया की दुनिया का हिस्सा बन चुका है। आजकल हम सब देख रहे हैं किस तरह लोग अपनी लाइफस्टाइल को सोशल मीडिया पर प्रदर्शित कर रहे हैं। लेकिन सच ये है कि सोशल मीडिया पर लोग अपनी ज़िंदगी नहीं दिखाते, बल्कि सिर्फ उसकी सबसे अच्छी झलक दिखाते हैं। आज सोशल मीडिया पर दिखावे का सबसे बड़ा हिस्सा फेक लग्जरी लाइफस्टाइल बन चुका है। बहुत से लोग अपनी असल ज़िंदगी नहीं बल्कि ऐसी ज़िंदगी दिखाते हैं जो देखने में अमीर और परफेक्ट और आकर्षक लगती है। कई लोग महंगी कारों के साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं जबकि वो कार उनकी है ही नहीं। कुछ लोग सिर्फ फ़ोटो और रील बनाने के लिए लग्जरी होटल, कैफ़े या रिजॉर्ट में जाते हैं ताकि लोगों को लगे कि उनकी ज़िंदगी बहुत आलीशान है। आजकल रेंटेड लाइफस्टाइल भी एक ट्रेंड बन चुका है। कपड़े किराए पर, कार किराए पर, यहाँ तक कि फोटोशूट के लिए नकली सेटअप तक इस्तेमाल किए जाते हैं, सिर्फ इसीलिए ताकि सोशल मीडिया पर लोग प्रभावित हों। कुछ लोग पैसे गिनते हुए वीडियो बनाते हैं, महंगे फ़ोन और ब्रांडेड चीज़ें दिखाते हैं, लेकिन असल ज़िंदगी में वो आर्थिक दबाव में होते हैं। कई लोग सिर्फ दूसरों को प्रभावित करने के लिए उधार लेकर खर्च करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सोशल मीडिया पर रिच दिखना ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात यह है कि सोशल मीडिया पर लोग अपनी ज़िंदगी के सिर्फ हाईलाइट और सबसे अच्छे पल ही दिखाते हैं, वो अपनी असल ज़िंदगी कभी दिखाते ही नहीं हैं। अगर कोई व्यक्ति 30 दिन में एक बार घूमने जाता है तो सोशल मीडिया देखकर ऐसा लगता है जैसे वो हर दिन लग्जरी लाइफस्टाइल जी रहा है। एक छोटी सी खुशी को इस तरह दिखाया जाता है कि पूरी ज़िंदगी परफेक्ट लगे। फिल्टर, एडिटिंग और कैमरे के एंगल भी इस दिखावे को और बढ़ा देते हैं। कई बार फोटोज़ इतनी एडिट की जाती है कि असली और नकली में फ़र्क करना ही मुश्किल हो जाता है। और समस्या सिर्फ ये नहीं कि लोग दिखावा कर रहे हैं, समस्या ये है कि जो लोग ये सब देख रहे हैं वो खुद को कम समझने लगे हैं। एक साधारण इंसान सोचने लगता है कि उसकी ज़िंदगी दूसरों जितनी अच्छी क्यों नहीं है। यहीं से हीन भावना, तुलना और मानसिक दबाव शुरू होता है।

0: सोशल मीडिया पर रिच दिखना आसान है, लेकिन वास्तविक जीवन में खुश और संतुष्ट रहना मुश्किल। आज कई लोग अपनी कमाई से ज़्यादा अपनी ऑनलाइन इमेज पर खर्च कर रहे हैं। वो ज़िंदगी अपने लिए कम और लोगों को दिखाने के लिए ज़्यादा जी रहे हैं। कोई अपनी मुस्कुराती तस्वीर डालता है, लेकिन उसके पीछे का तनाव नहीं दिखाता। कोई अपनी सफलता दिखाता है, लेकिन उसके पीछे का संघर्ष नहीं दिखाता। और जो व्यक्ति ये सब देख रहा होता है, वो धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी की तुलना दूसरों से करने लगता है। एक साधारण छात्र सोचता है कि सबकी ज़िंदगी उससे बेहतर है। एक युवा सोचता है कि अगर उसके पास महंगा फ़ोन, अच्छे कपड़े या ज़्यादा फॉलोअर नहीं है, तो शायद वो पीछे है। यहीं से सोशल मीडिया अभिव्यक्ति से ज़्यादा दिखावे का दबाव बन जाता है। आज लोग खुश कम और खुश दिखने की कोशिश ज़्यादा कर रहे हैं। सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि सोशल मीडिया ने इंसान को दूसरों की नज़रों का कैदी बना दिया है। लोग अब ये सोचकर फ़ोटो डालते हैं कि लोग क्या कहेंगे। वो ये नहीं सोचते कि मैं खुश हूँ या नहीं। आज कई लोग खाना खाने से पहले फ़ोटो लेते हैं, घूमने जाते हैं तो जगह को महसूस कम करते हैं और उस जगह की वीडियो ज़्यादा बनाते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम ज़िंदगी नहीं जी रहे, बल्कि सिर्फ उसे ऑनलाइन साबित करने में लगे हुए हैं, और इसका असर सबसे ज़्यादा युवाओं पर पड़ रहा है। आज लाइक्स आत्मविश्वास तय कर रहे हैं, फॉलोअर्स स्टेटस तय कर रहे हैं, और कमेंट मूड तय कर रहे हैं। अगर किसी पोस्ट पर कम लाइक्स आए तो मन खराब हो जाता है, अगर किसी और की पोस्ट ज़्यादा वायरल हो जाए तो तुलना शुरू हो जाती है। धीरे धीरे ये तुलना तनाव, चिंता और अकेलेपन में बदलने लगती है। लेकिन सच्चाई ये है कि असली अमीरी महंगी चीज़ों में नहीं, बल्कि मानसिक शांति, सच्चे रिश्तों और संतोष में होती है। यही सोशल मीडिया की फ़िल्टर वाली सच्चाई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सोशल मीडिया पूरी तरह गलत है। गलती तब शुरू होती है जब हम सोशल मीडिया को अपनी वास्तविक पहचान बना लेते हैं। अगर सोशल मीडिया का इस्तेमाल सीखने, अपनी कला दिखाने, लोगों से जुड़ने और पॉजिटिव बातें फैलाने के लिए किया हो, तो यह बहुत शक्तिशाली माध्यम है। लेकिन अगर इसका इस्तेमाल सिर्फ दूसरों को प्रभावित करने और खुद को साबित करने के लिए हो, तो ये धीरे धीरे इंसान को अंदर से कमज़ोर कर देता है। असल में सोशल मीडिया उतना ही अच्छा या बुरा है जितना उसका इस्तेमाल। अगर हम इसे सिर्फ कंपैरिजन, दिखावे और दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो यह दबाव बन जाएगा। लेकिन अगर हम इसे लर्निंग, ग्रोथ, अवेयरनेस और अपॉर्चुनिटीज़ के लिए इस्तेमाल करें, तो यही सोशल मीडिया ज़िंदगी बदल सकता है। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम सोशल मीडिया के कंज्यूमर कम और क्रिएटर ज़्यादा बने। सिर्फ दूसरों की ज़िंदगी देखने के बजाय अपनी स्किल्स, अपनी सोच और अपनी पहचान बनाने पर ध्यान दें। हमें यह समझना होगा कि असली खुशी कैमरे के सामने नहीं, बल्कि वास्तविक रिश्तों, सच्ची बातचीत और अपनेपन में होती है। क्योंकि आखिर में लोग आपकी प्रोफाइल नहीं, आपका व्यवहार याद रखते हैं, आपकी स्टोरी नहीं, आपकी सच्चाई याद रखते हैं। और शायद इसीलिए आज की सबसे बड़ी ज़रूरत ये नहीं कि हम सोशल मीडिया छोड़ दें, बल्कि ये है कि हम वहाँ भी असल बने रहें। क्योंकि दिखावे से कुछ समय के लिए लोगों को प्रभावित तो किया जा सकता है, लेकिन सच्चाई ही इंसान की असली पहचान होती है।
1: साथियों, अभी आप सुन रहे थे वार्ता जिसका विषय था सोशल मीडिया, अभिव्यक्ति का मंच या दिखावे का दबाव। वार्ताकार थे प्रांजल टमटा। साथियों, इस वार्ता के माध्यम से हमने जाना कि सोशल मीडिया का उपयोग केवल अपनी पहचान चमकाने और दूसरों से तुलना करने के लिए करेंगे तो ये मानसिक तनाव ही देगा, लेकिन अगर इसका उपयोग रचनात्मकता और सार्थक संवाद के लिए किया जाए तो ये आज भी अभिव्यक्ति का सबसे बेहतरीन मंच है। कार्यक्रम में बढ़ेंगे आगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए आ रहा है ये प्यारा सा गीत।

0: अरे राहुल, ये जूट का बैग और हाथ में मोबाइल, तुम्हारी पुरानी आदतें कहाँ गई?
1: अमित भाई, मैंने पर्यावरण को बचाने का रेलवे के साथ संकल्प लिया है, नो सिंगल यूज प्लास्टिक।
0: और ये टिकट का कागज कहाँ है?
1: कागज का जमाना गया, अब मैं अपनाता हूँ डिजिटल टिकटिंग। रेल वन ऐप से पेपरलेस यात्रा, समय की बचत और पेड़ों की सुरक्षा।
2: इस पर्यावरण दिवस उत्तर मध्य रेलवे का साथ दे, प्लास्टिक छोड़े, जूट के बैग अपनाएं और डिजिटल टिकटिंग के लिए रेल वन ऐप का उपयोग करें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
3: साथियों, कार्यक्रम में आगे अब हम आपको बताने जा रहे हैं IBCA के बारे में, यानी इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में। साथियों, IBCA भारत द्वारा शुरू की गई एक बेहद महत्वाकांक्षी और ऐतिहासिक वैश्विक पहल है। अगर आसान शब्दों में समझें तो ये दुनिया की 7 प्रमुख बिग कैट्स यानी बाघ, एशियाई शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जैगुआर और प्यूमा को बचाने के लिए बनाया गया एक अंतर्राष्ट्रीय महासंगठन है। साथियों, देश के जागरूक युवा होने के नाते आपको इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जरूर पता होनी चाहिए, जैसे ये संगठन दुनिया की 7 मुख्य शिकारी बिल्ली प्रजातियों के संरक्षण पर केंद्रित है। इस संगठन को बनाने का मुख्य उद्देश्य है बिग कैट्स के अवैध शिकार और व्यापार पर रोक लगाना और बिग कैट्स के अंगों की तस्करी और अवैध शिकार को रोकने के लिए दुनिया भर के देशों के बीच तालमेल साझा करना। साथियों, एक जिम्मेदार और सजग युवा के तौर पर इस अलायंस को सिर्फ एक सरकारी योजना की तरह न देखकर इस संगठन के महत्व को समझना जरूरी है। देखिए, हमें अब इकोलॉजिकल डिप्लोमेसी को समझना होगा। आज भारत पर्यावरण के मोर्चे पर भी दुनिया का ग्लोबल लीडर बन रहा है। आपको बता दें कि भारत का संरक्षण मॉडल दुनिया से अलग है, ये को एग्जिस्टेंस की भावना को साथ लेकर चलता है। हम युवाओं को ये समझना होगा कि आर्थिक विकास और प्रकृति का संरक्षण साथ साथ मुमकिन है। इस अलायंस के बढ़ने से वन्य जीवन संरक्षण, इको टूरिज्म, पर्यावरण रिसर्च और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्षेत्रों में करियर और रिसर्च के बेहतरीन अंतर्राष्ट्रीय अवसर पैदा हो रहे हैं। साथियों, आपको ये भी बताते चलें कि भारत बहुत जल्द नई दिल्ली में पहला IBCA समिट आयोजित करने जा रहा है।

इसका मुख्य थीम रखा गया है बिग कैट्स सेव ह्यूमैनिटी सेव इकोसिस्टम। IBCA भारत की उस वैश्विक सोच का प्रतीक है जो प्रकृति पर्यावरण और मानवता के संतुलित भविष्य का मार्ग दिखा रही है। इसलिए हम युवाओं को चाहिए कि इस मिशन से जुड़कर विकास के साथ संरक्षण की सोच अपनाएं और भारत को पर्यावरण नेतृत्व की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। साथियों, IBCA पर जानकारी यहीं संपन्न होती है। आइए आनंद लेते हैं कार्यक्रम के अंतिम गीत का।

अभी हमारे युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युवावाणी मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 6 बज चुके हैं। आइए सुनते हैं ग्रामीण अंचल के साथियों का कार्यक्रम ग्राम्य लोक।

0: राम राम, प्रणाम। हमारे सभी किसान भाइयों बहनों को शाम के 6 बजे हैं और ग्राम्य लोक कार्यक्रम की इस चौपाल में मैं यानी आपका साथी देवेंद्र आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज जब हम अपनी चौपाल के लिए आ रहे थे तो रास्ते में देखा कि एक छोटी सी बच्ची कंधे पर भारी सा बस्ता टांगे, हाथ में पानी की बोतल लिए अपनी माँ का हाथ पकड़कर ट्यूशन से पढ़कर आ रही थी। उसकी आंखों में वो चमक थी जैसे कि आज ही पूरी दुनिया जीत लेगी। लेकिन तभी हमारे दिमाग में एक ख्याल आया कि आज तो इस बच्ची के लिए इतना कुछ किया जा रहा है, पर क्या कल हमारा ये समाज उसे वो खुला आसमान देगा जहां वो खुलकर पंख फैला सके? क्योंकि जब नारी उत्थान की बात आती है तो अक्सर हम उसे किताबों या भाषणों तक सीमित कर देते हैं। हम सोचते हैं, अरे ये तो वीमेन पावर का मुद्दा है, इसे सरकार देखेगी। पर सच तो ये है कि ये कोई मुद्दा नहीं है, बल्कि ये हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है। जरा सोचिए, जिस देश में दुर्गा लक्ष्मी और सरस्वती जी की पूजा की जाती हो उसी देश में बेटी के जन्म लेते ही ज्यादातर लोग मायूस हो जाते हैं। और क्यों हम बेटी की कामयाबी को उसकी किस्मत से जोड़ते हैं, उसकी मेहनत से क्यों नहीं? साथियों, नारी उत्थान का मतलब ये नहीं है कि हम उन पर कोई एहसान कर रहे हैं। अरे भाई, इसका मतलब है उन्हें उनका हक देना जो कि सदियों से उनका है। और इसकी शुरुआत बहुत बड़े बदलावों से नहीं, बल्कि हमारे और आपके घर के छोटे छोटे फैसलों से होगी। जैसे बेटी की शादी के लिए पैसे बचाने से पहले उसकी पढ़ाई के लिए खर्च कीजिए, उसे दहेज नहीं डिग्री यानी शिक्षा की ताकत दीजिए। अपने बेटों को दूसरों की इज्जत करना और आदर करना सिखाइए। बेटा और बेटी की परवरिश में कोई फर्क मत कीजिए, क्योंकि जब एक महिला सशक्त होती है तो सिर्फ घर ही नहीं बदलता, एक पूरी पीढ़ी बदल जाती है। तो आइए हम सभी ये संकल्प लें कि हम तैयार हैं नारी को वो सम्मान देने के लिए, वो सुरक्षा देने के लिए, वो मौके देने के लिए जिसकी वे हकदार हैं। क्योंकि दोस्तों, हम सिर्फ सुनने वाले नहीं बल्कि समाज को बदलने वाले लोग हैं। और साथियों, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमारी बात हुई है खाकी की आन बान शान और आदि आबादी के गौरव को बढ़ाने वाली एक जाबाज महिला पुलिसकर्मी से, जिन्होंने फील्ड पर लगातार सक्रिय रहकर महिला सुरक्षा और जागरूकता की एक अभूतपूर्व मिसाल कायम की है।
1: सृष्टि की रचना से लेकर समाज के निर्माण तक हर युग में, हर काल में नारियों का जो योगदान रहा है वो सर्वोपरि रहा है। समाज की प्रगति, उसके संसार और उसकी संस्कृति की जो नींव होती है वो महिलाओं के सम्मान और उनकी खुशहाली पर की होती है। इसलिए हमें अपनी बेटियों को, अपने घर की महिलाओं को वो आजादी देनी चाहिए ताकि वे भी अपने सपनों को साकार कर सके और देश हित में अपना बहुमूल्य योगदान दे सके। तो ऐसी ही एक नारी शक्ति हमारे बीच इस समय है, माधुरी शर्मा जी, जो खुद भी एक जाबाज महिला पुलिसकर्मी है, जो लगातार समाज के बीच, महिलाओं के बीच जाकर उन्हें जागरूक करने की कोशिश कर रही है, उनके अधिकारों के विषय में, उनका जो शोषण होता है उससे बचने के उपायों के विषय में। तो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे कार्यक्रम में। और हम आपसे यही जानना चाहते हैं सबसे पहले कि जब आप महिलाओं के बीच जाती हैं तो समाज के नजरिए में क्या फर्क महसूस करती हैं?
2: जैसे कि भैया बता रहे हैं, नारी शक्ति का बहुत ही सम्मान है, बहुत ही गौरव की बात है कि आज भैया आए हमारे यहाँ और हमसे आमने सामने बातें करी। महिलाओं का आजकल बहुत ही शोषण ज्यादा चल रहा है, इसके संबंध में हम गांव-गांव घर-घर जाकर के उनको जागरूक करते हैं। विभिन्न योजनाएं हैं जिनके तहत हम उनको जागरूक करते हैं तथा सरकार की तरफ से इतने नंबर हैं जिनका प्रयोग करके हम उनको बताते हैं कि जिनसे वो जागरूक हों, अपनी बहन बेटियों को पढ़ाएं और उनका सम्मान हो। जैसे कि एक नंबर है 1090 वुमेन हेल्पलाइन नंबर, वो अभी चला है, उसके तहत महिलाओं की समस्याएं सुनी जाती है। जैसे कोई भी महिला, बच्चियां स्कूल जा रही हैं, कॉलेज में जा रही हैं, कोई भी लड़का उनका पीछा कर रहा है, कोई भी अराजक तत्व उनको परेशान कर रहा है, तो वो डरे नहीं, अगर जाकर के कॉलेज में मैडम को बताएं, टीचरों को बताएं, नहीं बता पा रहे तो अपने माताजी पिताजी को बताएं, उसमें भी उनको संकोच होता है। तो यहाँ एक थाने में हेल्प डेस्क डेस्क के नाम से प्रत्येक थाने में हेल्प डेस्क के नाम से एक ऑफिस है, उसमें जाकर के वो शक्ति दीदियां बैठती हैं, उनको बता सकती हैं या फिर अपने नंबर से 1090 पे कॉल कर सकती हैं। जो कॉल करेंगी वो भी हमारी जैसी शक्ति दीदियां ही उठाएंगी और उनका नाम गुप्त रखा जाएगा।
1: आपने कहा कि जो बच्चियां स्कूल जाती हैं उन्हें अगर कोई परेशानी हो तो मैडम को बताएं, प्रिंसिपल को बताएं, लेकिन वहां पे क्या कोई महिला टीम एक्टिव नहीं होती है क्या उन समय, जैसे बच्चियों के स्कूल है कॉलेज है उनके आसपास?
2: जी होती है, जैसा कि स्कूल खुलने के टाइम पे और क्लोज होने के टाइम पे भी हमारे जावा सिपाही वहां तैनात होते हैं और हर स्कूल में प्रत्येक स्कूल में एक पेटिका के नाम से भी रखा गया है, जिसमें लड़कियां नहीं बोल पा रही हैं तो अपना एक एप्लीकेशन लिख के उसमें पेटिका में डाल सकती हैं और सप्ताह में एक दिन हम जाते हैं स्कूल में और उसे खुलवा के देखते हैं, जो भी एप्लीकेशन होगी उसका निस्तारण किया जाता है।
1: अच्छा, आप लोग शहरों में भी जाते हैं, गाँव में भी जाते हैं, कस्बों में भी जाते हैं, लेकिन सबसे अधिक समस्याएं कहाँ?

0: महिलाएं अभी भी इतनी जागरूक नहीं हो पाई है। अगर तीनों का एक तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो कहां की महिलाओं को जागरूकता की ओर अधिक आवश्यकता है।
1: ये जो हमारे गांव है ना, पिछड़े गांव, वहां की महिलाएं ज्यादा जागरूक नहीं है। उसके लिए हम पैम्पलेट का इस्तेमाल करते हैं, दो तरीके की पैम्पलेट है, उनको बांटते हैं, उनको नंबर याद करवाते हैं बाकायदा, और उन्हें ये भी बताया जाता है कि ये नंबर टोल फ्री है, जो आपके फोन में पैसे ना हो तब भी ये नंबर लगाए जा सकते।
0: आपका कोई शोषण कर रहा, आपको कोई परेशान कर रहा हो तो आप इन
1: नंबरों का
0: उपयोग कर। नंबर एक बार आप दोहरा दीजिए।
1: एक है वुमेन हेल्पलाइन नंबर 1090। साइबर, जैसे साइबर कितना फ्रॉड चल रहा है उसके लिए भी है 1930। एक है जैसे महिलाएं खाना पीना बना रही है, आजकल आग जल्दी लग जाती है, तो उसके लिए अग्नि सेवा है 101, उसमें आप तुरंत कॉल करेंगे तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहीं आ जाती है। एक एम्बुलेंस है, जैसे महिलाएं गर्भवती हैं, घर से बाहर नहीं जा पा रही हैं, उनको प्रसव होने लगता है, दर्द होने लगता है, तो वो अपने नजदीकी कॉल से 102 पे कॉल करेंगी तो महिलाओं के लिए एम्बुलेंस आ जाती है।
0: तो मैम, बहुत सी महिलाएं संकोच करती हैं, समाज का उन्हें डर लगता है, घर वालों का डर लगता है, परिवार का डर रहता है, वो खुल के सामने नहीं आती, तो ऐसी महिलाओं को आप लोग कैसे जागरूक करने की कोशिश करते
1: हैं? हम जाते हैं टीम में, 3-4 महिलाएं होती हैं जो सबको इकट्ठा करके समझाया जाता है, उन्हें बार बार ये नंबर बताए जाते हैं, अगर वो संकोच कर रही हैं तो वो चुपके से भी ये नंबर लगा सकती हैं।
0: उनकी पहचान गुप्त रखी जाती
1: है? गुप्त रखी जाती है उनकी पहचान, अगर वो ये चाहती हैं कि हमारा नाम नहीं खोला जाए और कार्रवाई की जाए तो 1090 पे महिलाएं ही फोन उठाएंगी और उनकी भी गुप्त रखी जाएगी पहचान।
0: उनका नाम बाहर नहीं आएगा?
1: नहीं, बाहर नहीं आएगा।
0: हाँ जी। अच्छा, कहा जाता है मैम कि पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को सबसे ज्यादा समझते हैं पुरुषों से, लेकिन आप पुरुषों को मानती है कि अशिक्षा को मानती है, किस चीज को सबसे अधिक समस्या में?
1: समस्या तो ज्यादातर अशिक्षा का है, जहाँ भी शिक्षित होते हैं, जैसे हम कॉलेज स्कूल में जाते हैं वहाँ इतनी पीड़ित महिलाएं नहीं दिखती जितना कि गांव घरों में जाकर के जो पुरानी महिलाएं हैं वो बिचारी सहन कर रही हैं, अपने पति शराब पी के मारता है वो भी सहन कर रही हैं, और जो आजकल की महिलाएं हैं जो स्कूल में पढ़ने गई हैं बच्चियां, वो ये सहन नहीं करती हैं, इसलिए हम शिक्षा को ही ज्यादातर वो माने।
0: मतलब आप मानती हैं कि शिक्षा बहुत जरूरी है
1: बच्चियों के लिए, तभी तो ये नारी पढ़ाओ नारी बढ़ाओ।
0: और आजकल तो बेटियां हर क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर रही हैं।
1: जी हाँ,
0: क्षेत्र की बात कर लीजिए तो एक बेहतर समाज के लिए आप क्या सलाह देंगे, कैसे बेहतर समाज को बनाया जा सकता है, इसके लिए महिलाओं को कितना होगा?
1: महिलाओं को एक शक्ति की तरह काम करना पड़ेगा, जिसके लिए ही नारी शक्ति कहते हैं ना, वो अपनी शक्ति दिखानी होगी, और अपनी बच्चियों को खुद नहीं पढ़ पाई तो अपनी बच्चियों को पढ़ाना होगा।
0: आज का जो डिजिटल युग है उसमें आप क्या कहेंगे? आज भी आप मानती है कि भले ही हम लोग इतना पढ़ लिख गए, इतना बढ़ गए, लेकिन फिर भी महिलाओं का शोषण हो रहा है?
1: जी हाँ बिल्कुल, ये सही बात है कि जहाँ गांव में
0: नहीं, गांव नहीं, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, सामाजिक रूप से आप ले लीजिए, आज भी आप मानती है कि वो बात नहीं है, मतलब जैसे बराबरी का दर्जा उन्हें दिया जाता है वो हक अभी तक नहीं मिल पाया है?
1: जी हाँ, जिसके लिए सरकार भी कर रही है काम,
0: लेकिन सबसे बड़ी पहल तो खुद महिलाओं को
1: करनी पड़ेगी। ये हाँ, महिलाओं को, बच्चियों को अपने आप में शक्ति करनी पड़ेगी, अपने आप को जागरूक करना पड़ेगा। प्रत्येक घर में महिलाएं हैं, महिलाएं खुद जागरूक होंगी, अपनी बच्चियों को जागरूक करेंगी, जिससे समाज में बहुत बेहतर होगा।
0: आप मानती है ना कि एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए महिलाओं की सबसे बड़ी भूमिका रहती है, क्योंकि है ना कि एक माँ अच्छे समाज का निर्माण करने वाली होती है। अच्छा मैम, अब आपके लिए एक सवाल है कि आप दिन रात फील्ड में रहती हैं या कहीं क्षेत्र में रहती हैं, तो आप कैसे सामंजस्य बिठा पाती हैं अपने कर्तव्य के प्रति और घर परिवार की जो जिम्मेदारियां आपके ऊपर होती हैं, तो उसमें कहीं कोई द्वंद का तो नहीं आ जाता बीच में, कैसे एडजस्ट कर पाती
1: हैं? जी नहीं, बहुत अच्छे से मैनेज हो रहा है सर, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। टाइम से अपना घर का काम भी खत्म करना है, अपनी ड्यूटी भी निभानी है, उसके बाद फिर जाके अपने बच्चों को भी संभालना है, ये सब किया जाता है।
0: मैं तो आप लोगों के जज्बे को सलाम करता हूँ, आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात पूरी कर्तव्य परायणता के साथ काम करते हैं और परिवार की जिम्मेदारी संभालते हैं, तो आप लोगों से तो लोगों को प्रेरणा ले लीजिए। लेकिन अंत में चलते चलते आप हमारी जो बच्चियां हैं, जो महिलाएं हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहिए?
1: मैं बस यही कहूंगी कि आप सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास रखें, अपनी बच्चियों को बाहर जाने दें, पढ़ाई कराएं, अच्छे से पढ़ाएंगी लिखाएंगी तो नए समाज का निर्माण होगा।
0: चलिए मैम, आपने इतना बेस्टिमेटी समय अपनी बेटी के समय कर्तव्य के बीच निकाला हमारे लिए, उसके लिए आपका सही रूप से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो साथियों, महिलाओं के उत्थान के लिए हमारी सरकार द्वारा मिशन शक्ति के अंतर्गत जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनके विषय में माधुरी शर्मा जी ने बहुत ही उपयोगी जानकारियां दी। उम्मीद है इन जानकारियों से हमारी माताएं बहनें और इस

स्कूल जाने वाली बच्चियों में एक नई चेतना का संचार होगा। और आपको चलते चलते बता दें कि प्रसूति फस्टूला दिवस भी आज है। यह दिवस दुनिया भर में सुरक्षित प्रसव और समय पर उचित चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने पर बल देता है, और इसका उद्देश्य पीड़ित महिलाओं को इस दर्दनाक समस्या से मुक्ति दिलाना है और उनका सम्मानजनक पुनर्वास करना है, साथ ही इस बीमारी को पूरी तरह से समाप्त करना है। तो साथियों, तमाम तरह की हमने जानकारियां दे दी, काम की बातें हो गई, महिला सशक्तिकरण के लेकर उनकी जो आजकल की जो प्रसूति फस्टूला दिवस के रूप में, तो अब समय है एक मनोरंजन का, एक यानी कि एक लोकगीत सुनने का। तो आइए आप सुनते हैं एक लोकगीत।

साथियों, जब मानसून आते हैं, आसमान में काले बादल उमड़ते घुमड़ते हैं और बिजली कड़कती है, तो तपती मिट्टी पर सीधे उम्मीदों की बारिश हो जाती है। और जब ये आसमानी अमृत खेतों में बरसता है या कहीं की गिरता है, तो धान, मक्का, गन्ना या जो भी सूखी फसलें होती हैं, उन्हें एक नया जीवन या कहें कि एक संचार सा मिल जाता है। और जानते हैं, ये मानसून केवल प्यासे खेतों को ही नहीं सींचते, बल्कि पाताल तक सूख चुके कुओं और ट्यूबवेलों को भी पानी से लबालब भर देते हैं। तो चलिए, आज हम अपनी चौपाल में डॉक्टर नीलेश शर्मा से जानते हैं हमारे भारतीय खेती बाड़ी में मानसून के महत्व के विषय में।

नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलेश शर्मा। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। भारतीय खेतीबाड़ी में मानसून के महत्व को समझने के लिए पहले हमें भारतीय खेतीबाड़ी यानी भारतीय कृषि को समझना पड़ेगा। आज भी भारत की आधी से ज्यादा आबादी, अगर आंकड़ों की बात करें तो 54.6% आबादी का प्राथमिक व्यवसाय कृषि ही है, और ग्रामीण क्षेत्रों में यह आंकड़ा 70% के आसपास का है, या यूं कहे कि कृषि ही इन लोगों का जीवन का आधार है। और अगर किसान की बात करें तो भारत में लगभग 86% किसान ऐसे हैं जो कि छोटे या मध्यम किसान की श्रेणी में आते हैं। किसान भाइयों, छोटे किसानों से मतलब मेरा यह है कि वे किसान जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर की जमीन अर्थात लगभग 2.5 एकड़ से 5 एकड़ तक की कृषि भूमि उपलब्ध है, उन किसानों को हम छोटे किसान की श्रेणी में रखते हैं। वहीं मध्यम किसान से मेरा मतलब उन किसानों से है जिनके पास 1 हेक्टेयर या 2.5 एकड़ से भी कम कृषि भूमि की उपलब्धता है। ऐसे किसान के पास भूमि कम होने के साथ साथ इनकी मुख्य समस्या यह भी है कि इनके पास लगभग 52% ऐसे किसान हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ मानसून में होने वाली वर्षा पर ही निर्भर करते हैं। मतलब साफ है कि भारत की आधी से ज्यादा आबादी केवल कृषि पर निर्भर करती है, और दूसरी तरफ ये जो आधी आबादी जो कृषि वाले हैं, इनके आधे से भी आधे में कृषि केवल मानसून पर निर्भरता होती है। और जहाँ तक कि भोजन की आवश्यकता है तो पूरे भारत को भोजन की आवश्यकता है, और साथ ही भारत हम बहुत सारा खाद्यान्न विदेशों में भी निर्यात करता है। अर्थात जब मानसून में अनियमितता होती है तो उसका सीधा प्रभाव किसान के जीवन पर तो पड़ता ही है, साथ ही भारत की अर्थव्यवस्था और पूरी आबादी पर भी पड़ता है, और इसलिए मानसून का महत्व और बढ़ जाता है, और इसीलिए भारतीय कृषि को मानसून का जुआ भी कहते हैं। किसान भाइयों, जुआ इसलिए है कि अगर मानसून अच्छा आता है तो पूरा भारत की अर्थव्यवस्था, किसान सभी का पेट भरता है, और अगर मानसून नहीं आता है तो पूरे भारत की अर्थव्यवस्था और किसान और भुखमरी देखने को मिलती है। प्यारे किसान भाइयों, मानसून की अगर हम बात करते हैं तो भारत में 2 प्रकार के मानसून आते हैं। पहला दक्षिण पश्चिम मानसून जो कि जून से सितंबर तक रहता है, और दूसरा उत्तर पूर्वी मानसून जो कि अक्टूबर से दिसंबर तक रहता है। इनमें से भारत में सबसे अधिक वर्षा लगभग 75 से 80% तक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, और उत्तर पूर्व मानसून से लगभग 20 से 25% तक की वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में 1 जून को केरल तट से प्रवेश करता है और लगभग 1 महीने के अंदर अंदर पूरे भारत में फैल जाता है। वहीं उत्तर पूर्वी मानसून भारत में स्थलीय क्षेत्रों में प्रवेश करता है और बंगाल की खाड़ी की ओर भी बहता है। कुछ वर्षा वेस्टर्न डिप्रेशन, जिसको हम पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, उसके कारण भी अक्टूबर से दिसंबर के महीने में वर्षा होती है। यदि मानसून सही समय पर आता है और सामान्य वर्षा होती है, तब किसान जो फसल लगाता है, जिसे हम खरीफ की फसल कहते हैं, जैसे कि धान, गन्ना, मक्का, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, मूंगफली, दालें और विभिन्न प्रकार की सब्जियां, जैसे कि कद्दू वर्गीय सब्जियां, पत्ती वाली सब्जियां, टमाटर, बैंगन, मिर्च, भिंडी, जो बहुत ही मुख्य फसलें हैं, इसके साथ ही गोवंश के लिए चारा आदि, सभी उस मानसूनी वर्षा के बिना संभव नहीं है। अर्थात यदि मानसून सही समय पर आता है और सामान्य वर्षा होती है तो उससे कृषि उत्पादन बढ़ेगा, किसानों की आय बढ़ेगी, खाद्यान्न भंडारण भी मजबूत होगा, ग्रामीणों को रोजगार भी मिलेगा, कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, भूमि जल भी बढ़ेगा। और यदि मानसून कमजोर या अनियमित रहता है, उससे किसान भाइयों सूखे की समस्या भी पड़ सकती है, बाढ़ की समस्या भी आ सकती है, कृषि उत्पादन में कमी आएगी, पशुओं के लिए चारे की कमी आएगी, किसानों की आर्थिक स्थिति कमजोर होगी, और उसका प्रभाव कहीं ना कहीं भारत की कृषि अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा। अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो मानसून से सामान्य वर्षा इसलिए भी बहुत आवश्यक है कि भारत के लगभग 60 से 65% किसान की सिंचाई का मुख्य स्रोत नलकूप और कुएं हैं, और इसी मानसून की वजह से भूजल स्तर बढ़ता है और कुओं में भी पानी पहुंचता है। अगर मानसून सही नहीं आता है या मानसून में सही वर्षा नहीं होती है तो भूजल स्तर काफी नीचे गिरता है, जिसके कारण यही किसान जिसको हम बात कर रहे हैं कि 60 से 65% तक किसान सिंचाई के लिए जूझेंगे। वहीं भारत के लगभग सभी प्रमुख जलाशय, बांध और नदियां भी इसी मानसून में भरती हैं, जिसे किसान अपनी खेती बाड़ी में भी उपयोग

0: करता है। साथ ही जब मानसून से जलाशय, बांध और नदियां भरती हैं तो उसके कारण भारत जल विद्युत उत्पादन भी करता है। भारत के कई बड़े प्रमुख बांध हैं, जैसे कि भाखड़ा नागल बांध, इंदिरा गांधी बांध, इनसे बहुत ज़्यादा मात्रा में विद्युत उत्पादन की जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि मानसून केवल खेतीबाड़ी के लिए ही नहीं बल्कि पूरे पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण है। जब मानसून आता है तो केवल खेती ही नहीं, जितने भी हमारे नेशनल पार्क हैं, जितने भी हमारी सेंचुरी हैं, उन सभी पेड़ पौधों को भी मानसून की वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके अलावा जितने भी जीव जंतु हैं जो जंगलों में रह रहे हैं, वो भी मानसून की वर्षा पर ही निर्भर करते हैं। किसान भाइयों, हाल ही के वर्षों में जलवायु परिवर्तन के कारण मानसून का स्वरूप बदल रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार कई बार कम समय में भी अधिक वर्षा हो जाती है, जिसके कारण कई राज्यों में बाढ़ और अनियमितता देखी गई है। वहीं दूसरी ओर कई राज्यों में लंबे समय तक वर्षा ही नहीं होती है, जिसके कारण वहाँ सूखा देखने को मिलता है। और इसी असंतुलन से निपटने के लिए आज किसान भाइयों, यह आवश्यक है कि हम जितना ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं, वर्षा जल का संचयन करें, तालाबों की साफ सफाई करें और वहाँ पर वर्षा जल का संचयन करें, सिंचाई में ड्रिप और स्प्रिंकल जैसी विधियों का उपयोग करें, फसलों में सूखा सहनशील किस्मों का भी प्रयोग करें, फसल विविधीकरण पर ध्यान दें और जल संरक्षण अभियान को बढ़ावा देने का काम भी करना चाहिए। किसान भाइयों, सरकार द्वारा किसानों के लिए कई योजना चलाई जा रही है, जैसे कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसमें सरकार माइक्रो इरिगेशन जैसे कि ड्रिप और स्प्रिंकल इरिगेशन विधियों के लिए सरकार सब्सिडी पर यह प्रोवाइड करती है या उपलब्धता कराती है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी एक योजना है सरकार की तरफ से, और इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य भारतीय खेतीबाड़ी को मानसून की अनिश्चितताओं से सुरक्षित करना है। अंत में बस यही कहना चाहूँगा कि मानसून भारतीय खेतीबाड़ी का आधार है और वह किसानों की जीवन रेखा भी है, और भारत के 140 करोड़ लोगों के पेट की आग बुझाने का रास्ता भी इसी मानसून पर टिका हुआ है। इसलिए वर्षा जल की एक एक बूंद का सही उपयोग करना हमारा कर्तव्य नहीं अभी तो हमारा धर्म भी है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।
1: भारतीय खेतीबाड़ी में मानसून की भूमिका या कहें कि उसका महत्व, अभी इस विषय में बड़ी ही उपयोगी जानकारी दे रहे थे डॉक्टर नीलेश शर्मा।
2: अरे राहुल, ये जूट का बैग और हाथ में मोबाइल, तुम्हारी पुरानी आदतें कहाँ गई?
3: अमित भाई, मैंने पर्यावरण को बचाने का रेलवे के साथ संकल्प लिया है, नो सिंगल यूज प्लास्टिक।
2: और ये टिकट का कागज कहाँ है?
3: कागज का जमाना गया, अब मैं अपनाता हूँ डिजिटल टिकटिंग। रेल वन ऐप से पेपरलेस यात्रा, समय की बचत और पेड़ों की सुरक्षा।
4: इस पर्यावरण दिवस उत्तर मध्य रेलवे का साथ दें, प्लास्टिक छोड़ें, जूट के बैग अपनाएं और डिजिटल टिकटिंग के लिए रेल वन ऐप का उपयोग करें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
1: दोस्तों, अभी हम बात कर रहे थे मानसून की, चलिए अब बात कर लेते हैं तापमान की। तो साथियों, बीते हुए 24 घंटों में आगरा और उसके आसपास का तापमान रहा 43 डिग्री सेल्सियस, जो कि अधिकतम रहा। वहीं न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया 29 डिग्री सेल्सियस। और आगामी 24 घंटों के बारे में अनुमान है कि अधिकतम तापमान रहेगा 44 डिग्री सेल्सियस, तो वहीं न्यूनतम तापमान के 32 डिग्री सेल्सियस बने रहने की संभावना है। तो इस बढ़ती हुई गर्मी को देखते हुए जो भी ज़रूरी एहतियाती उपाय हों वो ज़रूर करें, अपने पशुओं का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें। और इसी से जुड़ा हुआ एक हम आपको लोकगीत सुनवाते हैं और उसका आनंद लीजिए।

साथियों, आपको ये लोकगीत सुनवाने का उद्देश्य यही है कि इसमें जो जो बातें बताई हैं हमारे जो गायक कलाकार भाई थे उन्होंने, वो सब आप उनका सेवन कीजिए और गर्मी से अपना बचाव कीजिए। और अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, तो अपने साथी देवेंद्र को आज्ञा दीजिए। राम राम।

अभी हमारे ग्रामीण अंचल के साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम ग्रामीलोक। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। 6:30 हो चुके हैं, आइए सुनते हैं श्रमिक साथियों का दैनिक कार्यक्रम मजदूर मंडल।

कार्यक्रम मजदूर मंडल सुनने वाले हमारे सभी श्रमिक भाई बहनों को आपके रेडियो साथी रिंकू चौरसिया का प्यार भाया नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने खास कार्यक्रम मजदूर मंडल में। तो साथियों, कैसे हैं आप सब भाई? आजकल गर्मी तो बहुत ही ज़्यादा पड़ रही है, तो ऐसे में आप अपना और अपने परिवार का अच्छे से ख्याल तो रख रहे हैं ना? क्योंकि भाई हम सभी के लिए अपना परिवार ही सब कुछ होता है। अगर वे स्वस्थ होते हैं, खुश होते हैं, तो उसी में हमारी खुशी होती है और तब हम अपने कामों को और ज़्यादा खुश होकर और बेहतर तरीके से कर पाते हैं। और वहीं साथियों, श्रमिक भाइयों की बात करें तो उनके बारे में तो हम सभी जानते ही हैं कि वे अपने काम से कहीं पीछे नहीं हटते। भले ही कितनी गर्मी पड़ती रहे, हमारे श्रमिक भाई रोज़ की तरह हमेशा अपने काम को बड़े ही लगन और मेहनत के साथ करते हैं, जैसा कि आमतौर पर हम देख भी पाते हैं उनकी मेहनत को।

साथियों, वाकई में हमारे श्रमिक भाई बहन हमारे देश का अभिन्न हिस्सा माने जाते हैं, जिन्हें कभी अलग नहीं माना जा सकता। और इसका एक बड़ा कारण है कि वे हमारे जो श्रमिक भाइयों का देश के प्रति उनका योगदान है वो वाकई में बहुत ही ज़्यादा रहता है। चाहे फिर वे खेतों में मेहनत करने वाले किसान मजदूर हों, या सड़क भवन निर्माण या कारखाने फैक्ट्री आदि में काम करने वाले कर्मचारी, या फिर कोई सफाई कर्मी ही क्यों ना हो, ये सभी हमारे समाज व देश की रीढ़ हैं, जिनके बिना देश की प्रगति की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन साथियों, दुख की बात तो ये है कि जो लोग अपने कठिन परिश्रम से देश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, वही लोग अक्सर शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधा से वंचित रहकर अक्सर आर्थिक तंगी जैसी समस्या से दो-चार होते रहते हैं, जो कि चिंता की बात है। साथियों, शिक्षा हर व्यक्ति का अधिकार है। शिक्षा केवल पढ़ना लिखना ही नहीं बल्कि समाज में रहते हुए सही गलत की पहचान कराती है। इसी के साथ आत्मविश्वास को बढ़ाकर जीवन को बेहतर भविष्य का मार्ग दिखाती है। लेकिन साथियों, कई बार हमने देखा होगा कि हमारे श्रमिक भाई बहन शिक्षित ना होने की वजह से कई सारे छोटे मोटे कामों के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, जिसके चलते वे कई बार धोखाधड़ी का शिकार तक हो जाते हैं, जो कि केवल शिक्षा के अभाव के चलते होता है। और साथियों, इसी अभाव के चलते कई श्रमिक परिवार अपने छोटे छोटे बच्चों को किसी कारखाने फैक्ट्री या किसी दुकान पर काम करने के लिए भेज देते हैं, जिसके कारण वे शिक्षा से दूर हो जाते हैं। और कई बच्चे तो स्कूल छोड़कर मजदूरी करने को मजबूर होते हैं, जो कि बहुत ही दुखद बात है साथियों। क्योंकि साथियों, ये केवल उन बच्चों को नुकसान नहीं बल्कि देश के भविष्य का नुकसान होता है। और इस बात को हम सभी को समझना होगा और लोगों को समझाना होगा कि शिक्षित श्रमिक केवल मेहनत ही नहीं करते बल्कि समझदारी और तकनीक के साथ काम करके वह अपने साथ साथ अपने समाज व देश को भी प्रगति की ओर आगे ले जाते हैं। इसलिए साथियों, आज के समय में हमारे श्रमिक भाई बहनों को शिक्षित होना बेहद ज़रूरी है। अगर वे शिक्षित होंगे तो अपने अधिकारों को भी वे अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और अपने साथ साथ अपने बच्चों का भविष्य भी बना पाएंगे। क्योंकि साथियों, आज का समय आधुनिक युग का है, जहां हर रोज नई नई मशीनों और तकनीकों का उपयोग बढ़ता जा रहा है। ऐसे में हमारे श्रमिक भाई बहन शिक्षित नहीं होंगे तो कैसे वे इन नई तकनीकों को समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। इसलिए साथियों, हमारे श्रमिक भाई बहनों को समय के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा, जिसके लिए सबसे पहले उनका शिक्षित होना बेहद ज़रूरी है। और अब तो साथियों, सरकार द्वारा भी हमारे श्रमिक भाई बहनों के लिए और उनके बच्चों के लिए कई सारी योजनाएं चलाई हैं, जिसमें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, मध्याह्न भोजन योजना, छात्रवृत्ति योजना, श्रमिक बच्चों के लिए विशेष विद्यालय, कौशल विकास जैसी कई सारी योजनाएं हैं, जिनका उद्देश्य यही है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रह पाए। और साथ ही ये तभी संभव हो सकेगा जब हम सब भी इस ओर जागरूक होंगे। इसलिए साथियों, हम सभी को श्रमिक भाई बहनों का सम्मान करते हुए उन्हें और उनके बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करना होगा, जिससे वे शिक्षित होकर अपने परिवार, समाज व देश का नाम रोशन कर सकें। और चलिए साथियों, इसी चर्चा के साथ अब हम आपसे पूछ लेते हैं आज का प्रश्न। साथियों, आज का प्रश्न है कि कई सारे काम को एक साथ करने वाले उपकरण यानी कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। साथियों, इस प्रश्न का जवाब हम आपको अपने इस कार्यक्रम के मध्य में देंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और आनंद लीजिए इस मधुर गीत का।

साथियों, जिस तरह से हम जानते हैं कि हमें हमारा भोजन हमारे शरीर को शक्ति देता है, उसी प्रकार पुस्तकें हमारे मन को और बुद्धि को ज्ञान प्रदान करती हैं। और इसीलिए आज हम अपने ज्ञान सागर सेगमेंट में बात करने वाले हैं भारत की एक ऐसी सबसे बड़ी लाइब्रेरी यानी कि राष्ट्रीय पुस्तकालय के बारे में, जिसे ज्ञान प्राप्त करने का मंदिर माना जाता है। साथियों, हम बात कर रहे हैं भारत की सबसे बड़ी लाइब्रेरी की, जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में स्थित है। साथियों, ये पुस्तकालय भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक पुस्तकालय माना जाता है, जो कि अपने विशाल संग्रह और इतिहास महत्व के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। यहाँ लाखों की संख्या में कई तरह की पुस्तकों का विशाल संग्रह है, जिसमें इतिहास, विज्ञान, गणित, साहित्य कला, संस्कृति और तकनीक से जुड़ी अनगिनत पुस्तकें मौजूद हैं। इसी के साथ यहाँ जो विद्यार्थी, शिक्षक, शोधकर्ता और लेखक अध्ययन करने के लिए आते हैं, उनके लिए अनेक भाषाओं की पुस्तकें जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, बंगाली आदि कई अन्य भाषाओं की लाखों पुस्तकें यहाँ उपलब्ध रहती हैं। इसी के साथ भारत के इतिहास को समझने के लिए यहाँ पुराने समय की दुर्लभ पांडुलिपियाँ और अखबार भी सुरक्षित रखे गए हैं, जिससे देश विदेश से आने वाले लोग भी अपने भारत के इतिहास को जान सकें। क्योंकि साथियों, इस राष्ट्रीय पुस्तकालय का मुख्य उद्देश्य ही यही है कि यहाँ आने वाला हर एक व्यक्ति तक शिक्षा और ज्ञान का भंडार पहुँच सके। साथियों, यह पुस्तकालय भवन बहुत ही भव्य, सुंदर और ऐतिहासिक है, जो कि 30 एकड़ में फैला हुआ है, जिसके चारों ओर हरियाली और शांत वातावरण होने के कारण अध्ययन करने वालों के लिए सबसे सर्वोत्तम स्थान माना जाता है, जहाँ आकर लोगों को अच्छा भी महसूस होता है। साथियों, इसके इतिहास के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना मूल रूप से 21 मार्च 1836 को कलकत्ता

0: सार्वजनिक पुस्तकालय के रूप में हुई थी। बाद में 1948 में इसे इंपीरियल लाइब्रेरी के रूप में विलय कर दिया गया और 1 फरवरी 1953 को इसे औपचारिक रूप से राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। इस पुस्तकालय का मुख्य कार्य साथियों भारत में प्रकाशित होने वाली हर किताब, समाचार पत्र और पत्रिका की एक प्रति को सुरक्षित और संरक्षित रखना है, जिसका संचालन का कार्य भारत सरकार और संस्कृति मंत्रालय करती है। साथियों पुस्तकें मानव जीवन को ज्ञान, संस्कार, प्रेरणा और सही दिशा देकर धन्य बनाती हैं और जहाँ इस तरह के पुस्तकालय होते हैं वहाँ शिक्षा, सभ्यता और प्रगति का विकास होता है। इसलिए कहा जाता है कि जिस घर और समाज में पुस्तकें होती हैं वहाँ ज्ञान का उजाला कभी कम नहीं होता। और चलिए साथियों इसी चर्चा के साथ दिए देते हैं आपको आज के प्रश्न का जवाब। साथियों आज का प्रश्न था कि कई सारे काम एक साथ करने वाले उपकरण यानी कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, जिसका जवाब है चार्ल्स बैबेज ने। जी हाँ साथियों, चार्ल्स बैबेज को ही कंप्यूटर का जनक माना जाता है, जिन्होंने एक मशीन का डिजाइन बनाया जिसे एनालिटिक इंजन कहा गया। यह एक ऐसी मशीन थी जो गणना कर सकती थी और निर्देशों के अनुसार काम कर सकती थी, जो कि आधुनिक कंप्यूटर की नींव बनी। साथियों ये खोज मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोज साबित हुई, जिसका उपयोग आज सारी दुनिया कर रही है, जिसने इंसान के काम करने, सीखने, सोचने और जानकारी साझा करने के तरीकों को पूरी तरह बदल कर रख दिया। साथियों वैज्ञानिक द्वारा इस तरह की खोज कोई आखिरी खोज नहीं थी, इसके बाद तो वैज्ञानिकों द्वारा कई सारी खोज होती रही और आज भी हर दिन कोई ना कोई नई खोज हमारे वैज्ञानिकों द्वारा होती रहती है। और वहीं साथियों बात करें हमारे श्रमिक भाइयों की, तो उनके लिए भी विज्ञान और नई तकनीक ने उनके काम को अधिक सुरक्षित, आसान और सुविधाजनक बनाने के लिए कई सारी नई खोज और उपकरण विकसित किए हैं, जिनमें से स्मार्ट मास्क आज के समय में हमारे श्रमिक भाइयों के लिए एक महत्वपूर्ण खोज माना जा रहा है, जो कि साधारण मास्क से कई अधिक सुरक्षित और उपयोगी माना जाता है। ये मास्क एक ऐसा आधुनिक मास्क होता है जिसमें विशेष फिल्टर और नई तकनीक का उपयोग किया जाता है, जो कि धूल, धुआं, जहरीली गैसों और प्रदूषण से बचाने में हमारी मदद करता है। इसी के साथ कुछ स्मार्ट मास्क में सेंसर भी लगे होते हैं जो हवा की गुणवत्ता और सांस लेने की स्थिति की जानकारी देते रहते हैं। ये मास्क उन सभी श्रमिकों के लिए उपयोगी होते हैं जो खास तौर पर फैक्ट्री, खदानों और निर्माण कार्य आदि में काम करते हैं। साथ ही इस तरह के मास्क में एक एयर सिस्टम लगे होते हैं, जिसमें मास्क में लगे होने की वजह से उन्हें ताज़ी हवा मिलती रहती है और गर्मी भी कम लगती है, और इसे लगाने के बाद तो श्रमिक भाई लंबे समय तक काम भी कर सकते हैं। तो साथियों ये तो थी हमारे श्रमिक भाइयों के लिए वैज्ञानिकों द्वारा की गई एक नई खोज, जिसको लगाकर वे अपने काम को और भी आसान बना सकते हैं। और साथियों अब समय एक विराम का, जल्द हाजिर होते हैं।
1: अरे राहुल, ये जूट का बैग और हाथ में मोबाइल, तुम्हारी पुरानी आदतें कहाँ गई?
2: अमित भाई, मैंने पर्यावरण को बचाने का रेलवे के साथ संकल्प लिया है, नो सिंगल यूज प्लास्टिक।
1: और ये टिकट का कागज कहाँ है?
2: कागज का जमाना गया, अब मैं अपनाता हूँ डिजिटल टिकटिंग, रेल वन ऐप से पेपरलेस यात्रा, समय की बचत और पेड़ों की सुरक्षा।
3: इस पर्यावरण दिवस उत्तर मध्य रेलवे का साथ दें, प्लास्टिक छोड़ें, जूट के बैग अपनाएं और डिजिटल टिकटिंग के लिए रेल वन ऐप का उपयोग करें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
0: साथियों जैसा कि हमने शुरुआती चर्चा में बात की थी शिक्षा की, उसके महत्व की, और जाना कि शिक्षा हर एक व्यक्ति के लिए क्यों ज़रूरी है और किस तरह से शिक्षित होकर वे अपने जीवन को बदल सकते हैं। लेकिन साथियों आज के समय में कुछ ऐसे परिवार भी होते हैं जो थोड़े से पैसों के लिए अपने बच्चों को बाल श्रम कराने के लिए मजबूर करते हैं, जिससे उन बच्चों का भविष्य अंधकार की ओर चला जाता है। साथियों ऐसा करना किसी अपराध से कम नहीं होता और इस बात को हम सभी को समझना बहुत ज़रूरी है। तो साथियों बाल श्रम किस तरह से समाज व देश के लिए नुकसानदायक है और कैसे उन बच्चों को अंधेरे में जाने से रोका जा सकता है, आइए जानते हैं आज की इस वार्ता में। वार्ता का नाम है बाल श्रम एक सामाजिक अपराध, जिसके वार्ताकार हैं बनवारी लाल कुशवा।
4: बाल श्रम मानवता का अपराध है जो समाज के लिए एक अभिशाप बन गया है और देश के विकास और विकास को रोकने वाले बड़े मुद्दे हैं। बचपन हर एक के जीवन का सबसे खुशनुमा और जरूरी अनुभव माना जाता है, क्योंकि बचपन बहुत जरूरी और दोस्ताना समय होता है सीखने का। अपने माता पिता से बच्चों को पूरा अधिकार होता है, बच्चों को दोस्तों के साथ खेलने, स्कूल जाने, माता पिता के प्यार

और देखभाल को महसूस करने और प्रकृति की सुंदरता को छूने का पूरा अधिकार है। बाल मजदूरी हर दिन न जाने कितने अनमोल बच्चों का जीवन बिगाड़ रहा है। ये बड़े स्तर का गैर कानून कृत्य है जिसके लिए सजा होनी चाहिए, लेकिन अप्रभावी नियम कानूनों से ये हमारे आसपास चलता रहता है। समाज से इस बुराई को जड़ से मिटाने के लिए कुछ भी बेहतर नहीं हो रहा है। कम आयु में उनके साथ क्या हो रहा है इस बात का एहसास करने के लिए बच्चे बेहद छोटे, प्यारे और मासूम हैं। वो इस बात को समझने में असमर्थ होते हैं कि उनके लिए क्या गलत और गैर कानूनी है। बजाय इसके बच्चे अपने कामों के लिए छोटी कमाई को पाकर खुश रहते हैं। अनजाने में वो रोजाना की तरह अपनी छोटी कमाई में रुचि रखने लगते हैं और अपना पूरा जीवन और भविष्य इसी से चलाते हैं। बचपन जीवन का सबसे यादगार दौर है जिसे हर किसी को जन्म से जीने का अधिकार है। देश के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए अपने बच्चों को हर पहलू में स्वस्थ बनाने की आवश्यकता है। माता पिता को परिवार की सारी जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए और अपने बच्चों को बहुत प्यार और देखभाल के साथ अपने बचपन को जीने देना चाहिए। दुनिया भर में बाल श्रम के मुख्य कारण गरीबी, माता पिता, समाज, कम वेतन, बेरोजगारी, खराब जीवन स्तर और सामाजिक अन्याय, पिछड़ापन, अप्रभावी कानून हैं जो देश के विकास को सीधे प्रभावित कर रहे हैं। बाल मजदूरी इंसानियत के लिए अपराध है जो समाज के लिए श्राप बनता जा रहा है तथा जो देश की वृद्धि और विकास में बाधक के रूप में बड़ा मुद्दा है। वास्तव में हर माता पिता को ये समझना चाहिए कि देश के प्रति भी उनकी कुछ जिम्मेदारी है। देश के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए उन्हें अपने बच्चों को हर तरह से स्वस्थ बनाना चाहिए। माता पिता को परिवार की जिम्मेदारी खुद से लेनी चाहिए तथा अपने बच्चों को उनका बचपन प्यार और अच्छी परवरिश के साथ जीने देना चाहिए। 5 साल से 14 साल तक के बच्चों का अपने बचपन से ही नियमित काम करना बाल मजदूरी कहलाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में अपने माता पिता द्वारा कृषि में शामिल 5 साल से 14 साल तक के ज्यादातर बच्चे पाए जाते हैं, जबकि बच्चे नए फूल की शक्तिशाली खुशबू की तरह होते हैं। कुछ लोग थोड़े से पैसों के लिए गैर कानूनी तरीके से इन बच्चों को बाल मजदूरी के कुएं में धकेल देते हैं, साथ ही देश का भविष्य भी बिगाड़ देते हैं। विकासशील देशों में बच्चे जीवन जीने के लिए बेहद कम पैसों पर अपनी इच्छा के विरुद्ध जाकर पूरे दिन कड़ी मेहनत करने के लिए मजबूर हैं। वो स्कूल जाना चाहते हैं, अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहते हैं और दूसरे अमीर बच्चों की तरह अपने माता पिता का प्यार और परवरिश पाना चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश उन्हें अपनी हर इच्छाओं का गला घोंटना पड़ता है। बाल मजदूरी भारत में बड़ा सामाजिक मुद्दा बनता जा रहा है जिसे नियमित आधार पर हल करना चाहिए। ये केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि इसे सभी सामाजिक संगठनों, मालिकों और अभिभावकों द्वारा भी समाधित करना चाहिए। ये मुद्दा सभी के लिए है जो कि व्यक्तिगत तौर पर सुलझाना चाहिए, क्योंकि ये किसी के भी बच्चे के साथ हो सकता है। बाल मजदूरी से बच्चों को बचाने की जिम्मेदारी देश के हर नागरिक की है। ये एक सामाजिक समस्या है जो लंबे समय से चल रही है और इसे जड़ से उखाड़ने की जरूरत है। हमें बाल श्रम का अंत करने के लिए सबसे पहले अपने घरों, दफ्तरों में किसी भी बच्चे को काम पर नहीं रखना चाहिए। बाल श्रम को समाप्त करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी सोच को बदलना होगा। बाल श्रम को रोकने के लिए मजबूत और कड़े कानून बनाने चाहिए जिससे कोई भी बाल मजदूरी करवाने के लिए डरे। अगर आपके सामने कोई भी बाल श्रम का मामला आए तो सबसे पहले नज़दीकी पुलिस स्टेशन में खबर करनी चाहिए। हमें बाल श्रम को पनाह देने वाले पत्थर दिलों के विरुद्ध अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए। आम आदमी को भी बाल मजदूरी के विषय में जागरूक होना चाहिए और अपने समाज में इसे होने से रोकना चाहिए। गरीब माता पिता को अपने बच्चों की शिक्षा की ओर पूरा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आज सरकार मुफ्त शिक्षा, खाना और कुछ स्कूलों में दवाइयां जैसी चीज़ों की सुविधाएं प्रदान कर रही है। कारखानों और दुकानों के लोगों को प्रण लेना चाहिए कि वो किसी भी बच्चे से मजदूरी या श्रम नहीं करवाएंगे और काम करवाने वाले लोगों को रोकेंगे। बाल श्रम अधिनियम 1986 के तहत

घरों, होटलों में बाल श्रम करवाना दंडनीय अपराध है। बावजूद इसके लोग बाल श्रम को बढ़ावा देते हैं, हमें इसे रोकना होगा। संयुक्त राष्ट्र की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक विश्व में 21.8 करोड़ बाल श्रमिक हैं, जबकि अकेले भारत में इनकी संख्या 1.5 करोड़ से अधिक है। इस समस्या का समाधान केवल सरकार को ही जिम्मेदारी नहीं, आम आदमी की भी इसमें सहभागिता जरूरी है। आर्थिक रूप से सक्षम प्रत्येक व्यक्ति

0: सरकार इस योजना को सफल बनाने के लिए बहुत प्रयास कर रही है। बाल श्रम एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या है। इस समस्या को सभी के द्वारा जल्द से जल्द समाप्त करने की जरूरत है। बच्चे बहुत कम हैं, लेकिन वे भविष्य के विकासशील देश का सोपान हैं।
1: साथियों, अभी आप सुन रहे थे वार्ता बाल श्रम एक सामाजिक अपराध, जिसके वार्ताकार थे बनवारीलाल कुशवा। और साथियों, इस वार्ता के साथ ही अब बात कर लेते हैं सेहत से जुड़ी जानकारी की। और साथियों, जैसे कि हम जानते ही हैं कि आजकल गर्मी का प्रकोप सातवें आसमान पर है, यानी कि गर्मी अपने चरम पर है। और ऐसे में साथियों, इस तपती गर्मी के कारण हमें कई सारी समस्याएं जैसे पेट में जलन, थकान, कमजोरी और लू लगना आदि कई तरह की समस्या होने लगती हैं। ऐसे में साथियों, इन सभी समस्याओं से बचने के लिए आज हम जो चीज़ बताने जा रहे हैं वो वाकई में इस गर्मी से बचने के लिए असरकारक मानी जाती है। साथियों, हम बात कर रहे हैं कतीरा गोंद की, जिसके कई सारे फायदे माने जाते हैं, जिनमें से कुछ आपके लिए हाजिर हैं। साथियों, इस गर्मी के मौसम में एसिडिटी और पेट की जलन होना आम बात है, जिसमें कतीरा बेहद फायदेमंद माना जाता है। एसिडिटी या पेट में जलन होने पर आप भीगे हुए कतीरे को एक कटोरी मीठे दही या ठंडे दूध में मिलाकर खाएं। ऐसा करने से पेट की गर्मी व जलन तो शांत होगी, साथ ही एसिडिटी में भी तुरंत राहत मिलेगी। और साथियों, इसी के साथ मौसम गर्म है तो ऐसे में साथियों लू लगने पर भी आप कतीरे का जो है प्रयोग कर सकते हैं। अगर किसी को इस तपती गर्मी में लू लग जाए तो साथियों, वे रात को एक छोटा चम्मच कतीरा गोंद एक गिलास पानी में भिगोकर रख दें और सुबह इस भीगे हुए कतीरे को एक गिलास ठंडे पानी में नींबू के रस और मिश्री के साथ मिलाकर पिएं। साथियों, ऐसा करने से आपको लू से राहत मिलेगी, साथ ही धूप का असर भी आप पर कम होगा। लेकिन साथियों, इसके सेवन करने के साथ साथ आपको एक बात जानना बेहद ज़रूरी है कि कतीरा गोंद की तासीर बहुत ठंडी होती है, इसलिए एक दिन में एक या दो चम्मच का ही सेवन करें, इससे ज़्यादा ना करें। इसके खाने के बाद आप खूब सारा पानी पिएं ताकि यह शरीर में अच्छे से पच सके। और यदि आपको कोई गंभीर बीमारी या एलर्जी है तो इसका सेवन करने से पहले आप अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। तो साथियों, ये थी आपकी सेहत से जुड़ी कुछ ज़रूरी बातें जो आपको इस तपती गर्मी से राहत पहुंचाने में आपकी हेल्प करेगी, सहायता करेगी। और साथियों, अब वक्त है आपके मनोरंजन का, तो आइए सुनवाते हैं आपको लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ में ये मधुर गीत।

अभी हमारी श्रमिक साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम मजदूर मंडल। मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7 बजने को हैं। अब आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे हिंदी समाचार, तुरंत बाद सुनिएगा अंग्रेजी समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्क रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापार वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका विश्व कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस दौरान विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। श्री मार्को रूबियो 26 मई को होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। श्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 19वें रोजगार मेले में कहा कि देश ने अपने कर्मयोगियों पर भरोसा जताया है। अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे और मजबूत करें। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। नवनियुक्त 51,000 से भी अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। इसी कार्यक्रम में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार का मुख्य प्रयास भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नए भर्ती हुए लोग 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।
1: विकसित भारत 2047, जब उस गोल, उस विजन को सामने रखते हैं तो हमारा काम भी बड़ा सुगम हो जाएगा। और हिम्मत से काम करें, अच्छा काम करें, बदलाव में पहल करें। जहां जहां कोई चीज में हमारे नई सोच है, नए आइडियाज हैं, अगर हम सब ने नई नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट किया, हम भी अपने आप को रीट्रेन करें, रीस्किल करें, अपग्रेड करें हमारी नॉलेज, और आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यूअस लर्निंग शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ।
0: श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में बुनियादी अर्थव्यवस्था मजबूत और निर्यात में वृद्धि बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के बाद मई माह में भी निर्यात में वृद्धि जारी रही, जो वैश्विक प्रतिकूलताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाती है।

0: नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने किसानों को बढ़ती लागत से बचाने के लिए उर्वरकों की बढ़ती कीमतों का बोझ स्वयं वहन किया है। उन्होंने कहा कि सरकार भव्य योजना के माध्यम से कारोबारी सुगमता के लिए देश भर में 100 औद्योगिक पार्क स्थापित करेगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के दांडेवाला फील्ड में एक नए गैस भंडार का पता लगाया है। श्री पुरी ने कहा कि उथली सानो भौगोलिक संरचना से पहली बार लगभग 25,000 मानक घन मीटर प्रतिदिन की दर से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू ऊर्जा उत्पादन को मजबूत करने में मदद मिलेगी। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू होगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली के जामिया नगर में एक दलित महिला के कथित अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और जबरन धर्म परिवर्तन से संबंधित मीडिया रिपोर्टों का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने दिल्ली पुलिस आयुक्त से 7 दिनों के अंदर विस्तृत कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने आरोपियों की गिरफ्तारी, जांच, पीड़िता की सुरक्षा, परामर्श और पुनर्वास उपायों सहित तत्काल सख्त और समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने केरलम में बुधवार तक अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त करते हुए 9 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मछुआरों को 27 मई तक केरलम, कर्नाटक और लक्षद्वीप के तटवर्ती इलाकों में न जाने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi and US Secretary of State Marco Rubio today discussed sustained progress in the India-US Comprehensive Global Strategic Partnership and issues related to regional and global peace and security. Mr. Rubio called on the Prime Minister Modi at Seva Tirth in New Delhi this afternoon. Mr. Modi said in a social media post that India and the US will continue to work closely for the global good. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar and NSA Ajit Dobhal were also present during the meeting. The Prime Minister's office said in a statement that Secretary Rubio briefed Mr. Modi on the sustained progress in bilateral cooperation across a wide range of sectors including defence, strategic technologies, trade and investment, energy security, connectivity, education and people-to-people ties. Mr. Rubio shared US's perspective on various regional and global issues including the situation in West Asia. The Prime Minister reaffirmed India's consistent support for peace efforts and reiterated the call for peaceful resolution of the conflicts through dialogue and diplomacy. Prime Minister Narendra Modi has emphasized that government jobs serve as a vital means to improve and ease the lives of citizens. He made these remarks while addressing the 19th Rozgar Mela through video conferencing today. The Prime Minister highlighted the world is eager to be part of India's growth journey. He said that the country is also partnering with various countries of the world aimed at providing opportunities, employment and global exposure to the youth of the nation.
2: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
1: द सेंटर हैज आस्क्ड जिमखाना क्लब इन न्यू दिल्ली टू हैंड ओवर इट्स प्रेमिसेस बाय द 5th ऑफ नेक्स्ट मंथ, साइटिंग दैट द लैंड वाज रिक्वायर्ड फॉर स्ट्रेंथनिंग डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर। An order issued by the Land and Development Office under the Housing and Urban Affairs Ministry yesterday stated that the land is essential to fulfill

0: urgent institutional needs, governance, infrastructure, and public interest project. It said the premises located in a highly sensitive and strategic area of Delhi is critically required for the strengthening and securing of defense infrastructure and other vital public security purposes. It further stated that possession shall be taken in accordance with law in the event of non-compliance. Petroleum and Natural Gas Minister Hardeep Singh Puri today informed that Oil India Limited has successfully unlocked a new gas-bearing pay zone in the Dandewala field in Rajasthan. In a social media post, Mr. Puri said that the flow of natural gas for the first time from the Shalwa Shanu formation at nearly 25,000 standard cubic meters per day marks a significant achievement. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal today said India continues to witness strong economic fundamentals and robust export growth amid global turbulence. He said the pace of export growth recorded in April has continued into May, reflecting the resilience of the Indian economy amid global adversities. Briefing media in New Delhi, Mr. Goyal highlighted that government has absorbed the burden of elevated fertilizer prices to protect farmers from rising input costs. The Ayushman Bharat scheme will start in West Bengal from July this year. Chief Minister Shubhendu Adhikari today announced it in Kolkata after a virtual meeting with Union Health Minister J.P. Nadda. The existing beneficiaries under the state health scheme Swasthya Sathi will be incorporated into the Ayushman Bharat scheme. The Memorandum of Understanding in connection with the Ayushman Bharat Arogya Mandir will be signed in June in New Delhi. In wrestling, Indian grapplers Suraj Vashisht and Sagar Singh advanced to the finals of the men's Greco-Roman categories at the Asian Under-23 Wrestling Championships in Da Nang in Vietnam today, assuring India of at least two silver medals. In the 60kg category, Suraj Vashisht edged past Kyrgyzstan's Nuristan to book his place in the final. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:10 हुए हैं। श्रोताओं, वक्त है कार्यक्रम विविधा का। कार्यक्रम विविधा में आइए सुनते हैं वार्ता रहमन पानी राखिए। वार्ताकार हैं डॉक्टर अशोक तिवारी।
2: अकबर के सेनापति अब्दुल रहीम खान खाना अपने नीति संबंधी दोहों के लिए सुविख्यात रहे हैं। रहीम के नाम से वे हिंदी में प्रसिद्ध हैं। उनका एक दोहा है, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न ऊबरें मोती मानस चून। इस दोहे में पानी शब्द का प्रयोग श्लिष्ट अर्थ में किया गया है। इसके तीन अर्थ हैं जो क्रमशः मोती मानस चून के अलग अलग संदर्भ में हैं। मोती के प्रसंग में पानी का अर्थ आभा या चमक है। मोती की चमक गायब होने पर वह मूल्यहीन हो जाता है। मानस या आदमी के संदर्भ में पानी का अर्थ इज्जत आबरू से है। जिस व्यक्ति की इज्जत चली गई उसका सब कुछ नष्ट हो गया। और चून का अर्थ चूना या कलई है जो बिना पानी के किसी काम की नहीं होती। वर्तमान संदर्भ में इस दोहे का अर्थ जल संरक्षण के महत्व को प्रतिपादित करता है। प्रत्येक व्यक्ति को पानी सुरक्षित रखना चाहिए, अन्यथा हमारी भावी पीढ़ियों का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। जल संरक्षण हम सबकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। जल सृष्टि का और हमारे जीवन का मूल तत्व है। कहा गया है कि जल ही जीवन है। इस पृथ्वी का 71% भाग जलाच्छादित है सागरों एवं नदियों के रूप में, किंतु उसमें पीने योग्य जल मात्र 3% ही है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने मेलबोर्न में 2002 में आयोजित पर्यावरण सम्मेलन में विश्व के सभी देशों को चेतावनी दी कि अगले 50 वर्षों में शुद्ध पेयजल दुनिया भर की आबादी को उपलब्ध करा पाना अत्यंत दुष्कर कार्य होगा। इसलिए हमें समय रहते सचेत हो जाना चाहिए तथा जल की प्रत्येक बूंद का संरक्षण करना चाहिए। बढ़ती जनसंख्या, आर्थिक विकास, औद्योगिकरण, नगरीकरण एवं हरित क्रांति के कारण भूमिगत जल स्तर में निरंतर गिरावट हो रही है। आज भी दुनिया के लगभग 100 करोड़ लोग स्वच्छ पेयजल से वंचित हैं। जब तक जल प्रबंधन एवं जल संरक्षण के कारगर उपाय नहीं किए जाते तब तक हम भविष्य में आने वाले जल संकट का प्रभावी सामना नहीं कर सकते।

0: संबंध में हमें जिन बातों पर अविलंब ध्यान देना है वे इस प्रकार हैं: जल प्रबंधन, जल संरक्षण के कार्यक्रमों को जन जागरण एवं जन आंदोलन के रूप में चलाया जाए, भूमिगत जल का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए, उसका अनियंत्रित दोहन नहीं किया जाना चाहिए, भूमिगत जल अन्य भूमिगत संपत्तियों की भांति सरकार की संपत्ति है, अतः सरकारी नियंत्रण में रहना चाहिए, सब मर्सिबल पंप ट्यूबवेल लगाए जाने से पूर्व सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य कर दिया जाए, वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट्स प्रत्येक घर में लगाने हेतु उपाय किए जाएं, नगर पालिकाएं अपने स्तर पर वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था करें। जब तक हम वर्षा जल को व्यर्थ में बहाकर बर्बाद करते रहेंगे तब तक भूगर्भीय जल स्तर को गिरने से नहीं बचा सकते। वाटर हार्वेस्टिंग का अर्थ है वर्षा जल को भूमिगत जल स्रोतों तक पहुंचाने का प्रबंध करना। भूगर्भीय जल पेयजल एवं सिंचाई का प्रमुख स्रोत है, अतः उसके संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। वनों की अंधाधुंध कटाई पर नियंत्रण लगाया जाए, वृक्षारोपण कार्यक्रम को चलाने हेतु समय समय पर जन जागृति अभियान विद्यालयों के माध्यम से और स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से संचालित किए जाएं। वृक्ष जल संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं, वर्षा एवं मानसून के कारक हैं, भूमि कटाव रोकते हैं, बाढ़ को रोकने में भी वृक्षों की प्रभावी भूमिका है। जन जागरण के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को जल का दुरुपयोग करने से रोका जाए। घरों में प्रायः लोग वाश बेसिन के नल की टोंटियां खुली छोड़कर शेव करते हैं, यह जल का दुरुपयोग है। यदि टोंटी बंद करके शेव करें तो 3 लीटर से 5 लीटर तक पेयजल प्रति बार प्रत्येक व्यक्ति द्वारा बचाया जा सकता है। इसी प्रकार जिन घरों में सब मर्सिबल पंप हैं वहां भी पेयजल का दुरुपयोग होता है, ओवरहेड टैंक भर जाने पर भी ओवरफ्लो होता रहता है और सैकड़ों लीटर पानी नालियों में बह जाता है। नगर पालिकाओं को नगर में सर्वत्र फैली पाइपलाइनों के संरक्षण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। देखा गया है कि क्षतिग्रस्त पाइपलाइन से पानी बहता रहता है, इससे एक ओर तो पेयजल दूषित होता है तो दूसरी ओर बहुमूल्य जल बर्बाद होता रहता है। प्राथमिकता प्रदान करते हुए नगर पालिकाओं को क्षतिग्रस्त पाइपलाइन मरम्मत स्क्वाड का गठन करना चाहिए, जो सूचना मिलते ही उसकी मरम्मत करें। घरों में विद्युत मीटर की तरह जल मीटर भी पाइपलाइनों में लगाए जाएं, जिससे पेयजल को अनुशासित ढंग से संरक्षण करने में मदद मिलेगी। नदियां पेयजल प्रदान करने का प्रमुख स्रोत हैं। नदियों को यदि हमारी जीवन रेखा कहा गया है तो ठीक ही है, क्योंकि वे हमारी सभ्यता संस्कृति और समृद्धि की पोषक हैं। किंतु वही नदी जब बाढ़ पर आ जाती है तो अभिशाप बन जाती है। कैसी विडंबना है कि भारत जैसे विशाल देश में एक ही समय में कहीं सूखा तो कहीं बाढ़ की विकराल स्थिति जनधन की हानि करती दिखाई पड़ती है। यह विनाश बेहतर जल प्रबंधन से रोका जा सकता है। भारत की सभी प्रमुख नदियों को परस्पर जोड़ने की महत्वाकांक्षी योजना ठंडे वस्ते में चली गई है। जिस दिन ये नदियां परस्पर जुड़ गईं, उस दिन को भारत के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित किया जाएगा। बाढ़ और सूखा दोनों पर प्रभावी नियंत्रण का यही एकमात्र कारगर उपाय है। इससे प्रतिवर्ष होने वाले भारी विनाश पर नियंत्रण पाया जा सकेगा और गरीब जनता का घर बार उजड़ने से बचेगा। प्रसिद्ध गांधीवादी मेघा पाटेकर का मत है कि बड़े बांधों की तुलना में छोटे बांध बनाकर ऊर्जा उत्पादन किया जाए, इससे डूब क्षेत्र को उजड़ने से बचाया जा सकेगा। जंगल नदियों के पितामह कहे जाते हैं, इसलिए जंगलों को बचाना जल संरक्षण के लिए परमावश्यक है। ये बादलों को आकर्षित करते हैं, जमीन के क्षरण को रोकते हैं और बाढ़ रोकने के लिए तटबंध का कार्य करते हैं। जल संरक्षण हेतु हमें मूल कारण पर बल देना चाहिए। नदियों और जंगलों को बचाने के लिए जन जागरण अभियान चलाने आवश्यक हैं। जल संरक्षण हेतु हमें व्यक्तिगत सामूहिक प्रशासकीय एवं नीतिगत प्रयास करने होंगे, अन्यथा भविष्य में हम एक एक बूंद को तरस जाएंगे। आज हमें रहीम के इस दोहे को शाब्दिक अर्थ में ही ग्रहण करना है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम विविधा में अभी आप सुन रहे थे वार्ता रहीमन पानी राखिए। वार्ताकार थे डॉक्टर अशोक तिवारी। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। 7:18 होने को हैं। हमारा अगला प्रसारण लखनऊ केंद्र से कुछ ही

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न सरकारी विभागों के चयनित कर्मचारियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। कहा, युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के देशों के साथ साझेदारी कर रहा है भारत। राजधानी लखनऊ में केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा और वाराणसी में केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल हुई रोजगार मेले में शामिल। आगरा में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने जताया प्रधानमंत्री का आभार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में की श्रम और सेवायोजन विभाग की समीक्षा बैठक। नए प्रावधानों के साथ सभी 75 जनपदों में बाल श्रमिक विद्या योजना लागू करने के दिए निर्देश। और प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से जनजीवन प्रभावित। बांदा में प्रशासन ने किए बचाव के इंतजाम। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिनों के लिए लू की चेतावनी। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं श्वेता उपाध्याय और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं। यह रोजगार मेला राजधानी लखनऊ, वाराणसी, आगरा सहित पूरे देश में 47 अलग अलग जगहों पर आयोजित किया गया था। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है।
5: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
4: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व के कई विभिन्न देशों के साथ साझेदारी भी कर रहा है, जिसका मकसद देश के युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव दिलाना है। उन्होंने कहा कि देश अब पूरी दुनिया का एक भरोसेमंद सप्लाई चेन पार्टनर बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री ने बताया कि युवाओं के लिए रोजगार के नए नए अवसर

0: पैदा किए जा रहे हैं। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि पूरी पारदर्शिता के साथ नियुक्ति की प्रक्रिया संपन्न की जा रही है।
1: लखनऊ में 330 अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति पत्र हमने दिए और मैं कह सकता हूँ यह माने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 12 लाख से भी ज्यादा लोगों के लिए पारदर्शी तरीके से नियुक्तियां करके इस तरह से महिलाओं के माध्यम से नियुक्ति पत्र देने का काम होता है।
0: वाराणसी के बरेका परिसर में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। इस दौरान 341 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरी युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही राष्ट्र सेवा का अवसर भी प्रदान करती है। आगरा में रोजगार मेले का शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने किया। श्री बघेल ने रोजगार मेले के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया।
2: मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि देश को जो उन्होंने सरकारी नौकरियों के रोजगार के लिए वादा किया था वो पूरा हुआ है। इसके अलावा भी जैसा उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा, तमाम स्टार्टअप के माध्यम से अन्य माध्यम से भी रोजगार दिए जा रहे हैं।
0: रोजगार मेले में सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में चयनित 51,000 से भी ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में श्रम एवं सेवायोजन विभाग की विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और प्रस्तावित योजनाओं की समीक्षा बैठक की। पेश है एक रिपोर्ट।
3: मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रमिक केवल उत्पादन प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था और प्रगति की सबसे बड़ी शक्ति है। सरकार की प्राथमिकता है कि श्रमिकों, युवाओं और कमजोर वर्गों को सम्मानजनक जीवन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुरक्षित कार्य वातावरण और बेहतर रोजगार अवसर उपलब्ध हों। बाल श्रमिक विद्या योजना वर्तमान में 20 जनपदों में संचालित है। मुख्यमंत्री ने इसे नए प्रावधानों के साथ प्रदेश के सभी 75 जनपदों में लागू करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने सेवा मित्र व्यवस्था को रोजगार और जन सुविधा का अभिनव मॉडल बताते हुए कहा कि तकनीक आधारित ऐसी व्यवस्थाएं युवाओं और कुशल कामगारों के लिए नए अवसर तैयार करती हैं। मुख्यमंत्री ने निर्माण श्रमिकों के लिए सभी औद्योगिक शहरों में प्रस्तावित श्रमिक सुविधा केंद्रों यानी लेबर अड्डों को व्यवस्थित रूप से विकसित करने के निर्देश दिए। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। दो पैन कार्ड मामले में रामपुर में एमपी एमएलए सेशन कोर्ट ने आज सपा नेता आजम खां और अब्दुल्ला आजम की सजा बढ़ाने की अपील पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने आजम खां की 7 साल की सजा को बढ़ाकर अब 10 साल कर दिया है। वहीं उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की 7 साल की सजा को बरकरार रखा है लेकिन उनके जुर्माने की रकम को बढ़ाया है। प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी और लू के चलते जनजीवन प्रभावित है। राजधानी लखनऊ में आज दोपहर में पारा 43 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं बांदा लगातार प्रदेश का सबसे ज्यादा तापमान वाला जनपद बना हुआ है। बांदा के अपर जिलाधिकारी कुमार धर्मेंद्र ने बताया कि प्रशासन की ओर से गर्मी से बचाव के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं।
4: बांदा में जैसा कि टेम्परेचर लगातार उसी स्थिति में बना हुआ है तो इसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन नए प्रयोग योजना कर रहा है। अभी तक हम लोग सब विभागों को उनकी क्या जिम्मेदारी है, क्या उनके कार्य हैं, वो उन्हें करने के लिए निर्देशित कर रहे थे।
0: अयोध्या में आज तेज आंधी के साथ हुई बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में कुछ जगहों पर बारिश की संभावना जताई है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिनों के लिए लू की चेतावनी जारी की गई है। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद लखनऊ द्वारा संचालित मुंशी मौलवी सेकेंडरी तथा आलिम सीनियर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा वर्ष 2026 का परिणाम आज घोषित किया गया। इस वर्ष मदरसा बोर्ड परीक्षा का कुल परिणाम 88.26% रहा। परिणाम में छात्राओं का प्रदर्शन छात्रों से बेहतर रहा। उत्तर प्रदेश ट्रांसको के प्रबंध निदेशक मयूर माहेश्वरी ने कार्यों में प्रथम

0: दृष्टया लापरवाही का दोषी पाए जाने पर गाजियाबाद में अधिशासी अभियंता राहुल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई 220 केवी मुरादनगर बापूधाम लाइन पर कंडक्टर टूटने और बिजली आपूर्ति बाधित होने के मामले में की गई है। फतेहपुर में जल संरक्षण को लेकर जिला प्रशासन ने एक पहल शुरू की है। जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स ने आज एराया ब्लॉक के सिमौरी गांव से इस अभियान की शुरुआत की। जिलाधिकारी ने बताया कि प्रथम चरण में प्रत्येक ब्लॉक में लगभग 25 तालाब और पूरे जिले में कुल 300 तालाबों को पुनर्जीवित करने का लक्ष्य तय किया गया है।
1: इसमें हम लोग ने फर्स्ट फेज में पूरे जनपद में प्रत्येक ब्लॉक में 25 तालाब लिए हैं, जिनको अभी जो नई योजना हमारी आई है जी राम जी, उसके माध्यम से लोगों को रोजगार देते हुए उनको कब्जा मुक्त करा करके और उन्हीं लोगों को रोजगार देते हुए उन्हीं के माध्यम से इनको खुदवाया जाएगा। तो मुझे लगता है कि जो कब्जा मुक्त होंगे और जो जल संचयन होगा तो वो आने वाले समय में जनपद फतेहपुर में एक विकास का एक नया दौर शुरू करेगा।
0: आईपीएल मुकाबले में आज लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला हो रहा है। पंजाब किंग्स ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनी है। मैच को देखते हुए लखनऊ पुलिस ने ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न सरकारी विभागों के चयनित कर्मचारियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। कहा, युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के देशों के साथ साझेदारी कर रहा है भारत। राजधानी लखनऊ में केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा और वाराणसी में केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल हुई रोजगार मेले में शामिल। आगरा में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने जताया प्रधानमंत्री का आभार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में की श्रम और सेवायोजन विभाग की समीक्षा बैठक। नए प्रावधानों के साथ सभी 75 जनपदों में बाल श्रमिक विद्या योजना लागू करने के दिए निर्देश। और प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से जनजीवन प्रभावित, बांदा में प्रशासन ने किए बचाव के इंतजाम। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिनों के लिए लू की चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।
2: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।
3: मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:31 हुए हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं प्रसूति फिस्टुला को समाप्त करने के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के मौके पर विशेष भेंट वार्ता। सुप्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निधि बंसल से अनिंद्र सिंह की बातचीत। तो आइए सुनते हैं ये बातचीत।
4: श्रोताओं नमस्कार, फिर हाजिर हूँ आपका मनपसंद कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर लेकर। आज का हमारा ये कार्यक्रम समर्पित है एक ऐसे गंभीर स्वास्थ्य समस्या को लेकर, प्रसूति फिस्टुला, उसको समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल दुनिया भर में मनाया जाता है। ये एक ऐसी गंभीर स्वास्थ्य समस्या है श्रोताओं, जो लाखों महिलाओं किशोरियों को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक पीड़ा देती है, लेकिन ये रोकी जा सकने वाली एक समस्या है। और आज इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में जुड़ी हैं डॉक्टर निधि बंसल जी। डॉक्टर साहिबा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार।
5: नमस्कार, मैं डॉक्टर निधि बंसल, गायनेकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन, 15 से 16 साल से मैं अपनी सेवाएं दे रही हूँ
4: जी। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो हमारे श्रोताओं को यही सरल और आसान शब्दों में बताएं कि ये प्रसूति फिस्टुला आखिर है क्या।
5: देखिए, प्रसूति फिस्टुला या ऑब्स्टेटिक फिस्टुला, फिस्टुला क्या होता है, बेसिकली दो अंगों के बीच में एबनॉर्मल कनेक्शन। तो फिस्टुला, प्रसूति फिस्टुला हम इसे इसलिए कहते हैं कि ये ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ डिलीवरी होता है। ऑब्स्टेटिक फिस्टुला जो है डिलीवरी के टाइम पर एबनॉर्मल कनेक्शंस या तो ब्लैडर का वजाइना के साथ बन जाए या रेक्टम का वजाइना के साथ बन जाए, तो हम इसे कहते हैं ऑब्स्टेट्रिक।

0: फिस्टुला,
1: फिस्टुला
0: मतलब जो अंग अलग अलग थे, ब्लैडर, वेजाइना और रेक्टम, अलग अलग तीन सेपरेट ऑर्गन्स, अंग हैं, पाथ हैं, और वो किसी कारणवश ड्यूरिंग डिलीवरी अगर वो मिक्स हो जाए, मैच हो जाए, उनके बीच में कनेक्शन बन जाए,
1: बन
0: तो
1: जाए।
0: हम उसे ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला कहते हैं।
1: तो ये समस्या दरअसल किन परिस्थितियों में, जैसे आपने कहा कि
0: हाँ,
1: डिलीवरी में
0: देखिए,
1: ज्यादातर होती है।
0: ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला जब भी बनेगा तो दो अंगों के बीच के टिश्यू की नेक्रोसिस की वजह से बनेगा। अगर मोस्ट कॉमन रीजन ऑफ ऑब्स्टेटिक फिशुला होता है मोर देन 80% केसेस में प्रोलॉन्ग लेबर, जब
1: लॉन्ग लेबर,
0: प्रोलॉन्ग
1: ज्यादा
0: लेबर,
1: देर तक
0: हाँ,
1: अगर
0: अगर
1: आप
0: बहुत
1: प्रसव
0: लंबे
1: पीड़ा
0: समय
1: होती
0: तक
1: है।
0: बच्चे का हेड जो है वो वजाइना में फंसा रहेगा। अब इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, या तो मदर की पैल्विस छोटी है, या बच्चे का सिर बड़ा है जिसे हम सिफेलो पैल्विक डिस्प्रपोर्शन कहते हैं,
1: जी,
0: या फिर इतने कॉन्ट्रैक्शंस नहीं हो रहे, या मदर एग्जॉस्ट हो गई है जिसकी वजह से वो पुश नहीं कर पा रही है और बच्चे का सिर वहां पे लगातार काफी समय तक फंसा
1: फंसा
0: हुआ है,
1: रहता है।
0: या बच्चे के गले में नाल का फंदा है जिसकी वजह से बच्चा नीचे नहीं सरक पा रहा है और वो उस लेवल पे जाके फंस गया है, 12-14 घंटे हो गए, 10-12 घंटे हो गए और वो वहां पे ही फंसा हुआ है, तो जो दो टिश्यू है, वेजाइना का टिश्यू बच्चे के हेड के बीच में
1: जी
0: और मदर की पेल्विक बोन के बीच में जो टिश्यू है वो उसकी ब्लड सप्लाई खत्म हो जाती है, अब खत्म होने की वजह से वहां पे नेक्रोसिस हो जाती है जिसकी वजह से उनके बीच का टिश्यू खत्म हो जाता है, टिश्यू इस्टीमिया
1: रप्चर
0: हो
1: हो
0: जाता
1: जाता
0: है,
1: है,
0: रप्चर हो जाता है और उनके बीच में एबनॉर्मल कनेक्शंस बन
1: बन
0: जाते
1: जाए।
0: हैं। चार तरीके के ऑब्स्टेटिक फिस्टुलाज होते हैं, जिसमें सबसे कॉमन है वेसाइको वेजाइनल, जिसमें ब्लैडर का वेजाइना से कनेक्शन,
1: जी
0: नंबर 2 रेक्टो वेजाइनल, जो रेक्टम का, लैट्रिन के रास्ते का वेजाइना से कनेक्शन, नंबर 3 वेसाइको यूटराइन यानी कि ब्लैडर का
1: यूट्रस
0: यूट्रस
1: से,
0: से कनेक्शन, एंड
1: जी
0: नंबर 4 यूरेथ्रो वेजाइनल, इसका यूरेथ्रा से वेजाइना में कनेक्शन। तो
1: जी
0: मोस्ट कॉमन इज वेसाइको वेजाइनल एंड सेकेंडली इज रेक्टो वेजाइनल। और इसके अलावा, प्रोलॉन्ग लेबर के अलावा भी कुछ रीजंस हैं, जैसे कि मेटरनल मैल न्यूट्रिशन। मैल न्यूट्रिशन, अगर मदर का न्यूट्रिशन अच्छा नहीं होगा तो
1: ड्यूरिंग
0: उसकी
1: प्रेगनेंसी,
0: ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उसके टिश्यूज में जान नहीं होगी, तो वो उस लेबर के प्रोसेस को कोप अप
1: रेजिस्टेंट नहीं
0: नहीं
1: कर
0: कर
1: पाता।
0: सकती
1: जी
0: और उसको थोड़ी सी ही देर में वो फिशुला बनने के चांसेस है। दूसरा, अडोलसेंट प्रेग्नेंसीज,
1: ये भी एक बड़ा
0: दिस मे
1: रीजन
0: बी अ
1: है।
0: रीजन, लाइक
1: क्योंकि
0: जो
1: वो
0: अर्ली
1: तैयार
0: एज में
1: नहीं है
0: मैरिजेस
1: अर्ली
0: होती
1: अरे।
0: हैं क्योंकि
1: जी
0: उनकी पैल्विस इतनी प्रिपेयर नहीं हो पाई है कि
1: ठीक
0: वो
1: बात,
0: उसको कोप अप कर पाए, और उस ऑब्स्टेटिक एक स्ट्रेस होता है, मतलब डिलीवरी इज इटसेल्फ इज अ स्ट्रेसफुल
1: बिल्कुल
0: सिचुएशन
1: बिल्कुल
0: और उस स्ट्रेस को झेलने के लायक वो नहीं है।
1: नहीं।
0: इसके अलावा ट्रॉमेटिक केसेस हो सकते हैं, लाइक फोर्सेप्स, प्रीवियसली वी वर यूजिंग फोर्सेप्स इन डिलीवरी, बट फोर्सेप्स अगर हम हाई फोर्सेप्स यूज करें तो फिशुलास के चांसेस बहुत ज्यादा
1: ज्यादा
0: हो जाते हैं, लो फोर्सेप्स में इतने चांसेस नहीं होते, उसमें टीयर्स के चांसेस ज्यादा होते हैं, मतलब वेजाइनल लेसरेशंस के और पेरिनियल टीयर्स के चांसेस ज्यादा होते हैं, बट हाई फोर्सेप्स में फिशुला के चांसेस ज्यादा होते
1: ज्यादा
0: हैं। इसके अलावा समटाइम्स आफ्टर रेडियोथेरेपी और इन सर्जिकल हिस्टरेक्टमीज में वेजाइको वेजाइनल फिशुला बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि ब्लैडर कई बार सेपरेट नहीं हो पाता है या ब्लैडर के अबनॉर्मल कनेक्शंस होते हैं तो वेजाइना के साथ कनेक्ट कर जाता है और उसमें फिशुलास बनने के चांसेस होते हैं, बट ऑब्स्टेटिक फिशुला इज प्योरली बिकॉज ऑफ लेबर और ऑब्स्टेटिक्स प्रॉब्लम्स।
1: मैम, जैसे चूंकि ये लेबर से ओरिजिनेट होता है, लेबर पेन के बाद ज़्यादातर ऐसी परिस्थिति बनती है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ या गरीब तबके के लोग हैं वहाँ उनकी समस्या ज़्यादा नज़र आती है बनिस्पत जो शहरी मामले हैं, क्योंकि वहाँ पर वो सुविधाएं उनको मुहैया हो जाती हैं, अच्छे अच्छे
0: हाँ,
1: अस्पताल होते हैं, प्रसव के लिए अच्छी सुविधाएं हैं। तो आपको क्या लगता है कि
0: ये
1: ऐसी समस्या,
0: बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेसिकली, क्योंकि पहले ऑब्स्टेटिक फिशुला के रेट बहुत ज्यादा थे क्योंकि गांव में डिलीवरीज हो रही हैं, स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट्स नहीं है अवेलेबल, जो इस चीज को चेक ही नहीं कर पा रहे हैं कि पेशेंट, बच्चे का हेड फंस गया है, वो नीचे नहीं आ पा रहा है, दे आर ओनली जस्ट ट्राइंग कि बच्चा हो जाए, डिलीवरी होने वाली है, होने वाली है, बट इसी में ही टाइम निकलता जा रहा है, फिशुला बन जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो सिस्टम में स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट्स का डिलीवरीज को अटेंड करना बहुत जरूरी है, कहीं पीएचसी पे जहां पे भी डिलीवरी हो रही है, जहां पे भी केयर हो रही है, ऑब्स्टेटिक केयर हो रही है, वहां पे इमरजेंसी सिजेरियन की सुविधा होना बहुत जरूरी है, और अगर वहां पे सुविधा नहीं है या राउंड द क्लॉक एनेस्थेटिस्ट नहीं है तो देयर शुड बी एम्बुलेंस जो कि उनको तुरंत रेफर कर पाए, देयर शुड बी अ रेफरल सेंटर
1: जो
0: जो कि
1: फटाफट
0: नियर
1: नियर बाय
0: नियर
1: जो
0: बाय
1: भी
0: हो, जो जहां
1: सेंटर
0: पे
1: है वहां
0: उन्हें
1: पर लेके
0: पहुंचा
1: जा
0: दे,
1: सके।
0: क्योंकि मैक्सिमम केसेस में फिशुलास के ऑब्स्टेट्रिक फिशुला के केसेस में मैक्सिममली स्टिल बर्थ कॉमन होता है, क्योंकि बच्चे की भी फीटल हार्ट चली जाती है और बच्चा भी बच नहीं पाता है।

0: क्योंकि
1: क्योंकि वो
0: ज्यादा
1: भी
0: देर तक
1: इतना
0: वहां फंसा
1: स्ट्रेस
0: हुआ है,
1: नहीं ले
0: स्ट्रेस में
1: सकता और
0: बिल्कुल
1: इतनी
0: बिल्कुल
1: देर तक उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, लैक्टिक एसिड ब्रेन में डेवलप हो जाएगा ड्यू टू स्ट्रेस, तो वो लैक्टिक एसिड डेवलपमेंट की वजह से बच्चा जो है वो आईयूडी होने के बहुत चांसेस होते हैं। तो सिर्फ स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट जिन्होंने थोड़ा बहुत सीखा हुआ हो और जो इस चीज को पहचान पाए कि नाउ द पेशेंट रिक्वायर्स इमरजेंसी सिजेरियन इज ओनली द प्रिवेंशन ऑफ दिस फिशुला। इसके अलावा अगर सीपीडी है, मैल पोजिशंस हैं, बेशक तीसरा चौथा बच्चा हैवी बेबी है, 4 किलो 5 किलो का बच्चा है, तो वेजाइनली ट्राई करने की जगह
0: सिजेरियन
1: सिजेरियन कर
0: लेना।
1: देना ही बेहतर होता है, क्योंकि इसकी वजह से मरीज को जो सोशल स्टिग्मा होता है वो बहुत
0: मैं
1: प्रॉब्लम
0: उसी
1: है।
0: बात पे आना चाह रहा था डॉक्टर साहब कि एक शारीरिक जो समस्या परेशानी है वो तो है ही, इसके अलावा मानसिक और फिर आपको सोशल जो एक वो झेलना पड़ता है, तो वो भी एक बड़ा ही ट्रॉमेटिक काइंड ऑफ सिचुएशन होती है जो पेशेंट होता है उसके
1: आप
0: लिए।
1: इमेजिन करिए किसी लेडी का लगातार यूरिन लीक हो रहा हो
0: जी
1: या लगातार इनकॉन्टिनेंस ऑफ फीसिस हो, मतलब लैटरिन निकलती जा रही हो जिसको पता ही ना चल रहा हो, उसकी जिंदगी कैसी हो? तो ये अपने आप में उसके आसपास इतनी स्मेल होगी कि कोई उसके पास खड़ा भी नहीं हो सकता। तो ये सोशल स्टिग्मा, प्रॉब्लम्स तो उसके सिम्टम्स तो है ही हैं जो उसको परेशान कर रहे हैं, लेकिन ये जो सोशल स्टिग्मा है, शी हैज टू यूज डायपर्स, शी हैज टू, मतलब उसकी सोशल एक्टिविटी बिल्कुल खत्म हो जाएंगी, उसका मतलब लोग उससे
0: बाहर
1: दूर
0: निकलना बंद
1: रहेंगे,
0: हो जाता है
1: हस्बैंड्स
0: ना।
1: उसके पास नहीं जाएगा
0: जी
1: और
0: जी
1: मतलब उसकी लाइफ, मैरिटल लाइफ बिल्कुल हेल हो जाएगी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो ज्यादा है रादर देन उन प्रॉब्लम्स के जो उसको सिम्टम्स हो रहे हैं उसके।
0: और एक बात और है कि कई महिलाएं जो है खास तौर से ग्रामीण परिवेश की, पहले ऐसा देखने में बहुत आता था कि इस बीमारी को छिपा के जी रही हैं,
1: बिल्कुल
0: तो और उसके पीछे जो है सोशल जो एक नज़रिया है सामाजिक और जागरूकता की कमी भी एक कह सकते हैं वो उसके पीछे जिम्मेदार थी।
1: जागरूकता की कमी कह लीजिए, घर में सास कहती हैं कि हमारे तो बच्चे यूं ही हो गए, हमें तो कोई परेशानी नहीं हुई, तुम्हें अस्पताल जाना पड़ रहा है, तुम्हें प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जितने डॉक्टर को दिखाओगे उतने ऑपरेशन बढ़ेंगे। ये सारी कुछ बातें हैं जो आज भी ग्रामीण परिवेश में होती हैं और यही एक रीजन है कि घर में लेडीज बोल नहीं पाती, अपनी प्रॉब्लम्स बता नहीं पाती और इन प्रॉब्लम्स को बढ़ाती चली
0: चली
1: जाती हैं, और
0: जाती है।
1: वो एक लिमिट में हमारे पास जब तक पहुंचती हैं तब तक वो इतना बड़ा विकराल रूप धारण कर लेती हैं
0: कि वो
1: कि
0: सीवियर
1: हम
0: सिचुएशन
1: उनको
0: हो जाती है,
1: सीरियस
0: वहां से
1: सिचुएशन में ही
0: कंट्रोल
1: फिर
0: करना
1: उसको
0: भी फिर
1: कंट्रोल
0: मुश्किल।
1: करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता।
0: आपने बात की थी कि जो अर्ली स्टेज में शादियां हो जाती हैं, कम उम्र
1: हाँ
0: में विवाह है या किशोरावस्था में गर्भधारण की जो इंस्टेंसेज होते हैं, वो समस्या को कितना एग्रीवेट करते हैं,
1: देखिए,
0: बढ़ाते हैं।
1: कम उम्र में विवाह हो जाए, एडोलेसेंट प्रेगनेंसीज हो जाए, तो उनकी पेल्विस या उनका पेल्विक फ्लोर अपना इतना मैच्योर नहीं हुआ है कि उसके अंदर सारी मसल्स प्रॉपरली डेवलप हों या वो इतना स्पेस बना पाए कि वो एक बेबी को निकालने में सक्षम हो। तो ये जो एडोलेसेंट प्रेगनेंसीज हैं, ये हर तरीके के कॉम्प्लिकेशंस इनके अंदर हो सकते हैं, जिनमें ऑब्स्टेट्रिक फिशुला भी एक मेजर कॉम्प्लिकेशन है। आजकल मैल न्यूट्रिशन इतना कॉमन है, स्पेशली एडोलेसेंट गर्ल्स दूध नहीं पियेंगी, कितनी लड़कियां मेरे पास आती हैं दूध नहीं पीती, हड्डियों में दर्द हो रहा है, 15 साल से ही उनको हड्डियों में दर्द हो रहा है। तो दूध ना पीना,
0: तो
1: फिर
0: ये जो
1: आयरन,
0: कुपोषण की
1: खून की
0: समस्या
1: कमी,
0: है या एनीमिया की समस्या आपने कही, ये समस्याएं भी इसमें कंट्रीब्यूट करती
1: बिल्कुल
0: हैं।
1: अगर शरीर में खून की कमी होगी तो जितने भी हमारे टिश्यू हैं उनमें ब्लड फ्लो कम होगा, ब्लड फ्लो कम होगा ऑक्सीजनेशन कम होगा, तो ऑक्सीजनेशन कम होगा तो वियर एंड टेयर रिपेयर वाला प्रोसेस अच्छा नहीं होगा, तो उनकी ओवरऑल स्ट्रेंथ टिश्यूज की खत्म हो जाएगी, ओवरऑल स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी, तो देयर आर मोर चांसेस
0: ठीक।
1: ऑफ हैविंग फिशुलाज एंड हैविंग कॉम्प्लिकेशंस इन लेबर एंड डिलीवरी प्रोसेस।
0: जैसे कि हम बात कर रहे थे ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्रसव पूर्व जांच होती है
1: हाँ
0: या डिलीवरीज होती हैं, मतलब अच्छी सुविधाओं की कमी, वो सब कितनी बड़ी चुनौती आपको नजर आती है?
1: देखिए, सबसे बड़ी बात यह है ग्रामीण क्षेत्र में पीएचसीज पे जब ब्लड टेस्ट होते हैं और भी टेस्ट होते हैं, सिर्फ हीमोग्लोबिन टेस्ट कर लेते हैं और मरीज को ये लगता है हमारे तो सारे टेस्ट हो गए,
0: एच बी देख लिया
1: एच बी
0: बस।
1: देख लिया, हमारे तो सब टेस्ट हो गए, डेली रिपोर्ट्स आती हैं, जबकि पेशेंट का प्लेटलेट, टीएलसी, कोई इन्फेक्शन तो नहीं चल रहा है और इसके अलावा पेशेंट को थायराइड तो नहीं है, बिलीरुबिन तो नहीं बढ़ा हुआ है, बहुत सारे अदर फैक्टर्स हैं जो इन सब चीजों पे हेल्प करते हैं, या आयरन स्टडीज, अगर हीमोग्लोबिन कम है तो खाली हीमोग्लोबिन 8 या 7 लिखने से काम नहीं
0: नहीं
1: चलेगा,
0: चलेगा।
1: हमें
0: ठीक।
1: आयरन स्टडीज करनी पड़ेंगी, हमें ये देखना पड़ेगा कि कहीं वो थैलेसीमिक पेशेंट तो नहीं है, कहीं उसका और कोई मतलब और कोई रीजन तो नहीं है, और कोई प्रॉब्लम तो नहीं।

0: चल रही है उसके अंदर जिसकी वजह से उसका हीमोग्लोबिन इतना कम हो, या उसके आयरन स्टोर्स कैसे हैं, कितना उसको रिप्लेनिश हमें करना है, और वो डिलीवरी से पहले क्या वो कोप अप हो पाएंगे। कई बार पेशेंट 8 महीने पे ही टेस्ट कराता है, 5-6 ग्राम आ रहा है, अब उसको डिलीवरी के टाइम पे वो ऑलरेडी कॉम्पनसेटेड स्टेट में, डिकम्पनसेटेड स्टेट में है, और फिर उसकी डिलीवरी भी हो रही है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स उसकी एग्रेवेट कर जाती हैं, और उसको सारी की सारी प्रॉब्लम्स जब बढ़ जाती हैं तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस की रेट बहुत ज्यादा हाई हो जाती है।
1: तो नियमित जांच और डिटेल्ड जो है
0: डिटेल्ड
1: जांच वो
0: टेस्टिंग
1: बड़ी
0: होना बहुत
1: जरूरी है।
0: जरूरी है, जिसमें बेसिक आयरन स्टडीज, पूरा कंप्लीट हीमोग्राम, एंड स्पेशली आजकल जैसे थैलेसीमिया के केसेस भी बढ़ रहे हैं, तो उसमें हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस भी होना बहुत आवश्यक है, ब्लड ग्रुप टेस्टिंग एंड थायराइड डिसऑर्डर्स की टेस्टिंग।
1: मैम, जैसे कि सरकार के प्रयास हैं, आजकल आयुष्मान भारत मिशन चल रहा है, सरकार का प्रयास है कि स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो हर तबके के लोगों को दूर दराज के क्षेत्रों तक भी बड़ी सुगमता से और आसानी से मुहैया हो पाएं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमने बात की कि ट्रेंड जो दाई हैं या डॉक्टर्स हैं उनका ना होना, वो जो है, क्या आज के ज़माने में भी ऐसे तबकों के लोगों को घर पे डिलीवरी कराने के लिए मजबूर करते हैं? ऐसे
0: बिल्कुल
1: केसेस
0: करते
1: आपको
0: हैं,
1: नजर आते हैं?
0: बिल्कुल करते हैं। कई बार आप तो ग्रामीण की बात कर रहे हैं, शहर में भी कस्बों में दाइयाँ डिलीवरीज कराती हैं, पहला बच्चा इंस्टीट्यूशनल हो गया, दूसरा तीसरा तो ऐसे ही हो जाएगा, घर पे हो जाएगा, ये सब बहुत कॉमन है। लेकिन ऐसा नहीं है कि क्या चौथे बच्चे में ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला नहीं हो सकता। जैसे जैसे बच्चों का नंबर बढ़ता जाता है, लाइक फर्स्ट में अगर बच्चे का वेट 2.5 किलो है, तो सेकंड में डेफिनेटली वेट ज्यादा होगा। विद द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज बेबी वेट बढ़ जाता है, पेल्विक डिस्प्रोपोर्शनेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, मैल प्रेजेंटेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। कई बार तो पता ही तब चलता है जब लीकिंग हो गई, पानी की थैली फूट गई, तभी पता चल रहा है बच्चा आ रहा है, हैंड प्रोलैप्स हो गया उसका, एंड वी वर ट्राइंग एट होम। तो कई बार पेशेंट हमारे पास आते हैं हैंड प्रोलैप्स लेके, मतलब उनको पता ही नहीं है कि बच्चा आ रहा है, दे आर ट्राइंग एट होम, लीकिंग हो गई, जब मेम्ब्रेन रप्चर हो गई तो हैंड निकल आया बाहर। तो ट्रेन्ड बर्थ अटेंडेंट्स का होना,
1: वो
0: वंस
1: बहुत जरूरी
0: पेशेंट
1: है।
0: जब लेबर में हो तो सीटीजी मॉनिटरिंग होना, और प्रोग्रेशन ऑफ लेबर देखना बहुत जरूरी है। मेरे को ऐसा लगता है कि जननी सुरक्षा योजना की वजह से
1: जी,
0: जो बर्थ, जो घर पे डिलीवरीज होती थी, उसका रेट थोड़ा सा कम हुआ है। जो गवर्नमेंट में जननी सुरक्षा योजना JSY स्कीम्स चल रही हैं, जिसमें
1: उसमें
0: मरीज को
1: पोषण भी आपका
0: डिलीवरी पे कुछ
1: ये
0: पैसे
1: किया
0: मिलते
1: जाता है,
0: हैं, या
1: पैसे भी
0: पोषण
1: दिया
0: भी
1: जाता
0: मिलता
1: है, तो
0: है,
1: वो
0: और
1: आर्थिक मदद की वजह
0: आर्थिक
1: से
0: मदद की वजह
1: काफी
0: से
1: लोगों को
0: काफी
1: जो
0: लोग
1: है।
0: उसमें डिलीवरीज करा रहे हैं।
1: जी
0: जब
1: जी
0: मैं MS कर रही थी, उस समय ही ये JSY शुरू हुआ था, और आप बिलीव नहीं करेंगे कि JSY शुरू होने के आफ्टर 2-3 मंथ्स ही मेडिकल कॉलेज में डिलीवरीज का रेट जो है मोर देन 3 टाइम्स हो गया। जो पहले डिलीवरीज बहुत कम होती थी, वो 3 टाइम्स 4 टाइम्स, और आज की डेट में तो मोर देन 10 टाइम्स, आई थिंक जब मैंने किया था उस समय से 10 गुना डिलीवरीज बढ़ गई हैं। उसका ये जो कुछ योजनाएं हैं सरकार की, जैसे JSY, ये डेफिनेटली इन सारी चीजों के, या इन फिशुलाज के, या इन प्रॉब्लम्स के रेट कम करने में काफी कारगर सिद्ध हुई हैं।
1: और जो जो प्रसूति फिस्टुला को समाप्त करने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या जागरूकता कार्यक्रम और जो चलते हैं, वो भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करते हैं लोगों तक इसके बारे में जागरूकता पहुंचाने के
0: नहीं,
1: लिए।
0: अब तो काफी लोग जागरूक हो चुके हैं, और उनको ये सब चीजें मालूम है कि बहुत लंबे समय तक फंसना, या बहुत लंबे समय तक बच्चा ना हो पाना कहीं ना कहीं प्रॉब्लम का संकेत है। तो लोग जागरूक हो गए हैं, और थोड़ा बहुत हम लोग, आप लोग मिलके करेंगे तो और भी बेटर हो जाएगा।
1: ठीक मैम, कार्यक्रम के इस मोड़ पे मैं चाहूँगा कि एक गीत हमारे श्रोताओं को आप अपनी पसंद का अगर कोई सुनवाना चाहें।

0: मैम, ये बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से जो पीड़ित महिलाएं होती हैं उनको परिवार की तरफ से भी और समाज की तरफ से भी,
1: उनको बेसिकली समाज से अलग कर दिया जाता
0: हाँ,
1: है,
0: बहिष्कार जैसी
1: बहिष्कार
0: नौबत आ
1: कर दिया
0: जाती
1: जाता
0: है।
1: है।
0: घर में जो है, जो ऐसा कि आपने कहा था कि जो पति पत्नी के संबंध हैं, वैवाहिक जो टूटन है, वो नौबत तक आ
1: बिल्कुल आ
0: जाती है।
1: जाती है। तलाक के
0: तो
1: भी, मतलब डिवोर्स के भी रेट्स बढ़ जाते हैं।
0: जी,
1: जब मैं मेडिकल कॉलेज में थी,
0: जी
1: उस
0: जी
1: समय एक अलग से वार्ड होता था जिसे हम कहते थे सेप्टिक लेबर रूम। वो सेप्टिक लेबर रूम वॉज द एरिया जहाँ पे ये ऑब्स्टेटिक फिशुला वाले पेशेंट्स रहते थे, क्योंकि उस लेबर रूम में इतनी स्मेल आती थी कि वहाँ कोई खड़ा भी नहीं हो
0: नहीं हो
1: पाता था।
0: सकता।
1: मतलब इवन जब हमें ड्यूटी के लिए वहाँ जाना होता था, तब भी वी हैव टू वेयर मास्क एंड मतलब बंद करके जाना पड़ता था, क्योंकि वो इतना स्टिंकी होता था, क्योंकि लगातार यूरिन लीक हो रहा है, लगातार फिशेस लीक हो रही है, तो हमें बहुत ही वहाँ पे खड़े रहना भी मुश्किल हो जाता
0: नहीं,
1: था।
0: मैं जो है, जो जिस पॉइंट को कुरेदना चाहता हूँ वो ये था कि इस स्थिति में महिलाओं जो उनसे जूझ रही हैं, उस स्थिति से जूझ रही हैं, उनके आत्मविश्वास पे, उनके मानसिक स्वास्थ्य पे कितना गहरा असर पड़ता होगा।
1: आप सोच सकते हैं कितना गहरा असर पड़ता होगा। वो बिल्कुल ही समाज से उसे निकाल ही दिया गया, उसकी फैमिली लाइफ खत्म हो गई, उसके हस्बैंड की मैरिटल लाइफ खत्म हो गई, वो अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर सकती। बट इन सब चीज़ों का सोल्यूशन है टाइमली इंटरवेंशन। अगर हो गया है तो उसको जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई करना कि क्या है ये, एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है, और आइडेंटिफाई करने के बाद उसका सोल्यूशन करना या उसको ट्रीट करना
0: वो
1: एक
0: बहुत
1: बहुत आवश्यक
0: इम्पोर्टेंट
1: है,
0: है।
1: जिससे कि वो प्रॉब्लम बढ़ ना पाए।
0: क्या इसका पूरी तरह से उपचार संभव है?
1: 100% इट इज अ ट्रीटेबल कंडीशन, 100%।

श्रोताओं, कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश में अभी आप सुन रहे थे प्रसूति फिस्टुला को समाप्त करने के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के मौके पर विशेष भेंटवार्ता। सुप्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निधि बंसल से अनिंद्र सिंह की बातचीत।

कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद अब आकाशवाणी आगरा से भी शुरू हो चुका है। हेलो मेरी पसंद कार्यक्रम में अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए रिकॉर्डिंग प्रत्येक शुक्रवार को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक दोपहर में की जाती है। आप भी अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए हमारे कार्यक्रम में फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 0562-350-1852 और दूसरा नंबर है 0562-297-0337 और कार्यक्रम को सुन सकते हैं प्रत्येक सोमवार रात 10 बजे। श्रोताओं, आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण अगले दिन यानी मंगलवार को दोपहर 3 बजे से किया जाता है। श्रोताओं, हमारी आवाज आप तक पहुंचती है मीडियम वेव के 1530 किलोहर्ट्ज और 196.1 मीटर्स पर। आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल के माध्यम से भी न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर सुन सकते हैं, क्योंकि कार्यक्रम अब सिर्फ रेडियो सेट पर ही नहीं आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है।

श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी सूचना हम आपको दे दें। आज रात्रि 9:30 पर आप हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित होगा रेडियो पत्रिका विज्ञान भारती।

और श्रोताओं, रात्रि 10 बजे हमारे दिल्ली केंद्र से ही अनुप्रसारित होगा कार्यक्रम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। तो समय याद रखिएगा, रात्रि 10 बजे।

पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ, जीवन को खुशहाल बनाओ। अगर आप आने वाली पीढ़ी को प्यार करते हैं तो पेड़ लगाइए, पृथ्वी को बचाइए। हम सबका एक ही नारा, साफ सुथरा हो देश हमारा। मेरा शहर साफ हो, इसमें हम सबका हाथ हो।

मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है।

श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के आठ बज चुके हैं। आइए आनंद लेते हैं फिल्म संगीत का और सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम भजन संध्या। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला भजन गोपी फिल्म से महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज में राजेंद्र कृष्ण की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया है कल्याण जी आनंद जी ने।

श्रोताओं, जूली फिल्म से ये गीत आपने सुना। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं किशन कन्हैया फिल्म से ये गीत, आशा भोसले और उषा मंगेशकर की आवाजों में, संगीत राजेश रोशन का।

श्रोताओं, बजरंगी भाईजान फिल्म से ये गीत आपने सुना इमरान अजीज की आवाज में, संगीत प्रीतम का था। श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में समीर का गीत अनुराधा पोडवाल की आवाज में, बीवी हो तो ऐसी फिल्म से।

श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में बीवी हो तो ऐसी फिल्म से ये गीत आपने सुना अनुराधा पोडवाल की आवाज में। समीर की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। श्रोताओं, इसके साथ ही भजन संध्या कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं, वक्त हो चुका है फिल्म संगीत के कार्यक्रम चित्रपट संगीत का, तो आइए सुनते हैं चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। जुदाई फिल्म का ये गीत हम सुनते हैं हरिहरन और अलका याग्निक और जसपिंदर नरूला की आवाज में।

श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में कल हो ना हो फिल्म से ये गीत आपने सुना सोनू निगम की आवाज में। शंकर एहसान लॉय के संगीत निर्देशन में गीत के बोल लिखे थे जावेद अख्तर ने। श्रोताओं, इन गीतों के साथ ही चित्रपट संगीत कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।

मीडियम वेव 196.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:45 होने को हैं। श्रोताओं, हमारा अगला प्रसारण दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी समाचार, तुरंत बाद सुनिएगा अंग्रेजी समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार बल। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद और कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका के दृष्टिकोण से हिंद प्रशांत क्षेत्र की आधारशिला बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। महाराष्ट्र के शिरडी में तोप के गोले बनाने के संयंत्र का भी उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के जिमखाना क्लब को रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए अगले महीने की 5 तारीख तक अपना परिसर सौंपने को कहा। चीन के कोयला खदान में विस्फोट में 90 लोगों की मौत और भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने वियतनाम में आयोजित एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और अमेरिका विश्व कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि अमरीकी विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मार्को रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण साझा किया। श्री मोदी ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की और बातचीत तथा कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी अपील दोहराई। श्री मार्को रूबियो इस महीने की 26 तारीख को होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपने

0: सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
1: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी।
0: इस रिश्ते की बुनियाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का आपसी संबंध है। ये एक निजी रिश्ता है। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी, जब राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का मौका मिला था। ये रिश्ता दूसरे कार्यकाल में भी कायम रहा। आप उन दोनों के बीच के जुड़ाव को साफ साफ देख सकते हैं और मुझे लगता है ये बेहद अहम है।
1: विदेश मंत्री रूबियो ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए दोनों देशों की ओर से आने वाले समय में कई और रोमांचक तथा नई घोषणाएं की जाएंगी। श्री रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दो ऐसे बेहद गंभीर नेता बताया जिनका पूरा ध्यान दीर्घकालिक लक्ष्यों पर केंद्रित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है।
3: हमने यह समझा, सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लिए प्राइवेट सेक्टर की एनर्जी का उपयोग आवश्यक है। इसलिए पॉलिसी रिलेटेड रिफॉर्म्स, नीतिगत सुधार भी किए गए। FDI को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज किया गया। पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट लाई गई। हम लोगों ने एक लंबी लिस्ट मोर देन 5000 आइटम्स की तैयार की है। इस पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट में आइटम्स हैं, हम उनको निर्धारित समय के अंदर हम भारत की धरती पर बनाएंगे। हम दुनिया के किसी देश से उसको इम्पोर्ट नहीं करेंगे।
2: श्री सिंह ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी लगभग 30-35% है, जिसे भविष्य में बढ़ाकर 50% किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवा विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने आज वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बात कही।
4: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रोजगार मेले में आज सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में चयनित 51,000 से भी अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। वाणिज्य

0: और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार का मुख्य प्रयास भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना रहा है। नई दिल्ली में 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नए भर्ती हुए लोग वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।
1: विकसित भारत 2047, जब उस गोल उस विजन को सामने रखते हैं तो हमारा काम भी बड़ा सुगम हो जाएगा। और हिम्मत से काम करें, अच्छा काम करें।

0: आवर लाइफ।
1: श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक उथल-पुथल के बावजूद भारत में बुनियादी अर्थव्यवस्था मजबूत और निर्यात में जबरदस्त वृद्धि बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के बाद मई माह में भी निर्यात वृद्धि जारी रही, जो वैश्विक प्रतिकूलताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाती है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने किसानों को बढ़ती लागत से बचाने के लिए उर्वरकों की बढ़ी कीमतों का बोझ स्वयं वहन किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के दांडेवाला फील्ड में एक नए गैस भंडार का पता लगाया है। श्री पुरी ने कहा कि उथली सानू भौगोलिक संरचना से पहली बार लगभग 25,000 मानक घन मीटर प्रतिदिन की दर से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू ऊर्जा उत्पादन को मजबूत करने में सहायता मिलेगी। सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: विकसित भारत जी राम जी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत अब एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार इस कानून के मसौदा नियम धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि मसौदा नियमों को जनता से सुझाव और राय लेने के लिए सार्वजनिक किया गया है। इनमें संक्रमण प्रावधान नियम, राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति नियम, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम, प्रशासनिक खर्च नियम और शिकायत निवारण नियम शामिल हैं। नए कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा तय समय के भीतर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबी जी राम जी एक्ट 2025 को इस महीने की 11 तारीख को अधिसूचित किया गया था और यह इस साल 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। केंद्र ने रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए भूमि की आवश्यकता के मद्देनजर नई दिल्ली स्थित जिमखाना क्लब को 5 जून तक परिसर खाली करने का निर्देश दिया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन भूमि और विकास कार्यालय के आदेश में कहा गया है कि ये भूमि तत्काल संस्थागत आवश्यकताओं, शासन अवसंरचना और जनहित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली के जामिया नगर में एक दलित महिला के कथित अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और जबरन धर्म परिवर्तन से संबंधित मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने इस संदर्भ में दिल्ली पुलिस आयुक्त से 7 दिन के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। चीन के शांक्सी प्रांत में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 90 हो गई है। ये विस्फोट कल क्यूआन काउंटी की लियू शेन्यू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार और दुर्घटना के कारणों की जांच का आदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। भारतीय सूचना सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी त्रिलोकीनाथ का आज दोपहर निधन हो गया। वे 79 वर्ष के थे। वे कुछ समय से बीमार थे। श्री त्रिलोकीनाथ ने आकाशवाणी के हिंदी समाचार कक्ष में संपादक के रूप में वर्षों तक अपनी सेवाएं दी। वियतनाम के दानांग में आज एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किए। 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में सूरज वशिष्ठ को एबेक एतबेकोव से, वहीं 67 किलोग्राम वर्ग में सागर सिंह को एतजान खलमा खानाऊ से हार का सामना करना पड़ा। लखनऊ में आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ ने 17वें ओवर में 4 विकेट पर 158 रन बना लिए हैं।

0: ईस्ट मध्य प्रदेश, ईस्ट उत्तर प्रदेश एंड विदर्भ टुमारो. सिमिलर कंडीशंस विल प्रिवेल ओवर हरियाणा, चंडीगढ़ एंड दिल्ली. एंड नाउ बिफोर वी एंड द बुलेटिन, द हेडलाइंस वंस अगेन. Prime Minister Narendra Modi reaffirms India's consistent support for peaceful resolution of conflicts through dialogue and diplomacy. US Secretary of State Marco Rubio terms India as cornerstone of United States approach towards Indo-Pacific region. Defence Minister Rajnath Singh asserts the country is becoming self-reliant in defence manufacturing, inaugurates artillery shell manufacturing plant at Shirdi in Maharashtra. Centre asks Gymkhana Club in New Delhi to hand over its premises by 5th of next month for strengthening defence infrastructure. 90 people killed in a coal mine explosion in China, and Indian grappler Suraj Vashisht and Sagar Singh clinched silver medals at Asian Under 23 Wrestling Championships in Vietnam. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है. खबरों के साथ मैं फैसल खान. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुज़ाकरात और सफारतकारी के जरिए तनाजात का पुरअमन हल निकाले जाने के लिए भारत की लगातार हिमायत का इरादा किया है. अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने भारत बहरुल काहिल खित्ते के तई अमरीका की हिकमत अमली में भारत को मजबूत बुनियाद करार दिया है. वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा कि भारत दिफाई सामान तैयार करने के शोबे में खुद कफील बन रहा है. वजीर मौसूफ ने महाराष्ट्र में शिरडी के मकाम पर तोपखाने के गोले तैयार करने के प्लांट का इफ्तिताह किया. मरकज ने नई दिल्ली में जिमखाना क्लब से कहा है कि वो दिफाई बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम बनाने की खातिर अगले महीने की 5 तारीख तक अपनी जमीन हवाले कर दे. चीन में एक कोयला कान में धमाका होने से 90 अफराद की मौत हो गई. और भारतीय पहलवानों सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने वियतनाम में 23 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में चांदी के तमगे जीते हैं. अब खबरें तफसील से. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में भारत अमरीका जामे आलमी कलीदी साझेदारी में पेशरफ्त और इलाकाई और आलमी अमन सलामती से वाबस्ता मामलात पर तवल्ले ख्याल किया. अमरीकी वजीर खारजा ने आज दोपहर नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. जनाब मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि भारत और अमरीका आलमी सतह पर फलाह बहबूद के लिए करीबी इश्तराक से काम करते रहेंगे. वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर और कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल भी मीटिंग के दौरान मौजूद थे. वजीर आजम के दफ्तर ने एक बयान में कहा है कि जनाब मार्को रूबियो ने वजीर आजम मोदी को मुख्तलिफ शोबों में बाहमी इश्तराक की पेशरफ्त से वाकिफ कराया. इनमें दिफा, कलीदी टेक्नोलॉजी, तजारत, सरमायाकारी, तवानाई की यकीनी फराहमी, कनेक्टिविटी, तालीम और आवाम से आवाम के राबते शामिल हैं. जनाब मोदी ने मुजाकरात और सफारतकारी के जरिए तनाजात का पुरअमन हल निकाले जाने की बात दोहराई और कयाम अमन की कोशिशों के तई भारत की लगातार हिमायत का इरादा किया. अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो भारत के 4 दिन के दौरे पर आए हुए हैं. वो इस महीने की 26 तारीख को क्वाड वजरा खारजा की मीटिंग में शिरकत करेंगे. जनाब रूबियो आज सुबह कोलकाता पहुंचे थे, जहां वो मिशनरीज ऑफ चैरिटी गए और मदर टेरेसा की विरासत को खराज अकीदत पेश किया. अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो कल वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर के साथ दो तरफा बातचीत करेंगे. उम्मीद है कि उनके इस दौरे से भारत अमरीका जामे आलमी कलीदी साझेदारी को मजीद तकवियत मिलेगी. अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि अमरीका किस अंदाज से भारत बहरुल काहिल खित्ते के तई अपनी हिकमत अमली इख्तियार करता है, इसमें भारत की मजबूत बुनियाद है. नई दिल्ली में अमरीकी सिफारतखाने की एक जेली इमारत का इफ्तिताह करते हुए जनाब रूबियो ने कहा कि अमरीका में भारतीय कंपनियों ने जो 20 अरब डॉलर की सरमायाकारी की है और पैक्स सिलिका के लिए भारत ने जिस मुआहदे पर दस्तखत किए हैं, उससे इस बात की अक्कासी होती है. उन्होंने कहा कि उनके दौरे से बाहमी तालुकात को मजीद तकवीत मिलेगी. अमरीकी वजीर खारजा ने यह एतमाद जाहिर किया कि भारत और अमरीका बाहमी तालुकात को मुस्तहकम बनाने के बारे में कई और पुरजोश और नए ऐलानात करने वाले हैं.

0: जनाब रूबियो ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को दो बहुत संजीदा रहनुमा करार दिया जो तवील मुद्दती मंसूबों पर तवज्जो मरकूज रखते हैं।
1: Anchoring that is the relationship between the president and the prime minister. It's a personal relationship that dates back to the first administration when the president had a chance to visit here, and it has carried over into the second administration, and you can just see the connection between them, and I think that's incredibly important. It is. The connection between leaders is incredibly important. These are two very serious leaders that are focused not just on the short term but on the long term, and so I think that is important to note because it's a key part of the foundation of the relationship between our countries. And just in the past year, we've seen
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा कि सरकारी मुलाजमतें लोगों के रहन सहन को बेहतर बनाने और इसमें सहूलत पैदा करने के अहम वसीले के तौर पर काम करती हैं। जनाब मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19वें रोजगार मेले से खिताब करते हुए ये बात कही। वजीर आजम ने इस बात को उजागर किया कि दुनिया भारत के तरक्की के सफर में शामिल होना चाहती है। जनाब मोदी ने कहा कि भारत दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के साथ साझेदारी भी कायम कर रहा है जिसका मकसद मुल्क के नौजवानों को मौके और रोजगार फराहम करना नीज आलमी सतह पर उन्हें रोशनास कराना है।
2: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
0: आज 19वें रोजगार मेले में मुख्तलिफ सरकारी महकमों और इदारों में नए भर्ती किए गए नौजवानों को 51,000 से ज्यादा तकर्रुनामे तकसीम किए गए। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज महाराष्ट्र के शिरडी में सावी विहीर सनती स्टेट में कायम तोपखाने के गोले तैयार करने के प्लांट का इफ्तिताह किया। ये प्लांट 155 एमएम के तोपखाने के गोले तैयार करेगा और इसकी सलाहियत सालाना 5,00,000 गोले तैयार करने की है। गोले तैयार करने की पूरी टेक्नोलॉजी और खाम माल अंदरूनी मुल्क का ही होगा। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि एक वक्त भारत को दिफाई साजो सामान की दरामदकार के तौर पर जाना जाता था, लेकिन आइंदा वर्षों में मुल्क दिफाई साजो सामान का एक अहम बरामदकार बनकर उभरेगा। जनाब सिंह ने इस बात को उजागर किया कि जंग का तरीकेकार तब्दील हो चुका है और जिन मुल्कों के पास इख्तरा साजो सामान तैयार करने की सलाहियत और मजबूत सनती बुनियादी ढांचा है वही मुस्तकबिल तश्कील देंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत मुस्तकबिल की जंगी सलाहियत के लिए खुद को तैयार कर रहा है और मेक इन इंडिया पहल के जरिए दिफाई साजो सामान की तैयारी के मामले में खुद कफील बन रहा है। महाराष्ट्र के वजीराला देवेंद्र फडणवीस और दिगर सरकर्दा शख्सियात ने इस तकरीब में शिरकत की।
3: सेल्फ रिलायंट इंडिया और मेक इन इंडिया के लिए प्राइवेट सेक्टर की एनर्जी का उपयोग आवश्यक है, इसलिए पॉलिसी रिलेटेड रिफॉर्म्स, एफडीआई को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज किया गया, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल को लागू किया गया, पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट लाई गई। हम लोगों ने एक लंबी लिस्ट मोर देन 5,000 आइटम्स की तैयार की है। इस पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट में आइटम्स हैं, उनको निर्धारित समय के अंदर हम भारत की धरती पर बनाएंगे, भारतीयों के हाथों से बनाएंगे, हम दुनिया के किसी देश से उसको इंपोर्ट नहीं करेंगे।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मरकज ने नई दिल्ली के जिमखाना क्लब से कहा है कि वो अगले महीने की 5 तारीख तक अपना अहाता हवाले कर दे। मरकज ने कहा है कि दिफाई बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम बनाने के लिए जमीन की जरूरत है। हाउसिंग और शहरी उमूर की वजारत के तहत अराजी और तरक्याती दफ्तर की जानिब से जारी किए गए एक हुक्मनामे में कहा गया है कि फौरी इदारा जाती जरूरियात पूरी करने, हुक्मरानी के बुनियादी ढांचे और मफाद आम्मा के प्रोजेक्ट के लिए यह जमीन जरूरी है। इसमें कहा गया है कि दिफाई बुनियादी ढांचे को महफूज बनाने, नीज दिगर अहमियत के हामिल अवामी सिक्योरिटी मकासद के लिए दिल्ली के इंतहाई हसास और अहम इलाके में वाक़ इस ठिकाने की जरूरत है। मजकूरा हुक्मनामे में यह भी कहा गया है कि हुक्म की तामील न होने की सूरत में कानून के मुताबिक इसे कब्जे में लिया जाएगा। मगरबी बंगाल में आयुष्मान भारत स्कीम इस साल जुलाई

0: शुरू हो जाएगी। वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने मरकजी वजीर सेहत जेपी नड्डा के साथ वर्चुअल मीटिंग के बाद कोलकाता में ये ऐलान किया। रियासती सेहत स्कीम स्वास्थ्य साथी के तहत मुस्तफीद होने वाले मौजूदा अफराद को आयुष्मान भारत स्कीम में शामिल किया जाएगा। आयुष्मान भारत आरोग्य मंदिर के सिलसिले में अगले महीने नई दिल्ली में एक मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए जाएंगे। सेहत और खानदानी बहबूद के वजीर जेपी नड्डा ने कहा है कि हिफ्जान सेहत के बुनियादी ढांचे के साथ साथ सेहत माहरीन और तिब्बी पेशावर अफराद की तरबियत भी उतनी ही अहमियत की हामिल है। उन्होंने आज नई दिल्ली में मेडिकल साइंसेज में कौमी बोर्ड इम्तिहानात इदारे की तकसीम असनाद की 23वीं तकरीब से खिताब करते हुए ये बात कही। जनाब नड्डा ने जोर देकर कहा कि डॉक्टर हिफ्जान सेहत निजाम के सॉफ्टवेयर के तौर पर काम करते हैं, जबकि बुनियादी ढांचा और दीगर सहूलियात मुल्क के हार्डवेयर के मानिंद काम करती हैं। वजीर मौसूफ ने कहा कि हिफ्जान सेहत का शोबा और सेहतमंद भारत का नजरिया विकसित भारत मिशन के हुसूल में मरकजी रोल अदा करेंगे, लिहाजा तिब्बी पेशावर अफराद का रोल मुल्क के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। हुकूमत ने वसीतर अवामी सलाह मशवरे के लिए विकसित भारत जीरामजी एक्ट 2025 के तहत जाब्तों का मसौदा शाये किया है। दही तरक्की की वजारत ने कहा है कि कोई शख्स, मुतल्लका फरीक, तंजीम या इदारा जाब्तों के मसौदे के सिलसिले में गौर खोज के लिए इस माह की 21 तारीख तक एतराजात या मशवरे दाखिल कर सकता है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: विकसित भारत जी राम जी एक्ट 20 साल पुराने महात्मा गांधी कौमी देही रोजगार गारंटी एक्ट एमजी मनरेगा 2005 की जगह लेगा। इस नए कानून का मकसद इस माली बरस में रोजगार की कानूनी गारंटी के दिन 100 से बढ़ाकर 125 दिन करना है। वजारत के मुताबिक जाब्तों का मुसवदा दफा 33 और कानून की दीगर मुतालिका दफात से मुताबिकत रखते हुए तैयार किया गया है। वजारत ने कहा है कि कौमी सतह की रहबर कमेटी के जाब्तों, मरकजी ग्रामीण रोजगार गारंटी काउंसिल के जाब्तों, इंतजामी अखराजात से मुतालिक जाब्तों और शिकायत के इजाले से मुतालिक जाब्तों को सलाह मशवरे के लिए आवाम के सामने रखा गया है। नए कानून में बरवक्त, शफाफ और जवाबदेह तरीकाकार के तहत उजरत की अदायगी पर जोर दिया गया है। इस कानून के तहत अगर मुकर्रर मुद्दत के दौरान रोजगार फराहम नहीं किया जाता तो बेरोजगारी भत्ते की भी सहूलत है। दिल्ली से अक्षित वैद्यन की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: चीन के शांक्सी सूबे में कोयले की एक कान में हुए गैस के एक धमाके में हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 90 हो गई है। गैस का यह धमाका कल हुआ था। सरकारी मीडिया ने खबर दी है कि कान में काम करने वाले 201 कानकुनों को अब तक बचा लिया गया है, जबकि बचाव कार्रवाई जारी है। चीन के सदर शी जिनपिंग ने एक जामे बचाव कार्रवाई और जख्मियों के इलाज के लिए हिदायत जारी की हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने चीन के शांक्सी सूबे में कान में हुए हादसे में जान गंवाने वालों के तई दुख का इजहार किया है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में वजीर आजम ने भारतीय अवाम की जानिब से चीन के सदर शी जिनपिंग और चीन के लोगों से अपनी ताजियत का इजहार किया। उन्होंने सभी बाकी लापता अफराद की जल्द और बाहिफाजत बाजियाबी की भी दुआ की और इस मुश्किल घड़ी में सोगवार कुंभों से यकजहती का इजहार किया। फ्रांस ने इसराइल के कौमी सलामती के वजीर एटामार बेन गवीर के फ्रांस में दाखिल होने पर पाबंदी आयद कर दी है। फ्रांस के वजीर खारजा जीन नोएल बेरोट ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर इस फैसले का ऐलान करते हुए कहा कि इस इकदाम से गजा जाने वाले समुद्र फ्लोटिला में सवार सरगर्म कारकुनों के साथ रवा रखे गए बर्ताव के मामले पर बढ़ते हुए गम गुस्से की अक्कासी होती है। फ्रांस के वजीर खारजा ने यूरोपीय यूनियन पर भी जोर दिया कि वह इसराइल के कौमी सलामती के वजीर पर पाबंदियां आयद करे। शुमाल मशरकी यूक्रेन के शहर सूमी के मजाफाती में रूस के ड्रोन हमले में आज एक शख्स हलाक और 9 जख्मी हो गए। यूक्रेन के लुहानसिक खित्ते में रूस के कंट्रोल वाले इलाके में एक कॉलेज के रिहायशी इलाके पर यूक्रेन के ड्रोन हमले के बाद रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने जवाबी फौजी कार्रवाई का हुक्म दिया था। आज वियतनाम के डेनेंग में भारत के कुश्ती खिलाड़ी सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप के मर्दों के ग्रेको रोमन जुमरों में चांदी के तमगे जीते हैं। 60 किलोग्राम के जुमरे में सूरज वशिष्ठ कजाकिस्तान के कुश्ती खिलाड़ी से खिताबी मुकाबले में 4-0 से हार गए। वहीं 67 किलोग्राम के जुमरे में सागर सिंह को फाइनल में उज्बेकिस्तान के कुश्ती खिलाड़ी ने 9-0 से शिकस्त दी। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी

ने मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए तनाज़ात का पुरअमन हल निकाले जाने के लिए भारत की लगातार हिमायत का यादा किया है। अमरीका के वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने भारत बहरुल काहिल खित्ते के तहत अमरीका की हिकमत अमली में भारत को मजबूत बुनियाद करार दिया है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा कि भारत दिफाई सामान तैयार करने के शोबे में खुद कफील बन रहा है। वज़ीर मौसूफ ने महाराष्ट्र में शिरडी के मकाम पर तोपखाने के गोले तैयार करने के प्लांट का इफ्तिताह किया। मरकज ने नई दिल्ली में जिमखाना क्लब से कहा है कि वो दिफाई बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम बनाने की खातिर अगले महीने की 5 तारीख तक अपनी जमीन हवाले कर दे। चीन में एक कोयला खान में धमाका होने से 90 अफराद की मौत हो गई और भारतीय पहलवानों सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने वियतनाम में 23 साल तक की उम्र के खिलाड़ियों की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में चांदी के तमगे जीते। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी की राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अल्पी कुमारी।
1: और मैं संजय किशोर।
0: विज्ञान भारती में हम विज्ञान, तकनीक, शोध, नवाचार और समाज पर उनके प्रभाव से जुड़े विषयों को आप तक पहुंचाते हैं।
1: आज के अंक में हम चर्चा करेंगे आकाशवाणी के 90 वर्षों की गौरवशाली यात्रा, विज्ञान और तकनीक के प्रचार प्रसार में आकाशवाणी की भूमिका पर।
0: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना की उपलब्धियों और सुपर कंप्यूटर,
1: दुर्लभ खनिजों के निष्कर्षण की नई तकनीक,
0: विश्व प्रवासी पक्षी दिवस और बिहार में प्रवासी पक्षियों की गणना, खरीफ फसलों के नई किस्में एवं जैविक उर्वरक,
1: साथ ही सुनेंगे विज्ञान जगत की बातें, मई माह में जन्मे और दिवंगत महान वैज्ञानिकों के योगदान तथा मई माह के प्रमुख विज्ञान दिवस।

गौरवशाली 90 वर्षों की यात्रा, इन 9 दशकों में आकाशवाणी ने केवल समाचार और मनोरंजन ही नहीं बल्कि विज्ञान और तकनीक के जन जागरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत होती है वर्ष 1927 से, किंतु वर्ष 1936 में ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना की गई। बाद में 1957 में इसे आकाशवाणी नाम मिला। स्वतंत्रता के समय देश में केवल 6 रेडियो स्टेशन थे और इनकी पहुँच लगभग 11% आबादी तक थी। आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। वर्तमान में आकाशवाणी के 470 से भी अधिक केंद्र कार्यरत हैं, जो देश के लगभग 92% भौगोलिक सीमा और 99% जनसंख्या तक पहुंच रखते हैं। यह दुनिया के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्कों में से एक है। यह आंकड़ा केवल प्रसारण क्षमता का संकेत नहीं देता बल्कि यह दर्शाता है कि आकाशवाणी ने भारत के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक विज्ञान और तकनीक की जानकारी पहुँचाने में कितनी प्रभावी भूमिका निभाई है। आज FM, डिजिटल रेडियो और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के माध्यम से विज्ञान आधारित कार्यक्रम नई पीढ़ी तक पहुंच रहे हैं। आकाशवाणी के 90 वर्ष केवल प्रसारण की यात्रा नहीं बल्कि ज्ञान, शिक्षा और वैज्ञानिक चेतना के प्रसार की गौरव गाथा है। स्वतंत्रता के बाद देश खाद्यान्न संकट से जूझ रहा था। कम उत्पादन, पारंपरिक खेती और वैज्ञानिक जानकारी के अभाव के कारण किसान आर्थिक कठिनाइयों में थे। ऐसे समय में आकाशवाणी किसानों का सबसे बड़ा वैज्ञानिक मार्गदर्शक बनकर सामने आया। कोविड-19 महामारी के दौरान सोशल मीडिया पर अफवाहें तेजी से फैल रही थीं। वहीं लोग वैक्सीन से डर भी रहे थे, कहीं घरेलू उपचारों को वैज्ञानिक सत्य मान लिया गया था। ऐसे समय में आकाशवाणी ने डॉक्टरों, वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों के माध्यम से प्रामाणिक जानकारियां प्रसारित की। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां इंटरनेट की पहुंच सीमित थी, वहां रेडियो सबसे विश्वसनीय माध्यम बना। बाढ़, चक्रवात, भूकंप, सूखा और समुद्री तूफान जैसे आपदाएं हर वर्ष लाखों लोगों को प्रभावित करती हैं। ओडिशा चक्रवात, बिहार बाढ़, असम की बाढ़ और सुनामी जैसी आपदाओं के दौरान रेडियो जीवन रक्षक माध्यम के रूप में सामने आया। इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में आकाशवाणी ने स्वयं को तकनीकी रूप से आधुनिक भी बनाया है। विज्ञान एवं तकनीक के प्रचार प्रसार

0: में आकाशवाणी की भूमिका के बारे में आइए जानते हैं ICMR के पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर वी के श्रीवास्तव से।
1: 1990-92 के बीच में ICMR ने आकाशवाणी के साथ मिलकर के एक रेडियो डेट प्रोग्राम किया। डेट मतलब ड्रग एल्कोहल टोबैको एजुकेशन। ये ऑल इंडिया रेडियो के 84 स्टेशन से ब्रॉडकास्ट हुआ प्रोग्राम, 30 एपिसोड का 16 लैंग्वेजेस में। तो ये प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल रहा। सबसे ज्यादा इसका फायदा ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ। इसका इवेल्युएशन हम सिर्फ दो जगह कर पाए, कर्नाटक और गोवा के ग्रामीण क्षेत्रों में। उससे पता चलता था 4 से 6% लोगों में, कहीं 4%, कहीं 6% लोगों ने इस प्रोग्राम को सुनने के बाद में इन बुरी आदतों से छुटकारा पाया। एक सबसे और अच्छी बात थी, ये अपने से छोटे बच्चों को सिखाते थे, उनमें बुराइयां बताते थे, उनको शिक्षित करते थे। दो तरह का फायदा हुआ इस प्रोग्राम से। तो हम तो चाहते हैं इस तरह के प्रोग्राम और होते रहने चाहिए। सन 86 के आसपास भारतवर्ष में HIV का दौर शुरू हुआ। सन 88 में फिर मैंने HIV पर एक नेशनल फीचर, आधे घंटे का फीचर किया। उसमें हिंदुस्तान भर में जा जाकर जो उस समय के अपने एक्सपर्ट थे, मुंबई में डॉक्टर गिलाडा थे, तो चेन्नई में डॉक्टर सोलोमन थे, और यहाँ के उनकी पेशेंट्स के इंटरव्यू किए, यहाँ होम्योपैथिक एक्सपर्ट्स, आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स, एलोपैथिक एक्सपर्ट्स, WHO, इन सबके से इंटरव्यू करके इनकी रिकॉर्डिंग करके 30 मिनट का प्रोग्राम एक फीचर किया।
0: विज्ञान जगत में किए गए अपने योगदान को याद करते हुए आकाशवाणी में कार्यरत पूर्व ADG मनोज पटेरिया ने अपने अनुभव इस तरह साझा किए।
2: मैंने नाटक भी लिखे विज्ञान पर जो ब्रॉडकास्ट हुए। समय नाम का नाटक था जो टाइम मशीन के ऊपर था, एक प्रदूषण के ऊपर था, जिसमें ये था कि किस प्रकार से प्रदूषण आने वाले समय में मुश्किलात पैदा कर सकता है।
3: अब बात करते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना की उपलब्धियों और नवीन अनुसंधानों की। संस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, सस्टेनेबल एनर्जी और बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। IIT पटना के निदेशक डॉक्टर TN सिंह,
4: यहाँ पर 3 शोध के एक नए आयाम खुले हैं जिनको हम इनक्यूबेशन सेंटर कहते हैं, TBI, TIH। इन तीनों का मैंडेट अलग अलग है और इसमें एक नए नवाचार और नए तरह की शोध करने वाले विद्यार्थियों, न केवल IIT पटना के लेकिन बिहार और सुदूर राज्यों से भी आए हुए विद्यार्थी इसमें काम करते हैं। नई एक शोध हमारे यहाँ के एक शिक्षक और विद्यार्थियों ने मिलकर किया है कि डिमेंशिया की बीमारी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कैसे डिटेक्ट किया जा सकता है, और उसके तहत उनका पेटेंट भी ग्रांट हुआ है। इस तरह से हमारे यहाँ 100 से ऊपर के पेटेंट फाइल हुए हैं और बहुत सारे ग्रांट भी हुए हैं। अभी भाषिनी प्रोजेक्ट चल रहा है जो अंतर इंस्टीट्यूशनल कार्यक्रम है, जिसमें कि कुछ IIT, कुछ NIT, कुछ यूनिवर्सिटी सभी मिलकर के ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं जिसमें एक भाषा में यदि कोई व्यक्ति बोल रहा है तो सुनने वाला अपनी लोकल भाषा में उसको समझ सके और उसको सुन सके और प्रश्न भी कर सके अपनी भाषा में, तो वक्ता के पास उसकी भाषा में जिसमें वो बोल रहा है उसको वो प्रश्न का उत्तर देगा। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम एक बहुत ही सफल प्रयोग है यहाँ के शिक्षक और विद्यार्थियों के लिए, और पहली बार IIT पटना से विदेश में बैटरी गई है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। बिहार में पहला सुपर कंप्यूटर IIT पटना के प्रांगण में स्थित है। हमारे यहाँ जो सुपर कंप्यूटर है, ये ब्रह्मास्त्र का हम बोलते हैं, ये सुपर कंप्यूटर की 13 बाइट में इसकी स्पीड हो, 13 बाइट बहुत ही फास्ट स्पीड, त्वरित काम को निष्पादित करने का इसके अंदर जो है काम है। AI के क्षेत्र में काफी यहाँ काम हो रहा है। केवल हम भाषा तक ही नहीं, हम AI के क्षेत्र में फॉर्मेशन तक के अंदर किस तरह से 5-6G को स्पीडअप किया जाए उसके लिए भी, और क्वांटम में भी यहाँ का फिजिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का विभाग जो है वो राष्ट्रीय स्तर के जो मिशन है क्वांटम का उसके साथ जुड़े हुए हैं।
0: दुर्लभ खनिज यानी रेयर मिनरल्स या क्रिटिकल मिनरल्स, ये ऐसे खनिज हैं जो स्वच्छ ऊर्जा, विद्युत, वाहन, रक्षा, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा उन्नत विनिर्माण उद्योगों के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। वर्तमान समय में वैश्विक स्तर पर 17 खनिजों को दुर्लभ खनिज का दर्जा दिया गया है, जिनकी मांग तेजी से बढ़ रही है क्योंकि विश्व ऊर्जा परिवर्तन यानी एनर्जी ट्रांजिशन और हरित प्रौद्योगिकी की ओर अग्रसर है। भारत का राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन या ANRF देश के विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और अनुसंधान संस्थानों में वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार के लिए धन देने, बढ़ावा देने और रणनीतिक दिशा प्रदान करने के लिए अनिवार्य सर्वोच्च निकाय है। ANRF ने IIT पटना के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सुब्रत हती के परमानेंट मैग्नेट यानी स्थायी चुंबक से दूर।

0: दुर्लभ खनिज के निष्कर्षण के अनुसंधान को ग्रांट दिया है।
1: जो आपका दुर्लभ खनिज है और हम लोग बोलते हैं कि क्रिटिकल मिनरल्स है, ये है कि आपका जो हम लोगों का डेवलपमेंट विद रिस्पेक्ट टू एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स होता है, तो वो सब चीजों में ये दुर्लभ खनिज इस्तेमाल होता है। हर देश में किसी किसी जगह में आपका ये दुर्लभ खनिज के जो डिपोजिट्स होता है, तो ये डिपोजिट से अगर आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, जो हम लोग उनको बोलते हैं कि प्राइमरी सोर्स या प्राइमरी रिसोर्स, तो वो उसके जियोलॉजिकल हैजर्ड्स हो सकते हैं। तो नेक्स्ट जो होता है हमारे पास सेकेंडरी रिसोर्स होता है। सेकेंडरी रिसोर्स ये होता है कि जैसे ई वर्ज्य होता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है आपका जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, जो भी हम लोग डे टू डे यूज करते हैं, तो सारा चीज एक यूजुअल लाइफ पीरियड के बाद वो ऑब्सोलीट हो जाता है। और ऑब्सोलीट हो जाने के बाद क्या है कि उसमें उससे हम लोग सेकेंडरी रिसोर्स से उसको हम लोग निष्कासित करते हैं। निष्कासित करने के लिए आपके पास तरीका जो होता है, टेक्निकल तरीका, वो बोलते हैं कि पायरोमेटलर्जी, हाइड्रोमेटलर्जी एंड बायोमेटलर्जी। पायरोमेटलर्जी में हम लोग क्या करते हैं कि आपको हीट ट्रीटमेंट देते हैं, और उससे क्या है कि अगर आप मेटेरियल प्राइमरी सोर्स पे अगर कोई मटेरियल है, प्लास्टिक्स है, तो उसको जलाया जाता है, तो उससे प्रदूषण हो सकता है। तो इसलिए दूसरा तरीका क्या होता है कि आपके पास हाइड्रोमेटलर्जी होता है। हाइड्रोमेटलर्जी में जनरली लोग क्या करते हैं कि एसिड और अल्काली यूज करते हैं, तो वो जो एसिड और अल्काली होता है वो जनरली कन्वेंशनली लोग उसका स्ट्रॉन्ग एसिड और अल्काली यूज करते हैं। तो उसके बदले में अगर कुछ ऑल्टरनेटिव्स ये है कि अगर आप कुछ नेचुरल ऑर्गेनिक एसिड यूज करें, और नाउडेज क्या है कि नोबेल जो टेक्निक आया है उसको बोलते हैं कि हम लोग डीप यूटेक्टिक सॉल्वेंट, उससे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो हमें एनआरएफ से जो रिसर्च ग्रांट मिला है, इससे हम लोग कर रहे सेकेंडरी रिसोर्स परमानेंट मैग्नेट। उससे परमानेंट मैग्नेट जनरली आप देखेंगे व्हीकल्स में यूज होता है, जनरली देखेंगे विंड मिल में यूज होता है। सो परमानेंट मैग्नेट जब वो ऑब्सोलीट हो जाता है, उस परमानेंट मैग्नेट से, और मेजोरिटी ऑफ द सोर्स ऑफ परमानेंट मैग्नेट आपका चाइना है, तो वो सब आप एक्सपोर्ट सब बंद कर दिया। जो डेवलप कंट्रीज है जिनके पास क्रिटिकल मिनरल का मेजोरिटी ऑफ द रिजर्व्स है, वो लोग इसका दुर्लभ खनिज का एक्सपोर्ट बंद कर दिया है। जो अगर स्वावलंबी बनना है भारत को, तो इसलिए क्या है कि हम लोग सेकेंडरी रिसोर्स से ये सब पदार्थ और दुर्लभ खनिज निष्कासित करना है। तो इसी संदर्भ में ये जो परमानेंट मैग्नेट से क्रिटिकल मिनरल निष्कासित करना डीप यूटेक सॉल्वेंट लेके, ये एक हमारा पहल है जिसमें हम लोग काफी शोध कर चुके हैं, और आगे शोध को हम लोग स्केल अप करेंगे।
2: और अब हम जानेंगे प्रवासी पक्षी के बारे में। प्रत्येक वर्ष हजारों लाखों किलोमीटर का सफर तय करके हमारे देश, हमारे शहर और हमारे इर्द गिर्द पहुंचते हैं, और इन्हीं पक्षियों के लिए 9 मई 2026 को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया। इस बार विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का थीम था हर पक्षी महत्वपूर्ण है, आपका नजरिया मायने रखता है। वैज्ञानिकों के अनुसार पक्षी दो प्रमुख वजहों से प्रवास करते हैं, भोजन और घोंसले की तलाश में ये पूरी दुनिया में प्रवास करते हैं। वर्ल्ड लाइफ के अनुसार विश्व के पक्षियों की 40% प्रजातियां अब घट रही हैं। प्रवासी पक्षी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, और उनकी घटती संख्या जल की गुणवत्ता, खाद्य सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन के प्रति कमजोर सहनशीलता का कारण बन रही है। भारत में हर साल 370 से अधिक प्रजातियों के प्रवासी पक्षी आते हैं। बिहार में 70 से अधिक प्रवासी पक्षियों सहित कुल 260 से ज्यादा प्रजातियों के 10,000 से अधिक पक्षियों की गणना की गई है। आप ई बर्ड बिहार पर जाकर राज्य के विभिन्न क्षेत्रों जैसे पटना, भागलपुर या और भी जो क्षेत्र हैं, उनमें हाल ही में देखे गए पक्षियों की सूची और चेकलिस्ट को देख सकते हैं। बिहार में प्रवासी पक्षियों के बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर देव नारायण चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी डिपार्टमेंट, तिलका मांझी विश्वविद्यालय, भागलपुर।
3: पिछले कई सालों से बिहार का जो वन मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, वो और बॉम्बे की संस्था है बीएनएचएस, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, इन दोनों के प्रयास से पक्षियों की गणना शुरू हुई है। 2022 से इसकी शुरुआत हुई और ये 26 लगभग 5 गणना हो चुकी, और इससे काफी अच्छे परिणाम आए हैं। हम लोगों ने बिहार के 3800 जिलों में जितने भी इम्पोर्टेंट वेटलैंड्स है जहाँ पर इन पक्षियों का वास होता है, ये प्रवासी पक्षी जहाँ से आकर के पनाह लेते हैं, वहाँ पर इसकी गिनती शुरू हुई। और इसमें जो भी पक्षी विशेषज्ञ थे, जो बर्डर थे, जो ट्रेनर थे, उन लोगों को इसमें लगाया गया, और हर डिस्ट्रिक्ट में एक कोऑर्डिनेटर की बहाली हुई जो एक्सपर्ट के रूप में काम करते हैं। इससे अच्छे परिणाम आए, तो धीरे धीरे हर साल कुछ कुछ वेटलैंड की संख्या भी बढ़ती चली गई, उसको भी हम लोग कवर करते हैं। तो इसमें देखा गया कि एक अच्छा डाटा तैयार हो गया, और आने वाले दिनों में बिहार के पक्षियों पर एक अच्छा डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है। जो इसके पहले 2012 में ही एक बुक पब्लिश हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के द्वारा, बर्ड्स ऑफ बिहार, उसका जो इन्फॉर्मेशन था उससे कहीं ज्यादा इस रिपोर्ट के बाद जो ये छपेगा, तो आने वाले दिनों में जो एकेडमिक्स के फील्ड में ये एक अच्छी जानकारी साबित होगी।

0: और अब जानते हैं विज्ञान जगत की नवीनतम घटनाओं के बारे में। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि आने वाला सुपर एल नीनो 1950 के बाद सबसे शक्तिशाली में से एक हो सकता है, जो दुनिया भर में करोड़ों लोगों को प्रभावित कर सकता है। यह कई क्षेत्रों में बाढ़, सूखा, हीट वेव और जंगलों में आग जैसी घटनाओं को बढ़ा सकता है। जलवायु परिवर्तन इसकी प्रकृति को और अधिक अनिश्चित बना रहा है। सुपर एल नीनो का मतलब समुद्र के तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक की असामान्य बढ़ोतरी से है, जिससे वैश्विक तापमान बढ़ता है। खासकर दक्षिण एशिया पर इसका अधिक असर पड़ता है।
1: भारत के असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में पहली बार सैटेलाइट ट्रैक की गई गंगा सॉफ्ट सेल कछुए को छोड़कर संरक्षण के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की गई है। यह संवेदनशील मीठे पानी की प्रजाति का कछुआ है, जो नदी के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसके व्यवहार, प्रवास और पर्यावरणीय खतरों के प्रति प्रतिक्रिया का अध्ययन करने के लिए ट्रैक की जा रही है। यह पहल वैज्ञानिकों को इस जलीय सरीसृप प्रजाति के दीर्घकालिक संरक्षण को सुनिश्चित करने में मदद करेगी। इस प्रजाति को असुरक्षित श्रेणी में शामिल किया गया है। और अब स्वाद और सेहत से भरपूर बिहार की पहचान मखाना के बारे में जानते हैं। सुपर फूड बन चुका मखाना अब वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से नई ऊंचाइयों तक पहुंच रहा है। मखाना अनुसंधान केंद्र में मखाना की नई प्रजातियों और उत्पादन तकनीकों पर कार्य किया जा रहा है। इस संबंध में ICAR राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज कुमार।
2: कोरोना काल के बाद से जब स्वास्थ्य के प्रति लोगों की जागरूकता काफी तेजी से बढ़ी है, तो मखाना में पाए जाने वाले जितने औषधीय गुण हैं, इसमें पाई जाने वाली जितनी पौष्टिकताएं हैं, तो इन गुणों के प्रति, इन स्वास्थ्य लाभों के प्रति बहुत तेजी से दुनिया भर में जागरूकता हुई है। इसमें मिनरल्स काफी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटाशियम। पोषक तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हमारे न्यूट्रिशन के लिए, जैसे आयरन, जिंक इत्यादि बहुत अच्छी मात्रा इसमें पाई जाती है। इसके अलावा ये जीरो फैट फूड इसे मानते हैं। इसमें फैट की मात्रा बहुत ही कम है, कोलेस्ट्रॉल बहुत कम है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसमें बहुत कम होता है, मधुमेह के जो मरीज हैं वो भी बहुत सुगम से इसका इस्तेमाल कर पाते हैं, मोटापे की समस्या से जो ग्रसित है वो भी आसानी से इसका इस्तेमाल कर पाते हैं, क्योंकि फैट इसमें बहुत कम है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे औषधीय गुण हैं। राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा के माध्यम से भी एक नई प्रजाति अभी विकसित की जा रही है, और मेरा मानना है कि अगले एक वर्ष में ये वैरायटी आ जाएगी, जिसकी उत्पादन क्षमता यहां से करीब 15-20% और ज्यादा होगी। और इसके अतिरिक्त कांटे रहित मखाना के प्रभेदों के विकास पर भी अभी चर्चा हो रही है।
0: हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को सीमित करने की बात कही है, ताकि खाद्य सुरक्षा से पोषण सुरक्षा को प्राप्त किया जा सके। बिहार के 13 जिलों में जैविक खेती की जा रही है। कृषि विज्ञान में खरीफ खाद्यान्न की नई प्रजाति के विकास एवं ब्लू अलगी जैविक उर्वरकों के उपयोग के संबंध में बता रहे हैं डॉक्टर दिव्यांशु शेखर, कृषि विज्ञान केंद्र जाले दरभंगा।
3: जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी देश को प्राथमिकता में रखा है कि हम रासायनिक उर्वरकों से हटकर प्राकृतिक या जैविक उर्वरकों की तरफ बढ़े, जिससे कि न कि हमारा फसल की उत्पादकता बनी रहे, साथ में ही उसके गुणवत्ता में भी कोई हरास न हो। खास तौर पे धान की फसल में जो हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी या जिसको हम अजोला कहते हैं, उसका यदि हम प्रयोग करते हैं तो हमारी नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट है या आवश्यकता है वो 10-20% तक हम उसके द्वारा कम कर सकते हैं। साथ में ही इसके प्रयोग करने से हमारे भूमि में कार्बनिक तत्वों की भी मात्रा बढ़ती है और साथ साथ जो खरपतवार होते हैं उनकी भी संख्या कम होती है।
1: और अब अंतरिक्ष की बात। हाल ही में विश्व का पहला ऑप्टो SAR सैटेलाइट मिशन दृष्टि लॉन्च किया गया। यह एक भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप के द्वारा बनाया गया सैटेलाइट है। अंतरिक्ष क्षेत्र में अर्जित उपलब्धियों के बारे में हमसे बात की भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुअनंतपुरम के कुलपति प्रोफेसर दीपांकर बनर्जी ने।
4: दो चीज होता है, देखिए आप जो 100 साल से हम लोग कोडाईकनाल से सूर्य का अध्ययन कर रहे हैं, ये जरूरी इसीलिए है कि वो हमारे सबसे नजदीकी तारे हैं, उसका चुंबक क्षेत्र का कुछ परिवर्तन होता है। वो परिवर्तन का एक 11 साल का एक हम बोलते हैं सोलर साइकिल जैसा है, तो कभी कभी उसमें चुंबक क्षेत्र थोड़ा ज्यादा हो जाता है, कभी कभी थोड़ा कम होता है। एंड ये जो बढ़ना और कमना का जो ऑसिलेटन पैटर्न जो है, उसको स्टडी करने के लिए एक डायनामो मैकेनिज्म को हम लोग मैथमेटिकली हम इस्तेमाल करते हैं। सोलर डायनामो एक थ्योरी है जो हमको समझने के लिए ये करते हैं कि क्यों ऐसा सूर्य में चुंबक क्षेत्र 11 साल का एक पीरियोडिसिटी क्यों रहता है, बट ये तो एक थ्योरी हो।

0: गया। थ्योरी को तो मैच करने के लिए आपको ऑब्जर्वेशन चाहिए, ऑब्जर्वेशन जितना लंबा होगा तभी उतना अच्छा है। इसीलिए ये कोडाईकनाल में ऑब्जर्वेशन हम लोग 1904 साल से चालू किया। उसी जमाना में तो फोटोग्राफिक प्लेट होता था, फिल्म होता था, हमने वो पूरा जो आर्काइव है उसको पूरा डिजिटाइज किया। आजकल के जमाना में तो कोई हाथ से तो कुछ करते नहीं, आपको इमेज होना चाहिए जो डिजिटल मोड है। एक्चुअली पुराना आर्काइव है उसको डिजिटाइजेशन करना भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रोजेक्ट है। तो ये 100 साल का पूरा डेटा डिजिटाइज करने के बाद हमने अभी अध्ययन किया कि ये 11 ईयर साइकिल कैसा होता है। कभी कभी एक साइकिल थोड़ा बड़ा होता है, कभी थोड़ा छोटा होता है। जब बड़ा होगा उसमें सोलर जो तूफान वो और ज्यादा होगा, जब थोड़ा चुंबक क्षेत्र थोड़ा कम होगा तो वो भी जानकारी होना चाहिए। एक तो है कि अभी हाल ही में ये तूफान आने वाला है या नहीं आने वाला, ये जानकारी। और एक है कि पहले ऐसा तूफान होता था कि नहीं होता था। अभी सन जो स्टार वो मिडिल एज में है, वो जब बड़ा हो जाएगा, वो रेड जायंट हो जाएगा, हम तो बच नहीं पाएंगे। अभी मिलियनेयर में नहीं होने वाला है तो अभी सोचने का नहीं है, बट ये सब जानकारी होना चाहिए।
1: मई का महीना विज्ञान के इतिहास में बेहद खास है। कई महानतम वैज्ञानिकों का जन्म हुआ जिन्होंने भौतिकी, चिकित्सा और रसायन विज्ञान की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। इस महीने देश के कुछ ऐसे महान वैज्ञानिक और गणितज्ञों का जन्म हुआ जिन्होंने न केवल भारत में आधुनिक विज्ञान और परमाणु कार्यक्रम की नींव रखी बल्कि पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन किया। डॉक्टर राजा रमन्ना, आप भारत के परमाणु कार्यक्रम के शिल्पकार कहे जाते हैं। आपका जन्म 28 मई 1925 को तुमकुर कर्नाटक में हुआ। के आर रामनाथन, आप भारत के मौसम विज्ञान और ओजोन अनुसंधान के जनक माने जाते हैं। आपका जन्म 28 मई 1893 को पलक्कड़ केरल में हुआ। हरीश चंद्र, जो कि गणित और भौतिकी के महान सेतु कहे जाते हैं, आपका जन्म हुआ 11 मई 1923 को कानपुर उत्तर प्रदेश में। आप महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के सहायक भी रहे। आपने लाई ग्रुप्स और रिप्रेजेंटेशन थ्योरी में क्रांतिकारी सिद्धांत दिए जिन पर आज भी क्वांटम मैकेनिक्स और आधुनिक गणित टिकी हुई है। हमारे अगले वैज्ञानिक हैं डॉक्टर विजय भटकर, आप भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक हैं। आपका जन्म 11 मई 1946 को मोरंबा महाराष्ट्र में हुआ। आपके नेतृत्व में सीडेक ने साल 1991 में भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर परम 8000 बनाया। आगे नाम आता है प्रोफेसर डॉक्टर बलराम भार्गव का, जिनका जन्म 3 मई 1961 को हुआ था। आप भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक रहे। पूरी दुनिया जब सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रही थी, तब भारत की वैज्ञानिक लड़ाई का नेतृत्व करने वाले मुख्य चेहरों में डॉक्टर भार्गव का नाम सबसे आगे था। और अब हम जानेंगे मई महीने में दुनिया ने विज्ञान जगत के कुछ बेहद प्रतिष्ठित चेहरों को खोया है। डॉक्टर मोनिका मोंटे फाल्कोन, आपका निधन 14 मई 2026 को हुआ। आपने समुद्री पारिस्थितिकी और जीव विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। डॉक्टर विलियम चार्ल्स लिविंगस्टन, आपका निधन 2 मई 2026 को 98 वर्ष की आयु में हुआ। आपने सौर खगोल विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किया।
2: आज विज्ञान पत्रिका के इस अंक में आकाशवाणी के 90 वर्षों की गौरवशाली यात्रा को याद करते हुए हमारे सुधी श्रोताओं ने अपने विचार कुछ इस तरह व्यक्त किए। बिहार विधानसभा अध्यक्ष माननीय डॉक्टर प्रेम कुमार,
3: शब्द ब्रह्म के मूल मंत्र को चरितार्थ करते हुए देश के जन जन की आवाज एवं सूचना क्रांति के उद्घोष के प्रतीक आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो के गौरवमयी अस्तित्व के 90 वर्ष पूर्ण होने पर संपूर्ण आकाशवाणी परिवार और इसे करोड़ों श्रोताओं को मैं प्रेम कुमार, अध्यक्ष बिहार विधानसभा, हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देता हूँ। 8 जून 1936 को अपनी औपचारिक यात्रा शुरू करने वाला आकाशवाणी आज केवल एक प्रसारण माध्यम नहीं बल्कि स्वतंत्र भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक और लोकतांत्रिक विकास का आजीवन साथी है। स्वाधीनता संग्राम से लेकर आधुनिक भारत का निर्माण तक आकाशवाणी राष्ट्र के सूत्र में तिरुणे का अभूतपूर्व कार्य किया है। संकट और आपदा के समय इसकी प्रमाणिक खबरों ने हमेशा देश का मार्गदर्शन किया है, जिससे इसकी विश्वसनीयता आज भी अक्षुण्य है। जन जागृति और राष्ट्र निर्माण सुदूर गांव, खेतों, खलिहानों और सीमावर्ती क्षेत्रों तक ज्ञान और चेतना का प्रकाश फैलाने में इस माध्यम की भूमिका रहती है। कृषि सुधारों से लेकर मन की बात जैसे संवाद

के माध्यम से ईश्वर ने जन जागृति को एक नई दिशा दी है। स्वास्थ्य, शिक्षा, विज्ञान और सरकारी लोक कल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम पावदान पर खड़े व्यक्ति तक सरल भाषा में पहुंचाकर आकाशवाणी ने बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के संकल्प को सिद्ध किया है। मैं इस अवसर पर आकाशवाणी के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं कि अद्वितीय संस्थान आदि की अपनी स्पष्टता, राजभक्ति और सेवा से देश को आलोकित करता रहेगा। रेडियो की वह मधुर पुकार आज भी दिलों में बसती है। आकाशवाणी की हर धुन

0: से देश को आलोकित करता रहेगा। रेडियो की वह मधुर पुकार आज भी दिलों में बसती है। आकाशवाणी की हर धुन भारत की आत्मा सी लगती है।
1: पंचायती राज्य मंत्री बिहार सरकार दीपक प्रकाश।
2: मैं दीपक प्रकाश, मंत्री पंचायती राज विभाग, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी की पूरी टीम को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। हम सबों के सामाजिक जीवन में, देश के राजनीतिक जीवन में, आर्थिक जीवन में और साथ ही साथ जो हमारा देश का इतिहास है, उन सबों में आकाशवाणी का एक विशेष रोल रहा है। आजादी की लड़ाई हो या विभिन्न कालखंडों में जन आंदोलन को लोगों तक पहुंचाने का काम हो, तमाम क्षेत्रों में आकाशवाणी ने कमेंडेबल काम किया है। हम सबों के बचपन की यादें भी आकाशवाणी से जुड़ी हैं। क्रिकेट की कमेंट्री आकाशवाणी पे सुननी हो, पुराने गाने आकाशवाणी पे सुनने हो, सभी विद्यार्थियों के लिए टॉक शोज के माध्यम से ज्ञानवर्धन करने की बात हो, तमाम क्षेत्रों में आकाशवाणी ने काम किया है। टेक्नोलॉजी के साथ साथ आकाशवाणी ने अपने को बदलने का भी काम किया है। एनालॉग से डिजिटल तक का सफर आकाशवाणी का विशेष रूप से कमेंडेबल है। आज के इस चकाचौंध और दिखावटी मीडिया के दौर में आकाशवाणी का एक विशेष स्थान है जो कि हमें अपने जड़ों से जुड़ने के लिए प्रेरित करता है। आकाशवाणी का विशेष रूप से हम धन्यवाद इस बात के लिए भी देना चाहेंगे कि आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हम सबों के बीच किया जाने वाला मन की बात कार्यक्रम प्रसारित होता है। एक बार पुनः आकाशवाणी को 90 वर्ष पूरे करने के लिए बधाई देते हुए और आकाशवाणी हम लोगों के बीच जीवन का और हिस्सा बने, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, आज के युवा आकाशवाणी से जुड़े, इस बात की शुभकामना देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद।
3: मेरा नाम नीलम चौधरी है, मैं एक्स IAS ऑफिसर हूं और एक कथक डांसर भी हूं। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। आकाशवाणी का नाम आते ही एक स्पंदन सा होने लगता है और याद आता है अपने स्टूडेंट लाइफ का वो स्टडी टेबल जहां हमेशा एक ट्रांजिस्टर रखा रहता था। चूंकि मैं म्यूजिक की फील्ड से हूं, इसीलिए म्यूजिक के लगभग सब कार्यक्रम मैं आकाशवाणी का सुना करती थी, चाहे वो शास्त्रीय संगीत का हो या फिल्मी गानों का हो, गैर फिल्मी गानों का हो, भजन हो, लोक संगीत हो, मैं सब कार्यक्रम सुनती थी और वो सारे गाने मुझे कॉन्सेंट्रेशन देते थे और मुझे पढ़ाई अच्छी मेरी होती थी। मैंने महसूस किया है कि आकाशवाणी ने समाज के हर क्षेत्र, हर वर्ग के लोगों को अपने कार्यक्रम में इनकॉर्पोरेट किया है, चाहे वो कृषि के क्षेत्र से हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र से हो, तकनीकी क्षेत्र से हो, नारी सशक्तिकरण की बात हो, लगभग लगभग सभी क्षेत्र के लोगों के लिए इसने कार्यक्रम बनाया है। बच्चों के लिए हो, शाम में 7:30 बजे अनंत सिंह का न्यूज होता था, वो तो बहुत ही लोकप्रिय था और बहुत स्पष्ट और बहुत अनबायस्ड कार्यक्रम हुआ करता था। उसके अलावा नाटक में हवा महल और लोहा सिंह का नाटक हम लोग बहुत इंतजार करते थे और सुनना चाहते थे। तो ये रिचनेस आकाशवाणी में शुरू से रहा है। आज भी हर वर्ग के लिए कार्यक्रम बनाना, उसे सक्सेसफुली प्रसारित करना, ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है आकाशवाणी की और मेरी शुभकामनाएं हैं, मेरी इच्छा है। मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से 90 वर्षों का सफर तय हुआ, उससे भी और आगे बढ़कर आकाशवाणी अपना कार्यक्रम करे, लोगों में प्रिय रहे और हर वर्ग के लोग इसमें जुड़े रहे।
4: प्रोफेसर दिनेश सिंह, पद्मश्री, उपाध्यक्ष जम्मू एवं कश्मीर उच्च शिक्षा परिषद और पूर्व कुलपति दिल्ली विश्वविद्यालय।
5: पूर्ण रूप से अपने हृदय से बधाई दे रहा हूँ आकाशवाणी से जुड़े सारे जो हमारे सहयोगी हैं और मैं चाहता हूँ कि इसको एक त्योहार के रूप में भारत में मनाया जाए, त्योहार के रूप में कि आकाशवाणी ने भारत के लिए क्या किया। मैं आकाशवाणी से बचपन से जुड़ा हूँ और आकाशवाणी से अमृत बरसता है पूरे देश में, विश्व में। मैंने यहाँ से इतनी रचनात्मक युक्तियों को ग्रहण किया है, इसने भारत की आत्मा को आकाशवाणी ने सींचा है। अब इसके जो एनिवर्सरी आ रही है, इसके 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं, हम सबको इसमें भागीदारी लेनी है और इस उत्सव को पूर्ण रूप से अपने अपनी जगह मनाना है। आकाशवाणी ने भारत का बहुत भला किया है।

0: ये थी हमारी आज की विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगली बार हम फिर मिलेंगे नई जानकारियों, नवीन शोध परक बातों एवं विज्ञान जगत की हलचलों के साथ।
1: तो सीखें कुछ नया, सोचें कुछ अलग। आज की विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती को तैयार करने में स्वर सहयोग रहा अल्पी कुमारी और संजय किशोर का। संयोजक थे दिलीप झा और

0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज हम आपके लिए लाए हैं श्री सीपी माधवन नंबूदरी द्वारा प्रस्तुत कर्नाटक शास्त्रीय गायन। श्री सीपी माधवन नंबूदरी, जिन्हें लोकप्रिय रूप से चन्नाशेरी माधवन नंबूदरी के नाम से जाना जाता है, आकाशवाणी के ए ग्रेड वोकल आर्टिस्ट हैं और दो दशकों से अधिक के उत्कृष्ट योगदान के साथ अत्यंत सम्मानित कलाकार हैं। उन्होंने 500 से अधिक एकल प्रस्तुतियां की है, जिनमें से अनेक में प्रसिद्ध कलाकारों जैसे डॉक्टर टी के मूर्ति, डॉक्टर उमयालपुरम के शिवरामन, श्री श्रीमुष्णम राजा राव तथा श्री मन्नारगुड़ी ईश्वरन ने संगति की है। उनके कार्यक्रम विदेशों में भी आयोजित हुए हैं, जिनमें अमेरिका, पेरिस, दक्षिण पूर्व एशिया तथा खाड़ी के देश शामिल हैं। केरल के चंगनाशेरी में जन्मे माधवन नंबूदरी ने अपनी प्रारंभिक संगीत शिक्षा अपने प्रथम गुरु श्री पीजी पद्म कुमार से प्राप्त की। बाद में वे स्वर्गीय टीवी शंकर नारायणन के शिष्य बने तथा उन्हें श्री पीआर कुमार केरला वर्मा और श्री कलन्यूर चंद्रशेखरन जैसे प्रसिद्ध संगीतज्ञों से उन्नत मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ। वे आरएलवी संगीत एवं ललित कला महाविद्यालय त्रिपोणितरा में पूर्व संगीत प्रवक्ता रह चुके हैं। उन्हें भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय से जूनियर फेलोशिप भी प्राप्त हुई है और मद्रास म्यूजिक अकादमी से सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का सम्मान भी प्राप्त हुआ है।
1: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग यू अ कर्नाटिक वोकल कॉन्सर्ट बाय श्री सीपी माधवन नंबूदरी, पॉपुलरली नोन एज चंगनाशेरी माधवन नंबूदरी। ही इज एन ए ग्रेट वोकल आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी एंड अ हाईली रिस्पेक्टेड परफॉर्मर विद ओवर टू डेकेड्स ऑफ डिस्टिंग्विश्ड कॉन्ट्रीब्यूशन टू कर्नाटिक म्यूजिक। He has presented more than 500 solo concerts, many of them accompanied by eminent maestros such as Dr. T.K. Murthy, Shri Umayalpuram K. Shivaraman, Shri Shri Mushnam Raja Rao, and Shri Mannarkudi Ishwaran. His performances have also reached audiences abroad, including concerts in the United States, Paris, Southeast Asia, and Gulf countries. Born at Changanasheri in Kerala, Madhavan Nambudri began his musical training under his first guru, Sri P.G. Padmakumar. He later became a disciple of late T.V. Shankara Narayanan and also received advanced guidance from renowned musicians, Sri P.R. Kumara Kerala Varma and Sri Kalanyur Chandrasekharan, a former music lecturer. At the RLV College of Music and Fine Arts, Tripunatra, he is also a recipient of the Junior Fellowship from the Ministry of Culture, Government of India, and has been honored with the Best Musician Award from the Madras Music Academy.
2: The contribution of Akashavani to the growth of artists like me is truly immeasurable. Akashavani has provided a dignified platform that nurtures talent and strengthens the cultural fabric of our nation. Best wishes to Akashvani for completing successful 90 years.
0: आज रात के प्रसारण में इनके साथ संगत कर रहे हैं वायलिन पर विद्वान तिरुविरा विजू एस आनंद, मृदंगम पर विद्वान कोटयम जी संतोष कुमार और घटम पर श्री वाड़पल्ली आर कृष्ण कुमार।
1: In tonight's program, he will be accompanied by Vidwan Tiruvira Viju S. Anand on violin, Vidwan Kottayam Ji Santosh Kumar on the mridangam, and Sri Vaadapalli R. Krishna Kumar on the ghatam.
0: Sri Changanasheri Madhavan Nambudri apne gayan ki shuruaat Swati Tirunal ki rachna Parama Purusham se kar rahe hain, jo raag Lalit Pancham par aadharit hai aur Khandu Chapu Taal mein nibaddh hai.
1: Sri C.

0: अब प्रस्तुत है केसी केशव पिल्लई की एक कृति श्री बालकृष्णा पाहिमाम, जो राग पूर्वी कल्याणी पर आधारित है और रूपक ताल में निबद्ध है।
1: यू विल नाउ लिसन टू श्री बालकृष्णा पाहिमाम, अ कॉम्पोजिशन ऑफ केसी केशव पिल्लई इन द राग पूर्वी कल्याणी सेट टू रूपक ताल।

0: अपने गायन को जारी रखते हुए श्री चंगनाशेरी माधवन नंबूदरी अब प्रस्तुत कर रहे हैं श्यामा शास्त्री द्वारा रचित रावे हिमगिरी कुमारी, जो राग तोड़ी पर आधारित है और आदि ताल में निबद्ध है।
1: द नेक्स्ट आइटम इज रावे हिमगिरी कुमारी इन द राग तोड़ी सेट टू आदि ताल कंपोज्ड बाय श्यामा शास्त्री।

0: इसके साथ ही संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में श्री चंगनाशेरी माधवन नंबूदरी का गायन समाप्त होता है। इनके साथ वायलन पर विद्वान तिरुविजा विजु एस आनंद, मृदंगम पर विद्वान कोटेयम जी संतोष कुमार और घटम पर श्री वाड़ापल्ली आर कृष्ण कुमार ने संगति की थी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के तिरुवनंतपुरम केंद्र पर रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किया गया।
1: With that, we conclude the vocal recital by Sri C.P. Madhavan Nambudiri in the broadcast of National Program of Music. He was accompanied by Vidwan Tiruvida Viju S. Anand on the violin, Vidwan Kottayam G. Santosh Kumar on the mridangam, and Sri Vaadapalli R. Krishna Kumar on the ghatam. This broadcast was recorded at Akashwani Tiruvananthapuram and came to you from the Delhi station of Akashwani.

0: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापार वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक भलाई के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण साझा किया। श्री मोदी ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की और बातचीत तथा कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपील दोहराई। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास स्पॉट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
2: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
1: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी।
2: इस रिश्ते की बुनियाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का आपसी संबंध है। ये एक निजी रिश्ता है। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी जब राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का मौका मिला था। ये रिश्ता दूसरे कार्यकाल में भी कायम रहा। आप उन दोनों के बीच के जुड़ाव को साफ साफ देख सकते हैं और मुझे लगता है ये बेहद अहम है।
1: भारत ने पैक्स सिलिका समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के युवा एक विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। केंद्र ने रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए भूमि की आवश्यकता के मद्देनजर नई दिल्ली स्थित जिमखाना क्लब को 5 जून तक परिसर खाली करने का निर्देश दिया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन भूमि और विकास कार्यालय के आदेश में कहा गया कि ये भूमि तत्काल संस्थागत आवश्यकताओं, शासन अवसंरचना और जनहित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। चीन के शांचकी प्रांत में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या 90 हो गई है। यह विस्फोट कल क्युआन काउंटी की लियुशेन्यू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार और दुर्घटना के कारणों की जांच के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे में हुई जानमान की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया। श्री मोदी ने भारत की ओर से राष्ट्रपति शी जिनफिंग और चीन की जनता के प्रति संवेदना व्यक्त की। वियतनाम के दा नांग में आज एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किए। 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में सूरज वशिष्ठ को एबेक एतुकोब से, वहीं 67 किलोग्राम वर्ग में सागर सिंह को एहतजान खालमा से हार का सामना करना पड़ा। प्रतियोगिता में कुमार सचिन ने 77 किलोग्राम भार वर्ग और रोहित ने 97 किलोग्राम भार वर्ग के कांस्य पदक के मुकाबले

0: runs for the loss of 6 wickets in stipulated 20 overs. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज तथा न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर 11:10 हुए हैं। अब हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। सुबह 5:51 पर आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद।